FM बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक संवत 1948 की श्रावण माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के लिए तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर

0: बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। श्रोताओं, हमारे देश ने कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज विश्व भारत को आशा और विश्वास के साथ देखता है। देश की विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम सभी नागरिक अपने देश से रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत करें।

0: ये देशभक्ति रचना थी समूह स्वर में। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, गणेश जी ज्ञान और विवेक, बल बुद्धि और सत्य के देवता हैं। युवाओं के विशिष्ट नायक होने के कारण ही वे विनायक कहे जाते हैं।
1: एक समय सब देवों ने शंकर से पूछा, हे त्रिपुरारी, हम सब में है

देवता, पहली पूजा का अधिकारी। कुछ सोचा फिर शिवजी बोले, प्रथम पूज्य वह हो जाएगा, पूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर जो सबसे पहले आएगा।

कविता कृष्णमूर्ति सुरेश वाटकर और साथियों का गाया भक्ति गीत आपने सुना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।

सोनू निगम का गाया भक्ति गीत आपने सुना। इसे लिखा था सावेरी वर्मा ने और धुन तैयार की थी सुशांत शंकर ने।

गोविंद बैथरी के संगीत निर्देशन में ब्रज सर्वरी का लिखा और गाया भक्ति गीत आपने सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में नीरज तिवारी की आवाज़ में ये भक्ति गीत।

0: नीरज तिवारी का लिखा और संगीतबद्ध किया भक्ति गीत आपने सुना, नीरज तिवारी और साथियों के स्वर में। और इसी के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। खेती की बात कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है पत्ता गोभी के उन्नत खेती। वाचन स्वर नंद कुमार यादव का है।
1: संगवारी हो, जय जोहार, राम राम। आज आप मन भर लेके पहुंचे हवन पत्ता गोभी के उन्नत खेती के बारे में जानकारी। संगवारी हो, एला हमन बंधा के नावले, पुतका के नावले और पत्ता गोभी के नावले जानथन। ए हर हरियर पत्तादार वाला सब्जी होते जेमा विटामिन ए और विटामिन सी के ज्यादा मात्रा पाए जाते। एकर संगे संग फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम और लोहा के मात्रा होते जेला हमन कच्चा पका के चाहे सलाद बना के खाए मा उपयोग करथन। आवाओ जाना थन के एकर बर कौन प्रकार के विधि ला अपनाइन। संगवारी हो, एकर बर 12 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आवश्यकता होते। माटी के बात करें तो हर प्रकार के माटी में एला हमन लगा सकथन। फिर पानी निकासी वाला हल्का भुइया हर सुघर होती। माटी के जौन पीएच मान है तेन हर 5.5 से 6.5 रहना चाहिए। पत्ता गोभी लगाथन तो एकर अब्बड़ कन प्रजाति आते जेला लगा के किसान भाई मन उपज ला ले सकत है। एमा गोल्डन एकरी, पूसा मुक्ता, पूसा ड्रम हेड, पूसा सिंथेटिक, हरियाणा बजरंग ए नाव के किस्म मन बढ़िया होते। संगवारी हो, भुइया के तैयारी करे बर चेत रखना है। माटी के भुरभुरा होत तक बढ़िया ले 3-4 पैत जोताई के काम बुतला कर लिहिन। सरहा गलहा गोबर के खातुला आखिरी जोताई के बेरा देवा थन तो बने होते। बोवाई के बात करें संगवारी हो तो अभी के बेरा मा एकर बोनी लहमन कर सकथन। जेकर बर फसल के बीच दूरिया ला 45x45 सेंटीमीटर के जल्दी बोवाई करथन तो और कहो अबेर ले बोवाई करथन तो 60x45 सेंटीमीटर के दूरिया रख के 1 से 2 सेंटीमीटर के गहिला मा बीजा ला लगाए जाते। एला खेत मा रोपाई करके चाहे गड्ढा खोद के हमन लगा सकथन। बोवाई बर जौन बीजा के मात्रा है तेकरो बर चेत रखना है। 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के बीजा के आवश्यकता हर होते। बोवाई करे के पहले आप मन ला कार्बेंडाजिम 50% WP ला 3 ग्राम लेके प्रति किलो बीजा के दर ले उपचारित करके लगाथन तो बने रही थी। किसान भाई हो, खातु के बात करें तो सरहा गलहा गोबर के खातु ला 40 टन और नाइट्रोजन 50 किलो, फास्फोरस 25 किलोग्राम, पोटास 25 किलो प्रति एकड़ के दर ले देहे बर लगते। ऐसने हमन ला चेत करना है खरपतवार है, बंद कचरा है तेन हर जाम गे है तो निंदाई गुड़ाई ला हाथ ले बढ़िया ले कर ले वे। ज्यादा हो गए तो पेंडा मेथेलिन 1 लीटर ला प्रति एकड़ के दर ले उपयोग मलाथन तो बने रही थे। संगवारी हो, सिंचाई के घलाव चेत रखे बर पड़ते। फसल मा खेत मा लगाए के तुरते बाद पहलैया सिंचाई ला करे बर लगते। भुइया और वातावरण के अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल मा सिंचाई करथन तो बने रही थे। ज्यादा पानी देहे ले बचाव करे। ज्यादा जानकारी लेहे बर कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेके खेती किसानी के काम बुतला करथन तो उपज और आमदनी मा बढ़वार होते। एकरे संग राम राम, जय जोहार।
0: पत्ता गोभी के उन्नत खेती, इस विषय पर अभी आप जानकारी सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात में। वाचन स्वर नंद कुमार यादव का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर अनुराधा पौडवाल के हैं। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री रामचंद्र ने अपने घर लौट जाने को सहमत किया तथा स्वयं सीता और लक्ष्मण समेत वन की राह ली। राह में मिलने वाले वनवासियों को उन्हें तापस वेश में देखकर अत्यधिक चिंता होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जिसके वशीभूत वे उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। वट वृक्ष की शीतल छांह देख कोई नरम घास और पत्ते बिछाकर वहां उनसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने को कहता है, तो कोई कलश भर पानी लाकर प्रभु से आचमन कर लेने का आग्रह करता है। ऋषि कुमारों के वेश में श्री राम लक्ष्मण का अनुपम रूप देख गांव के स्त्री पुरुष इस प्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जैसे दीपक का प्रकाश देख हिरणों का जोड़ा निस्तब्ध हो जाता है। गांव की स्त्रियां अपनी अल्प बुद्धि की विवशता बताकर सीता जी से दोनों कुमारों का परिचय जानना चाहती हैं।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम नवविहान के अंतर्गत आज हम आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में।

रामचरित मानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायन स्वर अनुराधा पौडवाल के थे। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया।

श्रोताओ, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY भारत सरकार का एक वित्तीय समावेशन राष्ट्रीय मिशन है, जिसे 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं और शून्य शेष बचत खाता, ऋण, बीमा और पेंशन से जोड़ना है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं शून्य शेष खाता यानी जीरो बैलेंस अकाउंट। खाता खोलने के लिए किसी न्यूनतम राशि की जरूरत नहीं होती है। खाता धारक को रुपे डेबिट कार्ड मिलता है। रुपे कार्ड के साथ साथ 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। संतोषजनक लेन देन के बाद 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में आता है।

श्रोताओं, पात्रता की बात करें तो आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। न्यूनतम आयु 10 वर्ष होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों का खाता माता पिता या अभिभावक की देखरेख में खुलता है। यदि आपके पास पहले से कोई बैंक खाता नहीं है, तब भी आप यह खाता खोल सकते हैं। और आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो यदि आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध है तो किसी अन्य दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होती है। और यदि आधार नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे आधिकारिक वैध दस्तावेज मान्य हैं।

जनधन खाते में ये कितना पैसा रख सकते हैं? श्रोताओं, यदि आपका खाता पूरी तरह से केवाईसी दस्तावेजों जैसे आधार और पैन कार्ड के साथ स्थापित है तो आप इसमें अनलिमिटेड यानी असीमित पैसा रख सकते हैं। और यदि आपका खाता बिना पूरे दस्तावेजों के केवल बुनियादी कागजातों पर खुला है तो आप उसमें 50,000 रुपये तक से अधिक नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक साल में कुल 1,00,000 रुपये से ज़्यादा जमा नहीं किया जा सकता। खाते में जमा राशि पर सामान्य बचत खाते की तरह ब्याज भी मिलता है। जनधन खाते से ATM यानी रुपये PMJDY कार्ड के जरिए एक दिन में सामान्यतः 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। ये सीमा आपके बैंक और डेबिट कार्ड के प्रकार पर निर्भर करती है। और अधिक जानकारी के लिए और फॉर्म के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना पोर्टल पर जा सकते हैं।

कार्यक्रम नवविहान के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम विवरण का। आज रात 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे संसद में हुई कार्यवाही की समीक्षा। दिल्ली केंद्र से ही रात 10 बजे रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। कार्यक्रम आज सुबह पेश करेंगे 7:05 पर। यादों के झरोखे से पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। और 10 बजे सुनिएगा फोन इन फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद, प्रस्तुति शांतनु की होगी। 8:30 पर अमराई कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रामेश्वर खांडे, सरोजमणि बंजारे, नीतू बंजारे और साथियों के गाए गीत। साथ ही सुनेगा परशुराम पटेल, श्यामाबाई लोहार और साथियों के गाए गीत। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण किया जाएगा 11:00 बजे।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम लेके जाएंगे सुबह 9 बजे से 9:55 तक, 11:30 से 11:55 तक, 12 बजे से शाम 5 बजे तक और फिर रात 9:15 से रात 10 बजे तक।

शाम 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। युवा जगत कार्यक्रम में शाम 5:05 पर आज की बात का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष यात्रा में योगदान, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही होगा क्रम आर्थिक जगत और क्रम सवाल जवाब।

शाम 7:30 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में क्रमबेरा की गोठ में चर्चा होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। भेंटवार्ता में आप सुनेंगे सफल कृषक से भेंट, साथ ही सुनिएगा गीत, मौसम, मंडी की जानकारी भी दी जाएगी और किसान भाई बहनों को सामयिक सुझाव भी दिए जाएंगे। चित्रपट संगीत 5:05 पर, ईमेल करें गीत सुने 6:20 पर और 7:00 कार्यक्रम रजनीगंधा रात 8:15 पर आप सुनेंगे। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें, संसद समीक्षा रात 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत समाचार थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा को तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देशभर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देशभर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। नागरिकों से अपील करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि देश के हर त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन को बेहतर बनाने का संदेश छिपा होता है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई भी बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आज सुबह।

0: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति में लोक त्योहारों की एक समृद्ध परंपरा रही है। इन्हीं में सबसे पहला और प्रमुख त्योहार है हरेली। सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाने वाला ये पर्व लोक जीवन, कृषि परंपरा और पर्यावरण प्रेम का प्रतीक है। सभी सुनने वालों को हरेली की शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की ओर से देते हुए स्वागत है कार्यक्रम आज सुबह में। और आज मैं हूं आपके साथ सीमा साहू।
1: आज सुबह

श्रोताओं, हरेली का त्यौहार प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का त्यौहार है। हरेली का आशय हरियाली ही है। वर्षा ऋतु में धरती हरा चादर ओढ़ लेती है, वातावरण चारों ओर हरा भरा नजर आता है। हरेली पर्व आने तक खरीफ फसल की खेती किसानी का काम भी लगभग पूरा हो चुका होता है। श्रोताओं, प्रदेश का हर अंचल अपनी सांस्कृतिक सुंदरता के साथ अपने को व्यक्त करता है। हरेली तिहार के साथ गेड़ी चढ़ने की परंपरा जुड़ी हुई है। हरेली तिहार के पहले से ही घरों में गेड़ी बनना शुरू हो जाता है। पहले के दिनों में जब ग्रामीण सड़कें मानसून की उफान में कीचड़ में बदल जाती थी, तब गेड़ी सबसे सुरक्षित जरिया होता था। कीचड़ से बचने के लिए हरेली के मौके पर गेड़ी चढ़कर सावन माह के उत्साह को जाहिर किया जाता है। पशुधन और कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है। बैल भी सजते हैं और बैलगाड़ी भी। अपने पशुधन के लिए, उनके सम्मान के लिए ये बड़ा पर्व होता है। खेती किसान की तैयारियों के बीच धरती माता के अभिवादन का यह त्यौहार और इन त्यौहारों में व्यस्त श्रोताओं के साथ आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस सुरीले से संगीत के साथ।

0: श्रोताओं, एक और पर्व जो हम मनाने वाले हैं, आज़ादी का पर्व, स्वतंत्रता दिवस। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये राष्ट्रीय गीत पहली बार आने वाले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा। श्रोताओं, 15 अगस्त को इस वर्ष के स्वतंत्रता समारोह का ध्यान युवा शक्ति पर केंद्रित होगा, जो भारत की युवा जनसंख्या के योगदान को उजागर करेगा और जो 2047 तक एक विकसित भारत बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण है। और साथियों, युवाओं की बात चली है तो बता दें, आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। पहली बार सन 2000 में ये दिवस मनाया गया था। श्रोताओं, दुनिया भर के युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में यह दिवस जागरूकता बढ़ाता है और सतत विकास को प्राप्त करने में आवश्यक भागीदार के रूप में उनकी भूमिका को बताता है। युवाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने, वैश्विक समाज में उनकी क्षमता का सम्मान करने और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियां जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और असमानता के बारे में विचार करना है, समाज शांति अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और सतत विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना है और नीति निर्माण और वैश्विक निर्णयों में अपने विचार रखने और नेतृत्व के गुण विकसित करने का अवसर देना भी है। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने लिस्बन में विश्व सम्मेलन की सिफारिश को स्वीकार करते हुए आज यानी 12 अगस्त के दिन को ये दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 का विषय है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने में युवा। ये विषय वैश्विक सहयोग को आकार देने और मजबूत करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। और अब आइए साथियों, आज सुबह कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: आधारित हमारा दैनिक

0: आसान ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के शहरी क्षेत्र की सभी सड़कों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन बना हुआ है। यात्री एवं माल परिवहन बड़ी आसानी से हो रहा है। स्पष्ट है संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। इसी प्रकार सुगम आवागमन के लिए आप सभी से अपेक्षा है, जब भी सड़कों में हो किसी भी वाहन के साथ हो धैर्य रखें, वाहन की गति में संयम रखें और यातायात नियमों का सदैव सम्मान करें। मित्रों, जिस प्रकार हमारी सुरक्षित यात्रा के लिए वाहनों का पूर्ण स्वस्थ होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक वाहन चालक को भी हमेशा तन एवं मन से स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यदि स्वास्थ्य खराब है, शरीर के किसी भाग में दर्द है जिससे वाहन चलाने में कष्ट हो रहा है, तब मजबूरी में वाहन मत चलाइए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव कुशल वाहन चालन पर पड़ता है और ऐसी स्थिति में वाहन चालन खतरे से खाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि मन ठीक नहीं है, मन में किसी प्रकार का तनाव है, घर परिवार के किसी सदस्य अथवा ऑफिस में या अपने अधिकारी या मालिक से कोई विवाद हुआ हो जिससे मन आंदोलित हो, मन में कुविचार आ रहे हो, वाहन चालन में पूरा पूरा मन ना लग रहा हो, तब जबरन या व्यवस्था में वाहन मत चलाइए, क्योंकि ऐसी यात्रा सुरक्षित होगी इसमें 100% संदेह है। यदि वहां लेकर जाना अति आवश्यक है तो कुछ क्षण रुकिए, ठंडा पानी पिए, अपने छोटे बच्चे की याद करें और सहज संभव हो तो उससे बातें भी करें। यदि नियमित कोई दवा लेते हैं तो वह भी लीजिए, देखिए कुछ ही क्षण में सब सामान्य हो जाएगा। तब यदि मन की अनुमति हो तो जाइए अपना वाहन लेकर। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक और दिन विशेष की चर्चा। श्रोताओं, आज है विश्व हाथी दिवस। 2012 में शुरू हुए इस दिवस का उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, इस पहल की सह स्थापना कनाडाई फिल्म निर्माता पेट्रिसिया सीम और थाईलैंड के एलिफेंट्री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने महारानी सिरिकट के संरक्षण में की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अफ्रीकी और एशियाई हाथियों की गंभीर समस्या के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा बंदी और जंगली हाथियों की बेहतर देखभाल और प्रबंधन के लिए ज्ञान और सकारात्मक समाधानों को साझा करना है। श्रोताओं, वर्तमान में एक अनुमान के मुताबिक अफ्रीकी हाथियों की संख्या लगभग 4 लाख और एशियाई हाथियों की संख्या लगभग 40,000 है। हाथियों का मांस, चमड़ा, शरीर के अंगों और दांत के लिए अवैध शिकार किया जाता है। अवैध वन्य जीव व्यापार हाथियों को तेजी से खतरे में डाल रहा है। श्रोताओं, मानव हाथी संघर्ष भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि मानव आबादी बढ़ रही है, वन क्षेत्र घट रहा है, जिससे हाथी मानव बस्तियों के करीब आ रहे हैं। इन दुर्घटनाओं में फसल क्षति और आर्थिक नुकसान के साथ साथ हाथी और मानव दोनों हताहत होते हैं। चिड़ियाघर, सर्कस और पर्यटन में हाथियों की देखभाल और उपचार के संबंध में कानून की कमी अक्सर उनके दुर्व्यवहार का कारण बनती है। श्रोताओं, कई उल्लेखनीय हस्तियों ने हाथी संरक्षण की तात्कालिकता के बारे में बात की है। आज के दिन हाथियों के संरक्षण और उन्हें उन सभी खतरों से बचाने में मदद करने का आग्रह किया जाता है जिनका कि वे सामना करते हैं। श्रोताओं, हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जीवित प्राणी है, एक बुद्धिमान और आज्ञाकारी प्रजाति है। हाथी महाद्वीप के प्रतीक हैं और पर्यटन को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते

हैं, जिसे वन्य जीव क्षेत्रों के संरक्षण के लिए धन प्राप्त होता है। वे अपने निवास स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुष्क मौसम में हाथी अपने दांतों का उपयोग पानी खोजने के लिए करते हैं। प्रकृति की महान कृति हाथी एकमात्र हानि रहित महान प्राणी है। हाथियों की प्रशंसा इसलिए भी होती है क्योंकि वे उन गुणों का प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम सर्वोत्तम मानवीय गुण मानते हैं, सहानुभूति, आत्मजागरूकता और सामाजिक बुद्धिमत्ता। विश्व भर की अनेक परंपराओं में हाथी ज्ञान, शक्ति, नेतृत्व, सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक भी है।

श्रोताओं, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई भारत के महान वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। बचपन से ही इनकी रुचि विज्ञान में थी। इन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में रेल इंजन का एक कार्यशील मॉडल बनाया था। शुरुआती पढ़ाई के बाद इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोन्स पूरा किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे भारत लौटे और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IISc में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर CV रमन के मार्गदर्शन में कॉस्मिक किरणों पर शोध किया। युद्ध के बाद वे कैम्ब्रिज वापस गए और 1947 में अपनी डॉक्टरेट यानी PhD की उपाधि प्राप्त की। श्रोता, विक्रम साराभाई ने भारत में वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को दिशा देने के लिए 1969 में इसरो के गठन में मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा और भी कई संस्थानों की नींव रखने में इन्होंने मदद की। 1919 में आज ही के दिन जन्म हुआ था महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई का। उन्हें याद करता है आकाशवाणी का बिलासपुर परिवार।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: श्रोताओं, साल 2026 की सबसे बड़ी खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण, जो कि आज यानी 12 अगस्त को होने वाली है और जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और उसके कुछ हिस्सों में दिखाई देगी। श्रोताओं, यह भारत में रात के समय होने के कारण यहाँ दिखाई नहीं देगा। और इस सूचना के साथ ही कार्यक्रम आज सुबह बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए सीमा को।
3: आज सुबह।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

बीवी और मकान, इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा था गुलजार ने, धुन तैयार की थी हेमंत कुमार ने। और अब आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर और कमल बरोट का गाया बरसात की रात फिल्म का ये गाना। इसे लिखा है शाही ने, धुन तैयार की है रोशन ने।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: ना कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।

0: 2 बीघा जमीन। इस फिल्म का गाना भी आपने सुना, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों के स्वर में। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, धुन तैयार की थी सलील चौधरी ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले, दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
3: अरे?
2: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

बंधन फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और साथियों की आवाज़ों में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। यादों के झरोखे से कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।

0: बरसात फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप।

0: आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: आदमी और इंसान। इस फिल्म का गाना आपने सुना महेंद्र कपूर, बलबीर और साथियों की स्वर में। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने, धुन तैयार की थी रवि ने। और इसी के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, सुबह के 8 बजे हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही

0: दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश

0: जाएगा।
1: दिल्ली में माई भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सोल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 से 5 के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन

0: प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोक झोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ता की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट, जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Akashvani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन टू फ्लैग ऑफ हर

0: परशुराम पटेल और श्यामाबाई लोहार का गाया गणेश भजन आपने सुना अमराई कार्यक्रम की शुरुआत में।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए

0: मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान, ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अमराई कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं धरती के गीत, रामेश्वर खांडे और साथियों का गाया हुआ।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अमराई कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ददरिया, सरोज मनी बंजारी और निशु बंजारी का गाया हुआ।

अमराई कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं परशुराम पटेल और श्यामाबाई लोहार का गाया शाकंभरी योजना गीत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: आपकी रक्षा में पूरी।
2: हमारा ये कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं निशु बंजारे का गाया ददरिया गीत।

0: निशु बंजारे का गाया ददरिया आपने सुना, और इसी के साथ अमराई कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, सुबह के 9 बजने वाले हैं। 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: कपूर एंड सन्स, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: दिल धड़कने दो, ये था फिल्म का नाम। याशिता शर्मा, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये था फिल्म का नाम। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गीत दिल चाहता है फिल्म से हमने आपको सुनवाया। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का,

0: अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आवाजों में गीत वजीर फिल्म से अभी आपने सुना। रोचक कोहली का संगीत था, गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इसे लिखा।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: आप सुन रहे प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत आप पी के फिल्म से सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शांतनु मोइत्रे का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: करे।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।
2: चिक्की लक्की चिक्की चिक्की लक्की चुम।

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गईं और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडीचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।

फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।

इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की फिल्म मवाली। माना, माना,

0: फिल्म जस्टिस चौधरी। पाम पाम।
1: पाम पाम। ए मम्मा मिया, मम्मा मिया, प्यार की गाड़ी दे चलाओ, एक्सीलेटर और दबाओ।
2: जिंदगी में मोड़ बहुत है, देखो दिल के तोड़ बहुत है, रास्ता मुड़ जाने वाला है, मेन रोड आने वाला है। स्टॉप
1: लव
2: मम्मा मिया
1: पाम पाम।
0: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।

मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

जब मिस्टर इंडिया की बात हो तो एक गाने की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सरोज खान की कोरियोग्राफी वाला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया का।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा गवाह।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आई। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई।

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गईं। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट स्पेशल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी मेरा, समटाइम्स यू विल फील यू आर लेस केविन, समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील यू आर लेस देन मेरा। ट्राई टू हेल्प ईच अदर टू फील इक्वल, इट विल बी नाइस।
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय 9:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की लोक और जनजाति विरासत की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से शुरू होगी बस्तर तिरंगा यात्रा। और छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक और जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस स्वागत समारोह एट होम में विशेष स्थान मिला है। भारत की स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जीवंत लोक तथा पारंपरिक कला परंपराओं के माध्यम से सांस्कृति, समुदाय और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की ओर से गेड़ी और मड़िया नृत्य प्रमुख आकर्षण होंगे। छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लगभग 35 कलाकार विभिन्न लोक नृत्यों और पारंपरिक संगीत प्रस्तुतियों में भाग लेंगे। समारोह की संगीत प्रस्तुति को भारत की विविध लोक परंपराओं की एक सांस्कृतिक यात्रा के रूप में तैयार किया गया है। इसकी शुरुआत बस्तर के पारंपरिक अनुष्ठानिक परंपराओं पर आधारित मंगल धुन से होगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से बस्तर तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। तिरंगा यात्रा आज नारायणपुर से प्रस्थान कर दंतेवाड़ा पहुंचेगी। इसके बाद कल 13 अगस्त को दंतेवाड़ा से बीजापुर के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं 14 अगस्त को यह यात्रा बीजापुर से प्रस्थान कर आवापल्ली, उसूर, कलगम, ताड़ा

0: पाला होते हुए कुर्रे गुटालू पहाड़ी पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का समापन होगा। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि तिरंगा यात्रा बस्तर के अति संवेदनशील और माओवाद प्रभावित रहे इलाकों से होकर गुजरेगी। उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग के 90 से अधिक गांवों में आजादी के बाद पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाएगा। यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा प्रमुख 31 स्थानों पर पहुंचेंगे, जहां माओवादियों ने जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया था। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर किसान अपने कुल देवता और खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा कर रहे हैं। हरेली पर्व पर आज सुबह 10 बजे से नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरेली अमावस्या के अवसर पर आज बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ 75 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत होगी। इस दौरान पारंपरिक मांझी चाल की मेंबर मेंबरिन पुजारी पटेल नाइक पाइक और सेवादार रथ निर्माण के लिए औजार बनाने ठुरलू खोटला रस्म अदा करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। श्री चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है। बस्तर के दरभा में कल 3 दिवसीय हरेली बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ वन मंत्री केदार कश्यप ने किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पक्षी संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम में मानव हाथी द्वंद को कम करने के लिए गज संकेत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में नारायणपुर और धमतरी के किसानों तथा स्व सहायता समूहों को औषधीय पौधों की खेती के लिए 54,36,000 रूपये की अग्रिम प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। इस अवसर पर वन मंत्री ने कहा कि औषधीय पौधों की खेती किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। उत्तर छत्तीसगढ़ में आज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और इससे लगे क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की लोक और जनजातीय विरासत की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से शुरू होगी बस्तर तिरंगा यात्रा और छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है फोन इन फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। प्रस्तुति है शांतनु कपूर की।
2: हेलो आपकी पसंद।
3: आकाशवाणी के इस आत्मीय फोन इन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी शांतनु कपूर। हम भारतीय हैं और भारत की यही तो खूबसूरती है कि जहां हर नया दिन अपने साथ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नई प्रेरणा लेकर आता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है। एक ओर पारसी समाज के पवित्र मुक्ताद और गाथा दिवस हमें हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश देते हैं, तो दूसरी ओर उड़ीसा की चितला की अमावस्या, तमिलनाडु की आदि अमावस्या और केरल का कर्कटक वावू हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जड़ें चाहे जहां हों, अपने बड़े अपने बुजुर्गों का सम्मान और प्रकृति के प्रति आभार भारतीय संस्कृति की साझा पहचान है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। ये अवसर केवल युवाओं का उत्सव नहीं बल्कि नई सोच, नए सपनों और नई जिम्मेदारियों का भी उत्सव है। जब अनुभव और उत्साह साथ चलते हैं तभी समाज आगे बढ़ता है। तो आज का ये कार्यक्रम भी कुछ अलग होगा।

0: आपकी पसंद के गीत तो होंगे ही, साथ ही साथ हम जानेंगे आपके अनुभव और आपके विचार। हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात किसी दूसरे श्रोता के लिए प्रेरणा बन जाए। तो आइए मुस्कुराइए, हमारे साथ जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं संगीत संवाद और सकारात्मक सोच से भरे इस विशेष कार्यक्रम की, जिसका नाम है हेलो आपकी पसंद। इंद्र भांजी क्या कर रहे हैं अभी आप?
1: मैं सर एसी सेल में सर्विस करता हूँ सर, ड्यूटी परेड में हूँ, ड्यूटी परेड में ही आपका कार्यक्रम में कौन कार्यक्रम में जुड़ा हूँ सर। कुछ ऐसे उद्घोषक भाई बहन है, आवाज सही पता चल रहा था, कुछ उद्घोषक भाई बहन भी श्रोताओं की आवाज सही पकड़ लेते हैं कि ये श्रोता फोन में बात कर रही है। और सबसे पहले सर आपको स्वतंत्रता दिवस की, आगामी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जो शनिवार को पड़ रहा है,
0: जी
1: ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं सर।
0: इंद्रबान जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें बताएं?
1: सर युवा दिवस के लिए कहूँगा सर, युवा साथियों के लिए हम उनके लिए भविष्य की हम कामना करते हैं सर। युवा साथी लोग सही मार्ग पर चले, सही दिशा पर चले, सही काम करे सर, पढ़ाई लिखाई करियर की तरफ उनका विशेष ध्यान जाए और मोबाइल में कम समय लगाए सर, क्योंकि पढ़ाई में उनका माता पिता ज्यादा पैसा लगा रहता है। और युवा साथी से करेंगे कि सर नशा जो करते हैं युवा साथी लोग, तो नशा न करें सर और नशा से दूर ही रहें, क्योंकि नशा करने से सर क्या होता है कि उनसे भी कई युवा साथी लोग बिगड़ जाते हैं
0: जी जी,
1: तो उनको संभालने में सर बड़ा मुश्किल होता है। तो युवा साथी से अनुरोध करूंगा कि अपना भविष्य करियर और अपने अच्छाई की तरफ ही उनका विशेष ध्यान दिया जाता है।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज मैं सुनूंगा सर, फिल्म का नाम है फौजी और गीत के बोल है वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, आशा भोसले और सखियों की आवाज में ये गीत है सर।
0: बहुत अच्छा लगा इंद्र भान जी आपसे बात करके। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद का गीत लीजिए प्रस्तुत है।

0: हेलो, आपकी पसंद।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रही हैं आप?
1: मैं प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। वी पूनम नायडू, पहली बार कॉल किया है सर जी।
0: अच्छा जी
1: जी,
0: नायडू मैम क्या करती हैं आप?
1: एक प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की शिक्षिका हूँ।
0: बिल्कुल, आपसे ये सवाल पूछने में मुझे खुशी होगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो विश्व युवा दिवस के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
1: संसार में जहाँ पे युवा है सर जी, वही अगर पहल करेंगे कोई भी असंभव कार्य को, तो वो संभव हो जाएगा सर। मतलब मैं ऐसा समझती हूँ और मैं करती भी हूँ सर जी, ऐसी बात नहीं है। और मेरी प्रेरणा जो है, मैं बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ सर जी, क्योंकि उनका जो हर एक बात जो है, जो भी लिखे में, जो लिखित में ही तो हमने पढ़ा है सर जी, तो उनकी जो बात है सर जी, एक एक बात दिल को छूने वाली होती है और बहुत ही प्रेरणास्पद बातें होती हैं सर जी उनकी, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और हमारे घर में भी पसंद करते हैं उनकी बातों को।
0: तो आप विवेकानंद जी की किताबें पढ़ना पसंद करती हैं, उनको सुनना पसंद करती हैं?
1: पढ़ते हैं सर जी, पहले बचपन में पढ़ते थे जब छात्र जीवन था तब, अभी तो जैसे कोई भी काम अपन करने के लिए सोचते हैं सर जी। सोचना क्या है, सोचने में कम विश्वास रखते हैं और हम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और करते भी हैं सर जी, क्योंकि अपन को जब सुबह उठते हैं ना, तो अपन को पॉजिटिव सोच के साथ उठना चाहिए, क्योंकि वो दिन भर अपना पॉजिटिव जाता है और जो भी काम अपन करना शुरू करते हैं वो जरूर कामयाब होता है सर जी। और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे दुख कितना भी हो। दुख सुख सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, हर दिन कोई ना कोई दुख सुख जो है वो तो सर उठा के खड़ा ही रहता है सर जी। ऐसा नहीं है कि अपन सुख को ही ग्रहण करें और दुख को अवॉइड करें, लेकिन दुख भी एक ऐसा सीख है सर जी, उससे ही अपन सीखते हैं ज्यादा करके, है ना
0: जी जी।
1: तो दुख सुख को हंसते हुए ही झेलना चाहिए सर जी, तो अपन को दुख भी दुख जैसा नहीं लगेगा। जो भी मतलब वो दुखी रहते हैं तो उनको हंसाना मेरा काम है सर जी, मैं हमेशा उनके साथ पॉजिटिव बातें करती हूँ। जो भी रहते हैं आसपास के लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको, यदि वो मुस्कुरा देते हैं तब ये दुख के माहौल में भी।
0: बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही पूनम जी। ये जो जीवन मिला है हमें, वो सिर्फ खुश रहने के लिए ही मिला है और कोई दूसरा हमारे पास काम नहीं है। हम सिर्फ खुशियाँ बांट सकते हैं, हम सिर्फ खुश रह सकते हैं। हमारे जीवन का सबसे अच्छा, सबसे अमूल्य उद्देश्य यही होना चाहिए। अच्छा लग रहा है पूनम जी आपसे बात करके। आज कौन से फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे अपनी पसंद का?
1: अभी तो सावन का महीना चल रहा है सर जी, तो सावन से ही रिलेटिव एक गीत है सर जी। फिल्म का नाम है आई मिलन की रात, उसमें एक गीत है सर जी, यदि आप चाहे तो मैं थोड़ा गुनगुना के बता सकती हूँ सर जी। सावन का महीना आया है, घटा से बरसा है पानी, वो माहिया बुझा दे प्यास जिया की हो, ये वाला गीत सर जी।
0: बिल्कुल, ये गीत आपकी पसंद का आपके पास पहुंच रहा है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, बहुत ही प्यारे बातें की सर जी हमसे आप। थैंक यू सर जी।

0: हेलो।
1: हाँ सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ, आपके बिलासपुर का नियमित श्रोता, गंडई बंदरिया से सर।
0: क्या करते हैं पवन कुमार सेन जी आप?
1: मैं तो वैसे मिस्त्री काम करता हूँ सर, मकान मिस्त्री का, ठेकेदारी का काम करता हूँ, और साथ में सर रेडियो का बहुत पुराना और बहुत प्रेमी हूँ सर जी।
0: बारिश के मौसम?
1: हाँ सर, अभी क्या है, बरसात का मौसम है और इस समय सब हमारे जो लेबर है सब खेती बाड़ी के काम में लगे हुए हैं सर।
0: आपके परिवार में और कौन है?
1: मेरा परिवार में तो पूरा पूरा भरा पूरा परिवार है सर जी।
0: जी जी।
1: और मेरा दो लड़का है, चार नाती है, दो बहू और साथ में हम दोनों हैं, और 10 परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं सर। पूरा हमारे यहाँ तो सभी त्योहार बड़ा ही सुंदर भावपूर्ण से और एक होकर मनाते हैं सर। इसमें सभी परिवार बढ़िया एक साथ बैठकर भोजन वोजन करते हैं त्योहारों के मौसम में। बहुत अच्छा लगता है सर, जितना ज्यादा परिवार हो अपने परिवार के साथ रहने से क्या खुशी मिलता है, मैं तो शब्द नहीं है सर मेरे पास बोलने और कहने के लिए, लिखने के लिए। और ये इसका मुख्य श्रेय सर मैं रेडियो को देता हूँ कि आज रेडियो की संगत से मेरे को बहुत कुछ मिला है सर, और आज मैं अपने परिवार को एक साथ मिलाकर चला रहा हूँ सर जी।
0: बहुत अच्छा लग रहा है पवन कुमार सेन जी आपसे बात करके। कौन से गीत सुनना चाहेंगे आज आप अपनी पसंद?
1: तो इससे पहले सर मैं तो आने वाले आगामी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना आकाशवाणी बिलासपुर को देना चाहूंगा।
0: जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: जी सर। और आज देशभक्ति फिल्म के गीत आकाशवाणी बिलासपुर से सुनना चाहूंगा सर। गर्मा फिल्म का गीत, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देवी ऐ वतन तेरे लिए।
0: तो सर गा के भी सुना दीजिए।
1: हर कर्म अपना कर...

0: रेडियो के माध्यम से ही मिला है सर, गाने बजाने का, और मतलब श्रेय देता हूँ मुख्य श्रेय रेडियो को सर जी।
1: पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे श्रोता ही हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और अच्छा काम करने के लिए और ज्यादा बेहतर हमें बनाने के लिए।
0: और आपसे बात करके बहुत खुशी हुआ सर, मेरे को इतना आनंद आ गया। लेकिन अंत में चाहूंगा आप अपना परिचय बता दीजिए।
1: मेरा नाम शांतनु कपूर है
0: जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।

0: के लिए एक बात और बताना चाहूंगा सर जी।
1: जी जी जी
0: मैं एक भजन मंडी विगत कई वर्षों से चला रहा हूँ सर अपने गंडी पंडरिया में।
1: जी जी
0: रोजाना सुबह 4 बजे राम मंदिर के सामने से हम लोग बाजा गाजे के साथ पूरा नगर भ्रमण करते हैं और उसमें सर मैं छोटा मोटा अपना भजन गा लेता हूँ। ये भी मेरे को

0: हेलो, आपकी पसंद।
1: सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार सर, कौन जनाब बात कर रहे हैं।
1: सर जी, मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ।
0: क्या हाल चाल है बताएं।
1: अभी सब अच्छे हैं सर जी, और क्या है, अभी खेती किसानी काम में लगे हुए हैं। और सर जी, मैं आगामी स्वतंत्रता दिवस की हमारे जितने आकाशवाणी परिवार है, श्रोता, उन सभी को बधाई देता हूँ सर जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। आज 12 तारीख अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, आप इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे।
1: क्या है सर जी, युवा ही तो हमारे देश के भविष्य हैं
0: जी,
1: और हम ही सभी युवाओं से युवा दिवस की बहुत शुभकामना देते हैं। और हमारे जो देश की रक्षा है, और हमारे जो पर्यावरण की रक्षा है, हमारे गांव की रक्षा है, ये सभी में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है सर जी। तो मेरा सभी युवाओं से यही निवेदन है कि अपने देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, और जो हमारे धर्म है, पर्व है, उसकी रक्षा के लिए सभी तैयार रहें और तन मन धन से अपने योगदान देते रहें सर जी। यही शुभकामना देता हूँ सर जी।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छी कामना आपने करी। चलिए, अच्छा लग रहा है नारायण प्रसाद जी आपसे बात करके। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप अपनी पसंद का।
1: क्या है सर जी, सामने राष्ट्रीय पर्व है, तो फिल्म क्रांति एक गाना सुना।

0: दीजिए सर जी।
1: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: चनाचूर गरम बाबू में लाई मजेदार वाला सुना दीजिए सर।
1: नारायण प्रसाद जी, आपकी पसंद का गीत लीजिए प्रस्तुत है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, आपकी पसंद।
1: हाँ नमस्कार सर, मैं अजय दुबे बोल रहा हूँ सर। किसानी करता हूँ सर, खेती किसानी है, किराना दुकान भी है मेरा।
0: अच्छा, क्या लगाया है आपने
1: अभी
0: खेतों
1: हाँ
0: में?
1: लगा है सर, रोपा लगाया हूँ ताकि अब पानी वानी कल गिर गया, पानी कम था थोड़ा तो
0: जी, पानी से
1: लगा दिया
0: प्रभाव काफी कुछ पड़ रहा है क्या? क्योंकि अभी इस बीच में
1: जी सर।
0: कभी
1: बहुत
0: बारिश।
1: पानी बहुत ज्यादा हो गया सर, पानी इतना नहीं गिरना चाहिए। गाना
0: जी,
1: सुनना है सर मेरे को,
0: हाँ बताइए।
1: पाकिजा पिक्चर का गाना सुनना है इन्हीं लोगों ने वाले।
0: अजय दुबे जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद

0: हेलो
1: हेलो, आपकी पसंद।
0: जी नमस्ते सर, प्रणाम करता हूँ। संतोष कुमार राव बात कर रहा था, आदिवासी बहुल क्षेत्र उमरिया मध्य प्रदेश से।
1: बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। संतोष कुमार जी, मौसम के कैसे हाल हैं अभी?
0: सर यहाँ पे सर हमारे जो स्टेट है आदिवासी बहुल क्षेत्र उमरिया मध्य प्रदेश है सर, यहाँ पे रिमझिम बारिश की फुहार लगातार एक पखवाड़े से हो रही है और अभी भी हल्के से मध्यम बारिश यहाँ पर हो रही है सर।
1: बहुत ज्यादा बारिश की वजह से खेती बाड़ी प्रभावित भी हो रही है।
0: लेकिन मतलब उस तरीके से बारिश नहीं हो पाई सर जितना अधिकतम होना चाहिए, लेकिन फिर भी मौसम के अनुरूप जितना बारिश होना चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे बारिश हो रही है सर।
1: अच्छा, उतना
0: फसल अच्छी होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है सर। सर आपके कार्यक्रम का प्रसारण सुनते हैं ना आकाशवाणी बिलासपुर के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, ईमेल वेस्ट कार्यक्रम आते हैं, बहुत ही लाजवाब और अच्छी उम्दा प्रस्तुति होती है सर आपकी।
1: अच्छा लगा संतोष जी, आप सुनते हैं, नियमित हमारे श्रोता भी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, आपके अनुसार आज के युवाओं की सबसे बड़ी ताकत क्या है, आप हमें बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल सर, युवा की अगर मतलब ताकत देखी जाए तो टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ी उपलब्धि है युवा वर्ग के लिए। और
1: जी
0: युवा न केवल एक टेक्नोलॉजी के रूप में आगे विकसित हो रहा है, साथ में किसानी को भी लेकर सक्षम है। आज का युवा देखा जाए तो बिल्कुल एक धरोहर है, उसे भारत की योग्यताओं के लिए, अपने शिखर के लिए, अपने देश के लिए खेलता है, तो बहुत एक जज्बा भी पैदा होता है सर। युवा हमारे देश की शान है और युवा हमारी पहचान है।

0: अलग-अलग राज्यों में एक ही भावना से जुड़े अलग-अलग पर्व मनाए जाते हैं। आपको लगता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी एक दूसरे से बहुत सीख सकते हैं? और सीख सकते हैं तो क्या, किन चीजों को सीखना ज्यादा अच्छा रहेगा आज के समय में?
1: हम पुराने पीढ़ी से सीख ले सकते हैं, जैसे कि किसानी जब करता है कोई व्यक्ति, तो हमारे दादा दादी नाना नानी उस जमाने में खेती की किसानी किया करते थे, तो वो सीख हमें लेनी चाहिए और जितना भी हो सके हमें बड़ों से सीखना चाहिए। वट वृक्ष की तरह बड़े होते हैं, घर के सम्मान जनक होते हैं, इसलिए उनकी प्रेरणा स्रोत अगर हम लोग ले करके चलेंगे तो हम अच्छी तरक्की की ओर अपना एक कदम बढ़ा पाएंगे। सर
0: संतोष जी, लेकिन आजकल के बच्चों के हाथ में जो मोबाइल फोन है वो उनके लिए सबसे ज्यादा घातक, उनका सबसे बड़ा दुश्मन है।
1: बिल्कुल सर, एक युवा होता है जो लगातार मोबाइल की स्क्रीन को देखता जाता है और इसमें से जो परिवार के अन्य काम होते हैं उनको छोड़ देता है, लेकिन रेडियो एक ऐसी वाणी होती है, मधुर वाणी होती है, जिससे हमारा युवा भी जुड़ा होता है, साथ में बड़े बुजुर्ग भी जुड़े होते हैं। और रेडियो की सीख इतनी प्रेरणादायी होती है, जो सीखने के लिए बिल्कुल सक्षम होती है, चाहे रामचरित के मानस के पाठ हो या फिर काव्य गोष्ठी हो, ऐसे निर्माणों का प्रसारण होता है आकाशवाणी पर, जो हमें सीधे सीधे सीखने पर मजबूर भी कर देता है। सर
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही संतोष जी। आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे अपनी पसंद का?
1: हाँ, रोटी कपड़ा और मकान मूवी का गाना है सर।
0: ये गाना गा के सुनाना चाहेंगे हमें?
1: अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए कि तेरी दो टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए।
0: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष राय जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी। कौन जनाब बात कर रहे हैं? हेलो, आपकी पसंद में आपका कॉल लगा है।
1: नागानी हूँ, चकलवाड़ा कैंप से। हम
0: नारवानी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया। सावन के महीने में, सावन का महीना है, अच्छी तरह से बरसात अच्छी तरह हो रही है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, खेतों में अभी बुआई हो रही है, किसान लोग लगे हुए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर आप हमसे क्या कहना चाहेंगे? श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी?
1: युवा तो देश का भविष्य है, लेकिन मुझे लगता है युवा अपनी जगह भटक गया है।
0: अच्छा, ऐसा क्यों लगता है
1: जो कि
0: आपको?
1: पहले के जमाने में हम लोग जाते थे बचपन में, तो कई कई दिन अपने मौसी के यहाँ, नानी के यहाँ रह के आते थे। आज के युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं, कि मोबाइल में भिड़ गए हैं,
0: जी,
1: उन्हें मोबाइल के सिवा कोई दिखता ही नहीं है। तो
0: बिल्कुल। नाते रिश्तेदारों, संबंधियों से मिलने की जरूरत महसूस नहीं होती।
1: ऐसा न करें,
0: जी,
1: क्योंकि ये रिश्तेदारी काम आते हैं, मोबाइल काम नहीं आएगा। 15 अगस्त के बाद तो यही कहूंगा, सुंदर सलोना सबसे न्यारा, प्रेम की बहती धारा है, भगवान भी यहाँ जन्म लेते, ऐसा पावन देश हमारा है।
0: वाह वाह वाह।

0: गर्व होना चाहिए हमें कि हम भारतीय हैं। फिर तीन रंगों का वस्त्र नहीं, ये ध्वज देश की शान है। हम भारतीयों के दिलों का ये ध्वज स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना प्यारा हिंदुस्तान है।
1: डियर नरवानी जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के साथ समय बिताना कितना जरूरी है, क्या अनुभव है आपके, आप हमसे कुछ साझा करना चाहेंगे?
0: समय बिताना जरूरी है बिल्कुल, परिवार के साथ कम से कम एक समय खाना तो हर किसी को खाना चाहिए, पूरे परिवार बैठकर।
1: जी
0: सर, हकीकत बात, मैं कल ही बाजार से निकल रहा था तो एक चबूतरा बना हुआ था, आठ लोग वहाँ बैठे थे, आठ लोग मतलब 18-20-22 साल के लड़के थे, आठों के हाथों में मोबाइल थी, सब अपनी मोबाइल को देख रहे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मैं एक मिनट वहाँ खड़ा हुआ कि कह क्या है, घर में भी आठ कर रहा, बहू सास रहती है, बाप बेटा रहता है, सबके हाथ में मोबाइल रहती है, मोबाइल सब देखते रहते हैं, बात करना कोई चाहता नहीं है।
1: नहीं बिल्कुल, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है और परिवार को भी इस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चे बहुत ज्यादा फोन का उपयोग करके एडिक्टेड ना हो। नानवानी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, कौन सा गीत आज आप अपनी पसंद का सुनना चाहेंगे?
0: गाना सुनाएंगे सर मुझे आज, आप कर चले हम सिद्धा जान तन साथियो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो।

0: हेलो, आपकी पसंद।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हम लोग तो सब ठीक ठाक है सर। भाटापारा दतरंगी से हिरुराम साहू बोल रहा हूँ सर।
0: साहू जी, क्या करते हैं आप?
1: अब क्या सर, अब खेती खार के काम में लगे हैं सर। इधर रोपा वोपा लगे चल रहा है। अब
0: जी,
1: सावन के महीने चल रहा है तो सर वही रामायण वामायण चल रहा है हमारे गाँव की जगह।
0: भाटापारा में अभी मौसम के क्या हाल है वहाँ?
1: मौसम तो बहुत अच्छा हुआ, पानी का भी बहुत मौसम आ रहा है।
0: हाँ, तो खेती अनुरूप पर्याप्त पानी गिरा है वहाँ?
1: हाँ पर्याप्त है भैया, वो भाग रहा है पानी, ऊपर भाग रहा है सर।
0: तो क्या लगाया है आपने खेतों में अभी साहू जी?
1: अभी तो धान बोया सर, महामाया सरना सब यही धान लगाया सर। अभी आप कौन बोल रहे सर?
0: मेरा नाम शांतनु कपूर है साहू जी।
1: अच्छा अच्छा नमस्कार भाई।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: अभी हमारे स्वतंत्रता दिवस आ रहा है सर, तो वो त्योहार की तैयारी चल रहा है सर। अब का है, आज नागर तिहार भी है हरेली के, हमारे छत्तीसगढ़ की पहली तिहार भैया। त्योहार के तो मतलब सबको सर अलग अलग बधाई है सर।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: सावन के महीने चल रहा है सर, तो कोई भी अच्छा सा शिव भजन सुना दीजिए सर।
0: बिल्कुल साहू जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, आपका गीत प्रस्तुत है।
2: चकार चंड तांडवम नमो शिव शिवम शिव शिवम।

0: हेलो, आपकी पसंद में आपका कॉल लगा है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं सोनाली केशरवानी बात कर रही हूँ बिलासपुर से। मैं
0: अच्छा जी, सोनाली जी क्या करती हैं आप?
1: एडवोकेट हूँ, बिलासपुर में ही प्रैक्टिस करती हूँ।
0: अच्छा जी, युवाओं से संबंधित आप कुछ कहना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, आप काफी सारे युवाओं को वहाँ कोर्ट में देखती होंगी अलग अलग प्रकरणों में। आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए अभी वर्तमान में सबसे बेहतर उपदेश संदेश क्या होना चाहिए?
1: युवाओं के लिए, खासकर छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए जो है जरूरी कि अभी जो नशापत्ती जो ये लोग करते हैं उससे सबसे ज्यादा प्रकरण बनते हैं, तो इन सबसे दूर रहना चाहिए और पढ़ाई लिखाई करके अच्छे प्रोफेशन में जाना चाहिए। इन सब में सिर्फ प्रकरण ही बन पाते हैं, पूरा
0: और इसकी वजह से वो भी सरवाइव करते हैं और उनका पूरा परिवार भी प्रभावित
1: परिवार
0: होता
1: सरवाइव
0: है।
1: करता है
0: जी
1: बहुत।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के साथ समय बिताना कितना जरूरी है? आपको क्या लगता है? आप अपने अनुभव हमसे साझा करें।
1: आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में परिवार के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत मुश्किल भी होती है समय देने में, लेकिन
0: जी
1: समय देना चाहिए।
0: जी, अच्छा लगा सोनाली जी आपसे बात करके। आज आप अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जगजीत सिंह जी का है।
0: बिल्कुल, ये गीत आपकी पसंद का आप तक पहुंच रहा है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, समय का पता ही नहीं चला और आज की यह आत्मीय मुलाकात अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। हर पीढ़ी अपने समय की चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बदलाव वही लाते हैं जिनके पास सपने भी होते हैं और उन्हें पूरा करने का साहस भी। ऐसी ही साहस का अमर उदाहरण है शहीद खुदीराम बोस। बहुत कम उम्र में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि उम्र नहीं बल्कि विचार और संकल्प किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं। इन्हीं संदेश के साथ आज आपसे विदा लेते हैं कि अपने बड़ों के अनुभवों का सम्मान कीजिए, युवाओं के उत्सव को प्रोत्साहित कीजिए और अपने जीवन में ऐसे कर्म कीजिए कि आने वाली पीढ़ियां भी आपको गर्व से याद करें। आपने हमें अपना समय दिया, अपने अनुभव साझा किए और अपनी पसंद के गीतों से इस कार्यक्रम को और भी आत्मीय बनाया। इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई सुबह, नई सोच, नए विषय और आपके पसंदीदा गीतों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने रेडियो साथी शांतनु कपूर को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। प्रस्तुतकर्ता थे शांतनु कपूर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: सुप्रभात, मैं हूँ उमाशंकर पांडे। अब आप सुनेंगे आज की यातायात व्यवस्था पर आधारित हमारा दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के शहरी क्षेत्र की

0: सभी सड़कों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन बना हुआ है। यात्री एवं माल परिवहन बड़ी आसानी से हो रहा है। स्पष्ट है संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। इसी प्रकार सुगम आवागमन के लिए आप सभी से अपेक्षा है, जब भी सड़कों में हो किसी भी वाहन के साथ हो धैर्य रखें, वाहन की गति में संयम रखें और यातायात नियमों का सदैव सम्मान करें। मित्रों, जिस प्रकार हमारी सुरक्षित यात्रा के लिए वाहनों का पूर्ण स्वास्थ्य होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक वाहन चालक को भी हमेशा तन एवं मन से स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यदि स्वास्थ्य खराब है, शरीर के किसी भाग में दर्द है जिससे वाहन चलाने में कष्ट हो रहा है, तब मजबूरी में वाहन मत चलाइए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव कुशल वाहन चालन पर पड़ता है और ऐसी स्थिति में वाहन चालन खतरे से खाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि मन ठीक नहीं है, मन में किसी प्रकार का तनाव है, घर परिवार के किसी सदस्य अथवा ऑफिस में या अपने अधिकारी या मालिक से कोई विवाद हुआ हो जिससे मन आंदोलित हो, मन में कुविचार आ रहे हो, वाहन चालन में पूरा पूरा मन ना लग रहा हो, तब जबरन या व्यवस्था में वाहन मत चलाइए, क्योंकि ऐसी यात्रा सुरक्षित होगी इसमें 100% संदेह है। यदि वहां लेकर जाना अति आवश्यक है तो कुछ क्षण रुकिए, ठंडा पानी पिए,
1: अपने छोटे बच्चे की याद करें और सहज संभव हो तो उससे बातें भी करें। यदि नियमित कोई दवा लेते हैं तो वह भी लीजिए। देखिए कुछ ही क्षण में सब सामान्य हो जाएगा। तब यदि मन की अनुमति हो तो जाइए अपना वाहन लेकर। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ।
2: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय सुबह के ठीक 11 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंद

0: लाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
1: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
1: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
0: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
1: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं, तो श्रोताओं आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
0: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भू विज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
1: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
0: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
1: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
0: जी।
1: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
0: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्र ध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
1: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
1: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
1: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
1: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहा

0: बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे, तभी एक दिन
1: अरे दिलीप।
2: हाँ सुभाष।
1: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
2: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
1: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियां खाने का शौक है, है? मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
2: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
1: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
2: तो फिर?
1: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
2: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
1: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
2: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
3: Hey you idiots, क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
1: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
3: Is that right? You black monkey?
2: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
3: What? जी बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
1: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
3: You bloody rascal, you are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
1: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
3: तो क्या करेगा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? You scoundrel, you bloody swine, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
1: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
3: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
1: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
0: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है, इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
4: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
2: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
4: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
2: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
4: और अपने सुभाष बाबू?
2: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो ये

0: एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है।
1: क्यों सुभाष दा,
2: कितनी सजा हुई? नालायक कहीं की सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
3: क्या हुआ सुभाष बाबू?
2: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
4: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
2: कौन? शिशिर?
5: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ। दरवाजा खोलिए।
2: आओ अंदर आ जाओ। क्या खबर है?
5: सब तैयारी हो गई है। पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे। मैं स्वयं गाड़ी चला कर ले चलूंगा।
2: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
5: उसका भी प्रबंध हो गया है। आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
2: ठीक है।
5: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी ज़ियाउद्दीन नहीं है।
2: तो फिर ठीक है, आओ चले।
5: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
3: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
4: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
4: खुदा हाफिज साहब।
5: लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो।
4: ये अखबार कहां गए?
5: हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
6: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।

0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
1: जय हिंद, जय हिंद, जय।

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्यौछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का, ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब से लेकर 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
4: styles and mediums जी. instrumental
5: of course
4: you know and all that तो वो मैं confidently कह सकता हूँ, लेकिन quantity of each of them might not be as much.
5: yes
4: तो मेरा ये था कि lucky का music मैंने किया, मैंने कुछ और फिल्मों का भी किया, लेकिन फिर मैंने एक और भी चीज महसूस की। मैंने ये अक्सर देखा कि कभी कभी, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कि बड़ी मेहनत करते हो एक म्यूजिक पे, एक साउंड ट्रैक पे, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है।
5: जी,
4: तो क्या होता है कि एवरीथिंग गोज डाउन विद द शिप। अब क्या है कि वो गाना, जो गाने हैं वो आपने बेशक बेहद अच्छे कर दिया हूं, मगर उनको मौका ही नहीं मिला उभरने का, क्योंकि फिल्म जो थी वो पहले दिन ही डूब गई थी। तो अब आप भी उसके साथ ही डूब गए, आपका म्यूजिक भी डूब गया, और फिर किसी ने उसको सुना ही नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी मायूसी की बात थी, क्योंकि मैं बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, आई गेट वेरी इमोशनली अटैच्ड टू एवरीथिंग दैट आई डू। आई डोंट माइंड कि मैंने अगर कोई इंडिपेंडेंट गाना बनाया और उसको ठीक तरह से लोगों को मौका मिला उसको सुनने के लिए, और अगर लोगों को नहीं पसंद आया, नो प्रॉब्लम, कम से कम सुना तो सही।
5: जी,
4: उसने कम से कम थोड़ी सी रोशनी तो देखी कि भाई आपको मौका तो मिला उसको ना पसंद करने का, लेकिन अगर आपने सुना ही नहीं
5: तो अफसोस होता है,
4: तो फिर अफसोस होता है ना, जंगल में मोर नचा किसने देखा।
5: जी, लेकिन अगर लकी की म्यूजिक की बात की जाए, आपका फेवरेट क्या है?
4: अच्छा, लकी की बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ।
5: जी जी,
4: वो फिल्म भी फ्लॉप हुई थी,
5: लेकिन वापस रिवाइव हुई।
4: नहीं, लेकिन उसकी वजह पता क्या है?
5: जी,
4: इसमें आई हैव टू गिव क्रेडिट कि जो प्रोड्यूसर थे भूषण कुमार, ही कुड सी दैट इस मूवी में गड़बड़ है।
5: जी,
4: अच्छा, उस जमाने में सीडीज और कैसेट्स का जमाना था, और गाने बड़े अच्छे शूट हुए थे
5: बहुत।
4: हाँ, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि फिल्म की रिलीज को डिले कर दिया, और उन्होंने गानों को भरपूर तरीके से उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, और उस प्रमोशन की वजह से सीडीज और कैसेट्स जो थी वो
5: खूब चली।
4: अच्छा, जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई, अनफॉर्चुनेटली द फिल्म डिडंट डू वेल।
5: जी,
4: ठीक है, इट डिडंट डू वेल फॉर व्हाटएवर रीजन, इट वेंट डाउन इमीडिएटली, इट अफेक्टेड द
5: सेल्स ऑफ द म्यूजिक,
4: सेल्स ऑफ द म्यूजिक, बट बाय दैट टाइम वो पार हो चुके थे।
5: जी जी,
4: दे वर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अ सुपर हिट बिकॉज द पीपल लव द सॉन्ग्स, ठीक है ना। तो अब दैट वॉज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू

0: एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री, म्यूजिकल हिस्ट्री कह लो व्हाटएवर, कि जहां पर द मूवी डिडंट डू वेल बट द साउंड ट्रैक डिड रियली रियली वेल,
1: लोग आज भी याद करते।
0: हाँ, लोग आज भी याद रखते। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है, अब जैसे कि पंचम दा का शोले,
1: जी
0: ही गॉट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड्स एंड सेल्स बिकॉज ऑफ शोले, बट फ्रेंकली स्पीकिंग इवन ही यूज्ड टू एक्नॉलेज दैट शोले इज नॉट माई बेस्ट पीस ऑफ वर्क।
1: ऑफ कोर्स दैट्स द ट्रूथ,
0: या एंड दैट्स द ट्रूथ, एंड ही यूज्ड टू ऑल्सो से इट,
1: जी,
0: but because the film was such a colossal hit that it automatically helped
1: everything yeah.
0: Acha agar aapko yaad ho Lagaan picture, agar aapko yaad ho jab wo shuru mein uska soundtrack jab release hua to kisi ko samajh nahi aa rahi thi uska
1: ji,
0: and it was, you know, it was people were confused ki yaar kis tarah ke gaane hain, kis tarah ke, they were not working. The movie released and it became a colossal hit of its time, and overnight the music suddenly became a sensation because of the visual and the story line attached to the songs. They were very situational songs, so now people understood those songs. They understood the context,
1: right,
0: and suddenly people then started to listen to the songs. अच्छा, आई लव द सॉन्ग्स इवन बिफोर द मूवी वाज रिलीज्ड,
1: जी,
0: क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गाना जो है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए,
1: वो एक सेपरेट एंटिटी,
0: वो एक सेपरेट, मैं हमेशा उसको ऐसे देखता हूँ। मैं कहा यार, क्योंकि देखो फिल्म जो है वो फेड आउट हो जाती है,
1: जी,
0: गाने जो है वो रहते हैं, क्योंकि दे आर वेरी इजी, यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग एनीवेयर ना,
1: राइट,
0: यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग इन योर हेडफोन्स, इन ऑन योर फोन, इन योर कार, एवरीवेयर, यू कांट वॉच अ फिल्म एवरीवेयर। ऑफकोर्स टूडे you have the mobile phones and all
1: still,
0: that, lekin phir bhi
1: ji,
0: you don't have the time to watch a film all the time, but
1: ji,
0: music stays with you, music always stays with you, and it's very convenient. So I always feel that a song should be, yes, it should be situational, it should help the film's narrative, lekin it should stand on its own two feet,
1: right, very
0: ab jaise kuch gaane aise hain jo bade khoobsurat bane hue hote hain lekin uski picturization itni zyada achhi nahi hoti, kabhi bhi banda kehta hai yaar काश मैंने पिक्चराइजेशन नहीं देखी होती तो बेटर होता।
1: पल पल दिल के पास,
0: पल पल दिल के पास, मुसाफिर हूँ यारो,
1: जी,
0: मैं जिंदगी भर मैं उसको बचपन से सुनो, मैंने सडनली देखा यार ये तो टांगे पे ऊपर गाना शूट हुआ है, एंड इट वाज ओके, यू नो व्हाट आई मीन, बट यू नो सॉन्ग्स अल्टीमेटली आउटलिव द मूवी, सो देन यू नीड द सॉन्ग नीड्स टू स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट. There are very few examples of songs which were part of the narrative, but they still out, even though you would not, like, for example, a song like Julie. Ab Julie ka naam kyun hai? Kyunki film ka naam Julie tha.
1: जी.
0: और उसका मेन कैरेक्टर जूली था, लेकिन आज भी आप अगर सुनो, कितने लोगों ने जूली फिल्म देखी है आज के दौर में, लेकिन गाना कितने लोगों ने सुना है,
1: जी,
0: भूल गया सब कुछ, क्योंकि वो गाना इतना खूबसूरत है।
1: एंड कैन वी बिलीव दैट हम 50 साल पहले की म्यूजिक की बात कर रहे हैं?
0: एग्जैक्टली, एंड इट इज स्टिल सो ब्यूटीफुल एंड रिलेवेंट।
1: रिलीज इन 1975।
0: वाओ, देयर यू गो। तो देखिए बात ये है ना कि यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि म्यूजिक जो है वो अब इट शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट, यू सी, क्या था कि वो जो गाने थे, जो अगर फिल्म ने अच्छा काम नहीं किया फॉर वट एवर रीजन, लेकिन द रेकॉर्ड लेबल उस जमाने में HMV थी, तो वट दे यूज टू डू वाज वो उन गानों को पुश करते थे,
1: जी,
0: कॉम्पाइलेशंस में और इस तरह से, तो वो गाने जो थे बेस्ट ऑफ किशोर और या फिर फलाना, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वो उसको पुश करते थे, और जब वो पुश करते थे तो वो गाने जो थे वो बहुत मकबूल हो जाते थे ऑन देयर ओन। अच्छा, यहाँ आज के और कुछ अरसे से दौर ये है कि भाई अगर फिल्म नीचे गिर गई तो उसकी सारी चीजों को भूल जा,
1: जी, ये आज के जमाने,
0: हाँ, आज के जमाने, तो व्हाट हैपेंड वाज कि ये मेरे साथ दो चार दफा हुआ जहां पे पिक्चरें जो थी वो नहीं चली और वो म्यूजिक जो था वो डूब गया फिल्म के साथ, तो वो मेरे लिए बड़ा वो डिसहार्टनिंग था, तो देन आई सॉर्ट ऑफ सेड यू नो व्हाट आई विल बी वेरी वेरी चूजी ऑफ हुम आई वांट टू वर्क विद व्हेन इट कम्स टू कंपोजिशन,
1: राइट,
0: फिल्म में गायकी तो मैं करता हूँ सबके साथ, लेकिन मैंने कहा जहां तक कंपोजिशन करता, क्योंकि मेरे लिए कंपोजिशन इज लाइक गिविंग बर्थ टू समथिंग,
1: उसमें आपका अपना एक सिग्नेचर होता है जो सुन के ही अगर कीन लिसनर है वो अंदाजा लगा सकता है कि भाई ये आपका म्यूजिक है।
0: हाँ, तो इसके अंदर मैं अपनापन बहुत अंदर से निकालता हूँ,
1: जी,
0: तो वो आई गेट टू इमोशनली अटैच्ड टू इट। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपने उस गाने को प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया और उसको एक मौका दिया उभरने के लिए, और वो अगर उसके बावजूद नहीं उभरा तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा।
1: जी
0: मैं कहूंगा यार ठीक है लोगों को नहीं पसंद आया, चलो ठीक है विल ट्राई बेटर, लेकिन कम से कम लोगों ने सुना तो सही। लेकिन यहां पर कई दफा होता था कि लोगों

0: सुना ही नहीं, उनके तक पहुंचे ही नहीं और वो पहले से डूब गया। अच्छा, कई दफा जब मैं कभी कभी कोई पुराना उस तरह का उन फिल्मों में से अगर कोई गाना मैं किसी को सुना, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, कब रिलीज हो रहा है, मैं कहा यार ये क्या मैं
1: ये
0: बताऊं
1: और
0: तुम्हें,
1: तकलीफ
0: ये
1: बढ़ाने
0: और
1: वाली
0: तकलीफ
1: बात है
0: बढ़ाती है, यू नो। अच्छा,
1: जी।
0: लेकिन फिर ये क्या हुआ, मैं चुप हो जाता
1: तो
0: हूँ।
1: उनमें से कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
0: देर वॉज अ सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म, रादर द साउंड ट्रैक
1: ओके
0: ऑफ अ फिल्म कॉल्ड सदियां।
1: जी।
0: द फिल्म आई रियली एंजॉयड मेकिंग द साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म सदियां, और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के गाने हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं आज भी।
1: जी
0: एंड मुझे बड़ा उससे बड़े बड़े दुख हुआ
1: क्योंकि फिल्म नहीं चली।
0: कि वो फिल्म नहीं चली, और लिहाजा वो गाने जो थे वो रह गए, लेकिन वो गाने जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अगर आप
1: जी
0: उनको सुनोगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड मे बी व्हाई मे बी आई एम इमोशनली वेरी अटैच्ड टू दोस
1: एंड
0: सॉन्ग्स।
1: लकी के कौन से गाने की बात
0: सुन
1: की जाए?
0: जरा, मैंने कि सुन जरा, आई लव्ड, नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली आई लव्ड सो मेनी ऑफ द सॉन्ग। आई लव्ड शायद ये तो प्यार है, क्योंकि मेरी पहली मरतबा लता जी के साथ गाने का ऑनर हुआ,
1: जी
0: तो जो एक एक अगेन वो एक ख्वाब था मेरा।
1: कितनी धड़कनें बड़ी हुई थी।
0: वो लता जी के साथ अगेन एक जो एक्सपीरियंस था वो अनमोल था। मतलब कि मैं लता जी को पहले से जानता था, क्योंकि मेरा आशा जी के साथ आना जाना हमेशा रहता था, तो कई मरतबा दीदी के साथ भी मुलाकात होती रहती थी, और वो बहुत ही दिलचस्प खातून थी, वो बड़े मज़ेदार, शी वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ गुफ्तगू करने का, गपशप मारने का, लेकिन कभी काम नहीं किया। और जब पहली दफ़ा जब उनके साथ इसी गाने के लिए जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मैं तो बहुत नर्वस था, यू नो आई वॉज वेरी नर्वस। और अच्छा, पता है ये जो महान लोग होते हैं ना, इज हु आर बियॉन्ड अ सर्टन लेवल, दे नो देयर ग्रेटनेस,
1: यस
0: दे नो इट, दे वेरी मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट इट। मतलब उनके अंदर उस तरह का कोई मगरूरपन नहीं होता, लेकिन उनको पता है कि भाई मैं लता मंगेशकर हूँ या मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और मुझे पता है कि मेरा असर जो है, ऑरा जो है, वो अगले बंदे जो मुझसे कई दर्जे जूनियर है उसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। इन्होंने भी, उनको पता है। और जो उनका सबसे बड़ा जो बड़ापन है
1: जी
0: वो ये होता है कि वो आपको सबसे ज्यादा, सबसे पहले आपको
1: ईज करा,
0: ईज कराते हैं, यू नो, टू मेक यू फील
1: रिलैक्स।
0: रिलैक्स, बिकॉज दे नो दैट आपके अंदर क्या, मतलब कि
1: हवाइयां उड़ी हुई हैं।
0: हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनको पता है। तो उनका सबसे पहले तो ये होता है कि आपको जरा काम डाउन करें। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि अब मैं पहली दफा रिकॉर्ड कर रहा था लता जी के साथ, तो मैंने फोटोग्राफर बुलाया। अच्छा, उस जमाने में कहाँ BTS हुआ करता था,
1: जी
0: कहाँ जिस इस तरह की जो चीजें जो आजकल में होती हैं, और पैप्स तो होते ही नहीं थे, तो
1: जी
0: देयर वाज नो सच थिंग। तो मैं अपने ही किसी फोटोग्राफर को बुलाया, तो अब मैं बैठा हूँ स्टूडियो में, मैं उनको गाना सिखा रहा था, ठीक है, मैं गाना बता रहा था उनको, मैं कीबोर्ड पे था और वो मेरे साथ बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि एक कैमरामैन है, तो उन्हें ये कैमरामैन, अच्छा मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा हाँ जी लता जी, कैमरामैन आप माइंड तो नहीं कर रही अगर कोई, अगर कुछ दो चार फोटोज ले ले। हाँ नहीं नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, नहीं एक सेकंड एक सेकंड, मुझे खड़ा होने दो। मैंने कहा खड़ा किस लिए? मैं यहाँ पे खड़ी होंगी और ये, और शी हैड द पेपर विद द लिरिक्स, जब यहाँ पे खड़ी होंगी ना आपके सामने तो फोटोग्राफ में लगेगा कि मैं आपसे सीख रही हूँ।
1: अरे गजब,
0: मेरा तो जबड़ा गिर गया उस वक्त। शी वॉन्टेड मी टू हैव दैट मेमोरी,
1: वाओ,
0: कि वो अगला बंदा जब देखेगा उस फोटो को उसको नजर आएगा कि मैं आपसे गाना सीख रही हूँ। मैंने कहा यार कौन करता है ये,
1: कौन करता है,
0: कौन करता है आप, मतलब कि यू आर गिविंग मी दैट ऑनर दैट यू स्टैंडिंग एंड लर्निंग एंड गिविंग मी दैट ऑनर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, दैट यू गिविंग मी दैट रिस्पेक्ट, एंड आई एम जस्ट आई एम अ किड इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने उस दिन उनसे इतना बड़ा ये एक सबक सीखा कि वहां पर वो करने से वो छोटी नहीं हुई, वो मेरे आंखों में इतनी बड़ी हुई कि मैंने उससे सबक सीखा कि ये होता है जेन्युइन ह्यूमिलिटी।

0: देखिए लता जी, आशा जी की बात हुई, बच्चन साहब के साथ भी तो ऐसी कुछ हुआ है।
1: ऑफ कोर्स बच्चन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ है
0: जी।
1: मैं देखिए उनसे अच्छा मेरा जो यू नो आई मीन ही फॉर मी वाज वाज ऑलवेज यू नो अ स्टार एंड आइकॉन एंड एंड यू नो अ लेजेंड यू नो एंड ही विल ऑलवेज बी। तो उनके साथ जब जब मैं इंटरैक्ट मैंने करना शुरू किया और सबसे जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इन सब लेजेंड्स के एक चीज जो कॉमन थी जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी वो ये था कि आई वाज एबल टू गेट ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू सी हाउ दे क्रिएटेड देयर मैजिक कि व्हाट वाज द प्रोसेस कि वो किस मरहले से गुजरते हैं और अपने दिमाग को किस तरह से तैयार करते हैं उस तरह के लेवल की परफॉर्मेंस निकालने के लिए कि व्हाट प्रोसेस दे वेंट थ्रू। और हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है
0: अपने आप।
1: तो वो मैंने बच्चन साहब के साथ भी देखा, मैंने आशा जी के साथ भी देखा, लता जी के साथ भी देखा।
0: उनके साथ शूट कितना डिफिकल्ट था आपके लिए?
1: ओह इट वाज अमेजिंग। अमित जी के साथ तो शूट ऐसा था कि मतलब कि हर एक टेक जो थी वो अनमोल थी।
0: अच्छा।
1: और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये हुई जब हम एडिट पे बैठे क्योंकि उन्होंने हर एक शॉट के हमने 3-4 वर्जन किए थे। अच्छा वो इम्प्रोवाइज करते मैं भी इम्प्रोवाइज करता हूँ क्योंकि मेरा तो क्लासिकल म्यूजिक से ही मतलब कि बैकग्राउंड है और हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में तो सब कुछ इम्प्रोवाइज्ड होता है तो वो इम्प्रोवाइजेशन का कीड़ा जो है वो मेरे भी बचपन से है तो वो तो ऑफ कोर्स ही इज अ मास्टर एट दैट। तो वो जब जो अलग अलग टेक्स थी हम कहते यार ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। हम कई दफा ऐसी उलझन में पड़ जाते थे तो वी यूज्ड टू लिटरली फ्लिप अ कॉइन कि कौन सा शॉट रखे क्योंकि वी डिडंट नो व्हिच वन टू कीप यू नो बिकॉज़ दे वाज आल्सो गुड एंड डिफरेंट इन देयर ओन वे ही वुड गिव अस एवरी शॉट ही वुड गिव इन अ डिफरेंट वे। तो वो उनके साथ काम करके जो एक्सपीरियंस मिला वाज समथिंग दैट वाज एब्सोल्युटली प्राइसलेस एंड आई लर्न्ड सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पीपल एंड इट वाज सच एन इनक्रेडिबल प्लेजर।

0: चलते चलते विविध भारती के सुनने वालों के लिए आप क्या गुनगुनाएंगे जो दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं और म्यूजिक के ट्रूली दीवाने लोग हैं?
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 11:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। 11:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से शुरू हो रही है बस्तर तिरंगा यात्रा। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों के अंक बढ़ाने के लिए आने वाले फर्जी कॉल से सावधान रहने की अपील की है। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से बस्तर तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। तिरंगा यात्रा आज नारायणपुर से प्रस्थान कर दंतेवाड़ा पहुंचेगी। इसके बाद कल 13 अगस्त को दंतेवाड़ा से बीजापुर के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं 14 अगस्त को यह यात्रा बीजापुर से प्रस्थान कर आवापल्ली, उसूर, कलगम, ताड़पाला होते हुए कुर्रे गुटालू पहाड़ी पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का समापन होगा। उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि तिरंगा यात्रा बस्तर के अति संवेदनशील और माओवाद प्रभावित रहे इलाकों से होकर गुजरेगी। उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग के 90 से अधिक गांवों में आजादी के बाद पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाएगा। यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा प्रमुख 31 स्थानों पर पहुंचेंगे जहां माओवादियों ने जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया था। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर किसान अपने कुलदेवता और खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा कर रहे हैं। हरेली पर्व आज सुबह 10 बजे से नव रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरेली अमावस्या के अवसर पर आज बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में पाट यात्रा पूजा विधान के साथ 75 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत होगी। इस दौरान पारंपरिक मांझी चाल के मेंबर मेंबरिन, पुजारी पटेल, नाइक पाइक और सेवादार रथ निर्माण के लिए औजार बनाने ठुरलू खोटला रस्म अदा करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। श्री चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांव और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार, अंक बढ़ाने या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उत्तीर्ण कराने के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल से सावधान रहने की अपील की है। मंडल ने कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है और ऐसे मामलों में धनराशि की मांग करने वाले लोगों का मंडल से कोई संबंध नहीं है।

विद्यार्थी और अभिभावक ऐसे कॉल पर विश्वास न करें, किसी प्रकार का लेन देन न करें और फर्जी कॉल मिलने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। बिलासपुर जिले के ग्राम रहंगी बिल्हा में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना के लिए 5 एकड़ की भूमि को मंजूरी मिल गई है। यह 100 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य परियोजना है। अस्पताल बनने से बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में ईएसआईसी से जुड़े पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। पहले से जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में आज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और इससे लगे क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत बधमरा रेलवे फाटक अंडरपास आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से शुरू हो रही है तिरंगा यात्रा। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों के अंक बढ़ाने के लिए आने वाले फर्जी कॉल से सावधान रहने की अपील की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड

0: इनोवेशन AIPSI के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि AIPSI मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदन ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारूफ को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

रंग दे बसंती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अभी प्रसून जोशी के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था, नरेश अय्यर, मोहम्मद असलम और साथियों की आवाजें थीं। यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमने कुछ ऐसी फिल्में चुनी हैं जिनमें युवाओं की उपस्थिति दर्ज होती है। चलिए आज युवाओं के लिए हम करते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनके सारे सपने पूरे हों और उनके हौसले सदा बुलंद रहें। फिल्म 3 इडियट्स, सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजें।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: छिछोरे फिल्म का गाना है नक्श अजीज और साथियों की आवाजें हैं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: 1947 अर्थ इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

0: जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और विजेता पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
0: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
0: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गाना। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजें हैं।

चक गए इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हेमा सरदेसाई की आवाज में जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान का संगीत था। लागा चुनरी में दाग ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में।

लगा चुनरी में दाग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल थे शांतनु मोइत्रा का संगीत। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक पेज पर। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज की जो इबारत है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें और आंगन में दोनों के नाम का एक पेड़ हो, उस पौधे में सदा प्रेम के फूल खिलें। लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद वो फिर उसी गांव में लौटी, मतलब वो यानी लड़की। पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थीं, मगर वो नहीं था। तभी हवा में जैसे उसकी आवाज गूंजी, बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गांव रे। वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था। ये वही जगह थी जहां उसने लिखी थी एक प्रेम कहानी। तो फिर आगे क्या हुआ, यही तो आपको बूझना है आज। आज आपको पूरी करनी है ये कहानी और दो लाइन में आपको बताना है कि आगे क्या होता है, उसका प्रेमी वापस मिलता है या नहीं, जहां से गाने की आवाज आई थी वहां उसका प्रेमी आया या नहीं, ये आपको बताना है। दो लाइन की एक छोटी सी इबारत लिखिए और बहुत बड़ी टिप्पणी लिखने की जरूरत नहीं है। दो लाइन में बताइए प्रेमी उसका वापस लौटा या नहीं, अगर लौटा तो फिर क्या हुआ। अगर आप बूझ जाते हैं तो फिर ठीक है, वरना हम प्रोग्राम के आखिर तक तो आपको बताएंगे ही कि आखिर कहानी में आगे क्या होता है। अब बहुत सारे श्रोताओं ने टिप्पणी लिखी है, कहानी का निचोड़ लिखा है किसी ने, किसी ने मिलती जुलती कहानी लिख डाली है, किसी ने अंदाजा लगाया है। लेकिन बहुत लोगों को अंदाजा लगाना बाकी है, तो आप जरा बूझिए कि इस कहानी में

आगे क्या होता है, वो प्रेमी जोड़े में जो बिछड़ जाते हैं प्रेमी वापस लौटता है कि नहीं, और साथ में वो शब्द भी बुझिएगा जिससे गाने चुने हैं हमने, वो गानों के बोल भी आप बताते चलिए। फिलहाल बताइए गीतकार का नाम, फिल्म है आज और कल, गीतकार का नाम बूझिए, संगीतकार है रवि, आवाज किसकी है ये तो आप बता ही सकते हैं। फिल्म आज और कल, इबारत में जो शब्द है उन्हीं शब्दों से गाने सुनवा रहे हैं।

साहिल लुधियानवी गीतकार, ये हमने पूछा था आपसे, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया। संगीतकार का नाम भी सही लिखा, रवि मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म आज और कल। एक श्रोता ने लिखा, छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में, रिमझिम सितारों का आंगन होगा, बीते हुए दिन कुछ ऐसे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा, पर्वत, घर, फूल, वक्त, ख्वाब, नाम, प्रेम, प्रेम कहानी। भाई गाने के बोल भी तो लिखिए, इतनी कंजूसी क्यों? और कंजूसी वहाँ कीजिए जहाँ हमने कहानी पूरी करने की बात कही है। सिर्फ एक या दो लाइन में आप कहानी पूरी कीजिए कि क्या होता है वो पर्वत, पर्वतों के बीच में, पेड़ों के झुरमुटों के बीच, जब वो वापस लौटती है, एक बार उनके ख्वाब टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जब वो वापस आती है और गाना गूंजता है वादियों में, बूझ मेरा क्या नाम रे, तो उस समय क्या वो उसका प्रेमी वापस आता है या नहीं, ये आपको बताना है। पूरे प्रोग्राम में हम पूछते रहेंगे, आखिर में इसका हम जवाब देंगे, मतलब कहानी पूरी करेंगे। ये अधूरी कहानी हमने दी है आपको। एक श्रोता ने पूरी करने की कोशिश की है, देखते हैं क्या लिखा है। बिछड़ते समय प्रेमी ने प्रेमिका को एक पीला दुपट्टा दिया और कहा, जो इस जगह पहले लौटेगा वो इस पेड़ की ऊपरी शाख पर ये दुपट्टा बांध देगा, तब दोनों को यकीन हो जाएगा कि अभी भी हमें एक दूसरे से प्रेम है और इंतजार है। जब प्रेमिका गांव लौटी तो देखा पेड़ की ऊपरी शाख पर एक नहीं अनगिनत पीले दुपट्टे लहरा रहे थे। क्या बात है भाई, हमारी आंखों के सामने तो सीन आ गया है, कैसे दुपट्टे लहरा रहे होंगे। तो जरा आप अपना निजी अनुभव बताइए कि आपने कभी किसी के लिए ऐसा पीला दुपट्टा, नीला दुपट्टा, लाल बांधा है, या फिर किसी के लिए प्यार का धागा बांधा है। वैसे मंदिर में जाते हैं तो अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए हम धागा बांध कर आते हैं, कभी अपने प्यार की खातिर कोई धागा बांधा है, जरा बताइए, वो अनुभव ही साझा कर सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस तरह की मन्नतों वाला धागा जब बांधते हैं तो ये अच्छी बात है, उसमें दुआओं की बाकायदा तावीज होती है।

कविता ने लिखा है, कदम आवाज की दिशा में बढ़े तो देखा आंगन में लहराते उसी पेड़ की छांव में बैठा वो, आज भी उसी के इंतजार में वही गीत गा रहा था। क्या बात है भाई, नजरों से नजरें मिलते ही जैसे सालों की दूरी मिट गई और अधूरा प्रेम हमेशा के लिए पूरा हो गया। आज के शब्द पर्वत चंबा ख्वाब पगडंडी, खूबसूरत गाना और गाने के बोल भी लिखे हैं, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बूझते रहना है हम कौन से गाने सुनवाने वाले हैं। अब जरा हमें हीरो हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म है आदमी और इंसान।

0: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे

विविध भारती से यह है कार्यक्रम सुरीला सफर। आदमी और इंसान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था इस प्रोमो से पहले, और आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। धर्मेंद्र और सायरा बानो सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्दी जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत को पूरा करने का हम साथियों को मौका दिया है, बहुत अच्छा लगा आपका नया तरीका। तो हुआ ये कि जिस समय वो उस जगह पर पहुंची थी

उसी समय वो शख्स भी अपनी पुरानी यादों को पुनः जीने के इरादे से संयोग वश वहां पर पहुंच गया था और वही गीत गाकर खुश हो रहा था। दोनों अपने इस गीत को गुनगुनाते हुए फिर से मिले। क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब प्रेम सच्चा है तो मिलेंगे ही ना। मिले मतलब वो प्रेमी जोड़ा मिल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जैसे कि पुनर्जन्म की कहानी हो और अगले जन्म में मिले। एक श्रोता ने ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रेमी जोड़ा अर्थात मेरी धर्मपत्नी और मैं स्वयं इन दिनों कश्मीर के पर्वतों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अभी इस समय एक कश्मीर के हॉलीडे होम में रुके हुए हैं, जिसकी खिड़कियों से पहाड़, वादियाँ, पेड़ पौधे और खूबसूरत फूलों के अद्भुत नज़ारों का दर्शन कर रहे हैं। और मन बस यही कह रहा है कि धरती पर अगर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और इस जन्नत को बचाए रखने के लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब हरितिमा बचाए रखना है हम सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमें अभी आपके जवाब का और आपकी कहानी पूरी करने का इंतजार है कि देखते हैं कौन सही मंजिल तक पहुंच पाता है, कहानी की थीम को कौन पकड़ पाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप अपनी जो विचारधारा है वो साझा करते रहिए। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का गाना, और ये वही गाना है जिसे उसने सुना पर्वतों की वादियों में और इसी गाने के जरिए अपने प्रेमी को याद किया। तो आपको पूछना है आवाज़ किसकी है और गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। फिल्म है सीआईडी।

शमशाद बेगम की आवाज थी मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं ने सही लिखा है, सीआईडी फिल्म थी। और जरा बताइए कि ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें कि गांव हो, पीपल हो और इसमें गांव का पूरा परिवेश हो, ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें नदी भी हो? क्योंकि आज की इबारत में ये शब्द कई बार आ गए हैं, तो नदी, गांव और पीपल वाले अगर कोई और गाने आपको याद आते हैं तो जरूर बताइए, हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेमी अक्सर लौटते ही हैं, कुछ या बहुत कुछ खोकर, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सालों बाद लौटने पर जब उसने देखा सफ़ेद स्वेटर जिस पर गुलाब के फूल की बहुत सुंदर कढ़ाई थी, उसे तुरंत ही याद आ गया उसके द्वारा दी गई प्यार की निशानी उसके प्रीतम प्यारे ने पहनी है। क्या बात है, हमारे श्रोताओं के अंदर एक कथाकार भी है, बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। बहुत सारे श्रोताओं ने एक कथाकार की तरह पंक्तियाँ लिखी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ, मेरे दिल के टुकड़ों में चांद की उदासी छिपी और धुंधली कुछ तस्वीरें लिखी रही। कहानी सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नीले पर्वतों की धारा, बहुत ही खूबसूरत छायांकन, पर्वत, झरने, नदियाँ, आपकी इबारत से बिल्कुल मैच कर रहा है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत अधूरी बताई गई है और लिखा है कि हम पूरी करें। मिलना बिछड़ना नियति में था, जब गाना सुना पुराना सजन मिल गया, फूल खिल गए, मिलन हो गया, गिले शिकवे सब दूर हो गए, प्रेम में बड़ी ताकत होती है। सिर्फ प्रेम में बिछड़ने की वजह गिले शिकवे ही नहीं होते हैं, कई बार मर्यादा भी होती है, समाज भी आड़े आता है, परिवार भी आड़े आता है। तो ये अब हम आपको एक क्लू दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, जरा बुनिए आगे वाली कहानी सिर्फ दो लाइन में, एक लाइन में। हमें पता है कि आप बुन सकते हैं ये कथा। चलिए अब हम आगे बढ़ें और आपको सुनवाएं अमानत फिल्म का गाना। आपको बूझना है कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। हमें लगता है कि ये फिल्म आप सबने देखी जरूर होगी, तो बूझिए जरा कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है। संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी आप बता सकते हैं।

आज की इबारत में जो कथानक है कुछ निचोड़ इस गाने में है। जब प्रेमी जोड़े बिछड़ते हैं तो दिल से दिल की बात होती है, एक पुकार होती है, एक तड़प होती है, पीड़ा होती है। तो कुछ ऐसा ही ये गाना भी था और हमने पूछा था कि इसमें कलाकार कौन है, मनोज कुमार साधना। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और साहिल लुधियानवी के बोल होते हैं, रवि का संगीत है और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है। फिल्म गोदान, नदिया के पार, नीले गगन तले गाने के बोल भी लिखे हैं बहुत सारे श्रोताओं ने। गांव के परिवेश पर हमने पूछा था कि ऐसा गाना जिसमें नदी है और गांव है तो कोई गाना याद आता है तो वो भी बताइए, श्रोताओं ने वो भी बताया है। और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता लगातार अपनी यादों की गलियारों में विचरण कर रहे होंगे और गाने याद कर रहे होंगे। याद कीजिए, बहुत सारे श्रोता अगर एक ही गाना लिखेंगे तो हम वो गाना जाएंगे भी और बहुत सारे श्रोताओं के लिखे हुए गाने भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मुड़ी तो सामने वही खड़ा था, बालों में सफेदी, आंखों में वही प्यार और हाथ में उस पेड़ की एक हरी टहनी जिसे उन्होंने कभी साथ लगाया था। दोनों कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही वक्त आने का इंतजार करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि रही बात कहानी की तो दिल हमेशा उसे ढूंढता रहता है जो कभी मिला नहीं या मिल नहीं सकता। जब उसने वो गीत सुना तो कुछ पल के लिए वो अतीत में चली गई, पर देखा तो एक छोटी सी पहाड़ी पर एक लड़का वो गीत गुनगुना रहा था। जब उसने पूछा कि उसे ये गाना कैसे आता है तो उस लड़के ने बताया कि उसके पिता अक्सर गुनगुनाते रहते थे और कहते थे एक दिन कोई ये गीत सुनकर उसके बारे में जरूर पूछेगा। क्या बात है भाई, ये तो एक अलग सी कहानी डेवलप हो रही है। तो ठीक है, आज अपने कहानीकार दिल को टटोलिए और लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है, गाने के बोल की लंबी फेहरिस्त भेजी है, पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, देखो मैंने देखा एक सपना, काश ऐसा होता, तेरी गली में होता मेरा चौबारा, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी फेहरिस्त है जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहेगी, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मधुमती फिल्म का गाना आ रहा है, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। उम्मीद है आप सही सही बताएंगे, जल्द बताएंगे।

मधुमती फिल्म का गाना था। हमने गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था, त्वरित जवाब आया, श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया, शैलेंद्र और सलील चौधरी, मोहम्मद रफी की आवाज थी। और श्रोता कोशिश कर रहे हैं कहानी की बात को आगे बढ़ाने की। और अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो बस ये तो बताइए कि अंत क्या होता है कहानी में, प्रेमी जोड़े में वो प्रेमी आता है इस गाने को सुनकर या फिर नहीं आता है। जो भी गाने आज बज रहे हैं, मेरे ख्याल से उस प्रेमी तक इन गानों के जरिए आवाज पहुंचनी चाहिए, तो जो कहानी इबारत की थीम है उसमें। अब एक श्रोता ने लिखा है कि इंसान बहुत कुछ भूल जाता है पर पहला प्यार नहीं भूल पाता, क्योंकि वो उसकी आत्मा और जहन में पत्थर की लकीर की तरह इंगित हो चुका होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर में नदी पहाड़ों के वातावरण में रहने वाले प्रेमियों के मिलने बिछड़ने पर आने वाले गीत सुनने को मिलेंगे। चंबा का गांव और प्रेमी क्या कहते हैं, वो भूली दास्ता फिर याद आ गई, बीते दिन वो प्यारे दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बूझ मेरा क्या नाम रे। बहुत सारे गानों को मिलाया है इन्होंने, एक कड़ी सी बनाई है, अच्छी बात है ये। एक श्रोता ने लिखा है कि वो भूली दास्ता लो फिर याद आ गई, हवाएं गुंजायमान है, यही वो जगह है, यही है फिजाएं, यहीं पे कभी आप हमसे मिले थे, यहीं पे कभी हाथों में हाथ लेकर कभी न बिछड़ने का वादा किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी भावुक सुंदर इबारत की परिपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं हम। विरह दर्द को आंचल में समेटे, मन की सारी शक्ति बटोरे, वो उस हरे भरे फूल पेड़ के पास पहुंची जो उन दोनों ने लगाया था और बोल उठी, ओ मेरे मनमीत, तेरा नाम है अमर प्रेम, तेरी यादों को दिल से कैसे मिटाऊं, तुम्हें भुलाना नामुमकिन है, क्योंकि जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार हमने जन्म लिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन जरा आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम, किन हीरो पर किन हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म महबूबा, जल्द बताइए ताकि अगले सवाल का जवाब आप दे सकें। हीरो हीरोइन लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

महबूबा फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और दरअसल इस गाने का जिक्र भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया था। तो समझ लीजिए कि आप सभी की फरमाइश पर यह गाना हमने बजाया। तो आज की इबारत से कोई शब्द आपको सूझ रहा है जिस पर बहुत सारे गाने आपको सूझ रहे, तो वो आप लिख डालिए, फिर वही गाना हम आप तक पहुँचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हरियाली अमावस्या है, सुरीला सफर में नदी पहाड़ों की बातें हैं और वैसे ही गाने हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का सुरीला सफर। एक श्रोता ने लिखा है कि बीते हुए दिन और हालात लौट कर नहीं आते, लेकिन अगर दोनों का प्यार सच्चा और पवित्र है तो बिछड़े हुए प्रेमी फिर से मिल सकते हैं। सच क्या है, बीता हुआ कल जो समय निकल गया शायद वापस नहीं आता, टूटे हुए ख्वाब पुराने जख्मों को भरने में समय लगता है, हालात अगर हालात बदल जाएं तो अलग हुए रास्ते फिर से जुड़ जाते हैं। अब बात बीते हुए दिन की चली है, तो चलिए एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। आपको पूछना है किसकी है आवाज और गीतकार का नाम। फिल्म है फर्स्ट लव और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है।

सभी श्रोताओं ने सही बताया, सुमन कल्याणपुर की आवाज है, गुलशन बाबरा के बोल हैं। ये बात, ये जानकारी कम श्रोताओं ने दी है। दत्ताराम का संगीत और फिल्म थी फर्स्ट लव। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि उसने देखा कि गाना एक कुटीर से आ रहा है, जाके देखा तो प्रेमी की बेटी गा रही थी, प्रेमी तो गुजर गए थे। ये एंड लाइन हमारे श्रोता ने लिखी है। और सब अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लिखें कि कहानी का अंत क्या होना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आप द्वारा प्रस्तुत शानदार इबारत के साथ सुरीला सफर के लाजवाब कमेंट सुनकर पढ़कर मन प्रफुल्लित हो रहा है। हमारा भी मन प्रफुल्लित हो रहा है कि एक जरा सी कहानी है छोटी सी, उसमें आप सभी उसमें शामिल हो रहे हैं, उस छोटी सी कहानी को कितना विस्तार दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब जरा बताइए हीरो हीरोइन का नाम और कौन से शब्द इस गाने में आते हैं इबारत वाले, और कौन से शब्द वाले गाने बाकी हैं, जरा ये भी तो लिखिए। फिल्म मेरा नाम जोकर, आपको हीरो हीरोइन का नाम बूझना है। और हाँ, अगर वो प्रेमी मिल जाता है तो फिर वहां पर कौन सा गाना होना चाहिए, जरा ये भी बताइएगा।

आप सुन रहे थे ये गाना, फिल्म थी मेरा नाम जोकर, मुकेश की आवाज़, हंसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और श्रोताओं ने बताया है राज कपूर और सिमी गरेवाल इस फिल्म में होती हैं, इस गाने में। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आजा सनम मधुर चांदनी में हम ये भी गाना होना चाहिए। अब देखते हैं कि वो मुलाकात कैसी होती है, मतलब वो प्रेमी जोड़े मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वहाँ पर जब अगर वो जोड़े मिलते हैं तो कौन सा गाना होना चाहिए, जरा ये बताइए। देखते हैं, आपने बहुत सारे श्रोताओं ने कोशिश की है कहानी पूरी करने की, अगर वो गाना भी बता देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी आपकी पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आवाज़ के पीछे गई तो वहाँ कोई नहीं था, बस हवा थी जिसमें उसकी आवाज़ और उसके बीते दिनों की खुशबू घुली हुई थी। उसने आंगन के उस पुराने पेड़ को छुआ जिस पर दोनों के नाम अब भी साथ साथ खुदे थे। गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, बस उसकी आहटें दिल के किसी कोने में ठहरी रहती हैं। बरसों बाद जब यादों की कोई खिड़की अचानक खुलती है तो बीते दिनों की खुशबू के साथ एक हल्की सी टीस भी लौट आती है। कुछ प्रेम कहानियां इस जमीन पर मुकम्मल नहीं होती, वे बिछड़ कर आसमान की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। क्या बात है, एक कहानी आपने रच दी है, बहुत अच्छा लगा। अब बूझिए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, फिल्म है किनारा। गीतकार और संगीतकार का नाम पता होगा आपको शायद, तो लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

मेरी चाबियां घर की।

0: मुझसे और कभी लड़ती भी है।
1: किनारा फिल्म का गाना था, भूपेंद्र, हेमलता, हेमा मालिनी की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था, और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। और ये गाना हमें अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि इस गाने में पूरी कहानी निहित थी, इसलिए गाना सुनवाया। और एक गाना अभी जरूरी है जिसका जवाब आप सभी ने नहीं दिया, देखिएगा शायद वो आपका भी फेवरेट सॉन्ग हो और आपने भी वही गाना सुना चुना हो। एक श्रोता ने लिखा है कि सच्चा प्रेम तो वो है जिसमें मिलने की नहीं, एक दूसरे के लिए सच्चा समर्पण हो, यही प्रेम की पराकाष्ठा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सफेद कागज पर काली स्याही से लिखी हुई दास्तान हो, इसे कृपया आप पूरा कर दें। ये टिप्पणी पढ़ी जा चुकी है, शायद ये दोबारा और तिबारा भी आई है एक टिप्पणी। और अब वो इबारत मैं आप तक पहुंचा रही हूं जिस इबारत की बात बार बार की इस प्रोग्राम में। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था, उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें, आंगन में दोनों के नाम के एक पेड़ हो, लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया, वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद फिर उसी गांव में वो लौटी, पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थी, मगर वो नहीं था। तभी हवा में उसकी आवाज गूंजी, बूझ मेरा क्या नाम रे, वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था, उसने आंखें बंद की तो लगा जैसे बीते हुए दिन फिर उसके सामने खड़े हैं। कुछ प्रेम कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ टूटे ख्वाब उम्र भर आंखों में अपना घर बनाए रहते हैं। अब इस इबारत के मुताबिक तो मिलता है वो प्रेमी जोड़ा, प्रेमी आता है, मिलता है, लेकिन एक बेनाम रिश्ते के साथ। वो रिश्ता ऐसा था कि उसका मिलना न मिलना एक समान था, लेकिन कई मुलाकातें ऐसी होती हैं, कई मुलाकात ऐसी होती है कि आपके जहन में बस जाती है, लगता है कि अधूरा प्रेम भी मुकम्मल प्रेम है। अब सुनिए ये।

तो क्या बताइए, आपने ये गाना आखिर में सोचा था कि ये गाना बजाया जाएगा? वापस फिल्म का ये गीत था और अधूरी मुलाकात को हमने मुलाकात पूरी करवा दी, और बहुत सारे श्रोताओं ने यही चाहा भी था इस कहानी में कि अंत ऐसा ही हो कि सच्चा प्रेम हो तो जरूर मुलाकात होती है, प्रेमी जोड़े मिलते हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है कि कभी जिस बरगद की छांव में बैठकर वे घंटे बातें किया करते थे, वो बरगद आज भी इतने सालों बाद भी खड़ा है, उसकी शाखाएं फैल गई हैं, छाया घनी हो गई है, उसके नीचे वो बंसी बजा रहा है और वो दौड़कर अपने पुर

ने प्रेमी के पास पहुंच गई है, कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। बस वो संवाद जो होता है मौन की भाषा, वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं और समझ लेते हैं। अब आज के प्रोग्राम का सफर पूरा हुआ, सुरीला सफर आज बस इतना ही। सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान और आज त्रिवेणी में बातें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी, यानी 26 बरस हो गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के। वैसे आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 15 से 24 साल की उम्र के लोगों का जो प्रतिशत है वो 16% है, और अगर भारत का देखें तो 15 से 25 साल की उम्र के लोग भारत की कुल आबादी का तकरीबन 54% हिस्सा हैं, यानी कि भारत एक युवा देश है और दुनिया में भी युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। ये युवा ही हैं जो दुनिया को बदलते हैं, तरक्की के रास्ते पर ले जाते हैं, नई खोजें करते हैं, नए रास्ते निकालते हैं, नई व्यवस्था बनाते हैं, और ये युवा ही हैं जो दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। पर युवाओं को एक दिशा देने की और जिम्मेदारी का बोध कराने की जरूरत है।

इत्तेफाक की बात है कि 12 तारीख को ही भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, पर अगस्त के महीने में नहीं बल्कि जनवरी के महीने में, क्योंकि वो दिन जो है वो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। यानी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को। जैसा कि मैंने कहा कि ये युवा ही हैं जो बेहतर दुनिया बना सकते हैं, लेकिन किसी भी पीढ़ी के बुजुर्गों से पूछें तो वो यही कहेंगे कि हमारे जमाने के युवा जिम्मेदार हुआ करते थे, आज के युवा तो दिशाहीन हैं। सवाल ये है कि बदलती हुई इस दुनिया में कितने तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं जो ध्यान भंग कर रहे हैं, पर इन तमाम चीजों के बावजूद अगर आप तमाम क्षेत्रों में उपलब्धियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि युवा आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। खेलों में हर रोज बनते हुए रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटीज में लगातार ऊंचे अंक प्राप्त करने वाले युवा, इसके अलावा विज्ञान, दर्शन, इतिहास, हर क्षेत्र में युवा नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, नए कीर्तिमान बना रहे हैं, नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हम इन युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों, हम उन पर इल्जाम न लगाएं, हम उनकी गलतियां ना निकालें, बल्कि हम उन युवाओं को एक नई चेतना की तरफ आगे बढ़ाएं।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम एक बात और कहना चाहेंगे, और वो बात ये है कि हम सबके भीतर थोड़ा न थोड़ा युवा मौजूद होता है। हम सबके भीतर एक जोश है, जुनून है कुछ कर गुजरने का, और इस युवा तरंग में ही दुनिया उपलब्धियां हासिल करती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो है विभिन्न परिस्थितियों को पहचानना और युवाओं के जरिए वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना। ये युवा ही हैं जो दुनिया को एक सूत्र में बांध सकते हैं, ये युवा ही हैं जो हर तरह के भेद की दीवार तोड़ सकते हैं, ये युवा ही हैं जो विश्व व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। बस युवाओं पर विश्वास करें और उनके साथ आगे बढ़ते चलें।

ये थी आज की त्रिवेणी और इसमें हमने बातें की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। अब यूनुस खान को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की

0: जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
4: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैली, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट sentiment behind them is common. The national flag is the symbol.

0: which every citizen can find a sense of belonging.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता की

0: दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: परक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी

0: उनकी एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है। तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
4: वो कॉमिक क्रिएटर है।
5: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
4: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
5: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
4: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
5: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
4: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में। लिखा था इसे साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने।

0: मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये जिद्दी फिल्म का गाना है, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: मैं क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिल बद

जिद्दी फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल सचिन देवबर्मन का संगीत था। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं बहू बेगम फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत है। सुनिए प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे लाल पत्थर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज में, नीरज की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। हमने उद्घोषणा की थी बहू बेगम फिल्म के गाने के लिए, लेकिन हम माफी चाहते हैं, वो गाना हम नहीं सुनवा सके, हमारे कंप्यूटर जी थोड़े से नाराज थे। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफर खत्म होता है, आज्ञा दीजिए ममता सिंह को, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सारी सखियां सहेलियां और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: बिल्कुल आपका जो नमस्कार है सभी ने उसे
2: स्वीकार
1: लिया है और हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे हैं और हेल्थ का ध्यान रखना सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम में देखिए ना घर घर में हम सुन रहे हैं किसी को नजला हो गया है किसी को
2: खांसी
1: हो गई है कहीं बुखार है तो ऐसे में अगर हम पहले से ही थोड़ा सा अपना ध्यान रखते चलते हैं ना तो ये जो बदलते मौसम में तबीयत जो खराब हो जाती है ये जरा संभल जाती है
2: और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं ना दीपा उन्हें मालूम होता है कि भाई अभी बहुत जगह पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई है तो पानी उबालकर पीना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए यानी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं बहुत सारी योजनाएं होती हैं तो हमें रोज अखबार पढ़ते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा और ऐसे ही देखो ना ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यंजन खाने का और बनाने का बड़ा मन करता है। अच्छा चलिए सखियाँ बनाने का भले मन नहीं करता होगा लेकिन खाने का तो करता होगा ना
2: मेरा तो मन करता है
1: बिल्कुल तो वैरायटी सबको चाहिए एक विविधता होनी चाहिए ना सिर्फ अपने जीवन में खाने में भी।
2: हाँ और है ना वही तरह के जब हम खाने खाते हैं ना तो बच्चे क्या बड़े बूढ़े सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अरे वही बना लिया। तो ओट्स जो होते हैं ना प्रोटीन से भरे होते हैं तो उसके व्यंजन बहुत सारे व्यंजन हमारी सखियों ने हमारे श्रोताओं ने लिख कर भी भेजे हैं।
1: बिल्कुल
2: किसी ने डोसे का लिखा है किसी ने उपमा लिखा है तो किसी ने खीर लिखा है तो आप भी लिख कर भेजिए कि आपके घर में ओट्स के व्यंजन बनते हैं और नहीं बनते तो क्या बनने चाहिए।
1: बिल्कुल और देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन मेहनत का फिर फल भी तो बहुत मीठा होता है और जब सारे खुश हो जाएंगे और उस मेहनत का जब रंग निखर के आएगा तो फिर देखिए न सिर्फ हर दिन हमारा जीवन भी सवर जाएगा और यही शब्द है हमारा आज
2: मेहनत
1: का।
2: तो आज का है शब्द हमारा विचार आपके इसमें मेहनत है यानी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ बिना मेहनत के हमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती।
1: बिल्कुल और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं उन्हें लगता है साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन जो अनुभवी महिलाएं हैं वो कहती हैं तुम जितनी देर में ड्रेस पहनोगे हम उतनी देर में साड़ी पहन लेंगे
2: चट से पहन लेंगे
1: तो साड़ियों का अपना एक सुंदर संसार है और एक महिला जितनी खूबसूरत साड़ी में लगती है किसी अन्य परिवेश में परिधान में शायद कम लगती है। ये आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा सखियां कि साड़ी पहनना आसान है या ड्रेस पहनना आसान है और अगर आसान ड्रेस है तो खूबसूरत किस में ज्यादा दिखते हैं
2: और श्रोता भाई भी बताएं कि महिलाएं किस ड्रेस में यानी किस परिधान में ज्यादा सुंदर लगती है
1: जी।
2: तो खंडुआ साड़ी ओडिशा के बारे में हम जानकारी देंगे और हमारी बहुत सारी श्रोताओं ने हमारी बहुत सारी सखियों ने भी इस विषय में मैसेज लिखना शुरू कर दिया है। साथ ही आज एक खास दिन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है तो सारे युवाओं को भी हम बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
1: बिल्कुल उन सभी को उनकी ऊर्जा को सलाम और उन्हें ये एक सीख भी देते हैं कि अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक पथ पे आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को संवारते चलें
2: जी।
1: और अब हम क्या करें
2: गीत सुनते हैं
1: चलो।

0: सोनाली, कहाँ खोई हुई हो संदेशों में?
1: यहाँ आने के बाद में हम दोनों नहीं होते हैं दीपा, हमारे साथ में इतने सारे श्रोता, इतनी सारी सखियां जो घर में सुनते हैं और हम उनके संदेश पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो संदेशों के माध्यम से बहुत सारी हमारी सखियां इस वक्त हमारे साथ हैं।
1: जुड़ी हुई है। और आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
0: बिल्कुल,
1: तो युवा जो होते हैं ना, किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके भीतर असीमित ऊर्जा, कुछ नया करने की ललक और दुनिया को बदलने का साहस होता है। और इसी ऊर्जा और सामर्थ्य को सम्मानित करने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये दिन युवा दुनिया भर के युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी को रेखांकित करने का एक साझा मंच है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे देश की हम बात करें तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दिन और भी खास और जीवंत हो उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। तो भारत का युवा जो है उसको हम केवल जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड ये नहीं हम बोल सकते, ये आंकड़ा नहीं है वो लोग, ये नहीं हम मान सकते, बल्कि देश के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का मुख्य कारक भी हमारे युवा हैं।
1: ये तो बात आपने बहुत सही कही दीपा। और आज का भारतीय युवा केवल अवसरों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और नए विचारों के जरिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से लेकर खेल के

0: मैदानतक या तकनीक से लेकर सामाजिक क्रांति तक भारत का युवा हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक देश के युवाओं का ये संगम इस बात का प्रतीक है कि जब युवा सशक्त होता है तो वो न केवल अपने देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है।
0: बस युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही
0: कि
1: कहा।
0: ये जो महत्वपूर्ण वर्ष है ना, ये जिंदगी में बार बार नहीं आते।
1: बिल्कुल, और ये ऊर्जा भी बार बार नहीं
0: नहीं
1: मिलेगी,
0: आती। हाँ,
1: है ना, इसे संगठित करके रखना होता है।
0: तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना, उनका जीवन उज्जवल हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और सबसे जरूर बात है मेहनत।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और ये वो सुनहरे वर्ष हैं जहां आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है। क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है, और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनका उनकी मानहानि ना हो, या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गांव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर हैं, तब भी माता पिता को ये लगे जहां भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है।
0: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी सोनाली। इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है। थीम है अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो, लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
0: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है। और आप क्या किया जाए,
1: आज थोड़ी हल्की सी फुहार यहाँ पर रिमझिम सी बरसात हो रही है, तो चलिए दोस्तों
0: उसे महसूस करते हैं गीत के माध्यम से।

0: तो चलो चलते हैं
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। उड़ीसा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहाँ की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो उड़ीसा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंध गाँव में बुनी जाती है।
1: और दीपा इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इक्कत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग रंग करके पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंध कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिजाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और मंदिर की आकृति यानी टेंपल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो और तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है।
0: जी, और सूती खंडवा उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है। ये वाली साड़ी हल्की होती है, ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है
1: ये
0: या
1: चुभ रहा है।
0: चुभ रहा है, वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियां रोजमर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
1: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसके बॉडी या आंचल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता है। और एक है टसर खंडुआ, इसमें टसर सिल्क का उपयोग किया जाता है। इसमें साड़ी को एक प्राकृतिक हल्का, कल ही एक साड़ी खरीदी जो पहनने पर सुंदर दिख रही थी। खंडुआ साड़ी का नाम पहली बार सुन रही हूँ, आपसे जानकारी मिलेगी, तो
0: बिल्कुल
1: जानकारी भी मिल चुकी है।
0: बिल्कुल। और हमने जो पूछा था ना कि क्या पहनना ज्यादा पसंद है, तो हमारी एक सहेली लिखती है।

0: कि मुझे साड़ी पहनना बेहद पसंद है और पहनती भी हूँ, पर अब ड्रेस पहनना शुरू कर दिया है। ड्रेस पहनना ज्यादा इजी लगता है, झट से पहन लो और चल दो। मुझे भी साड़ी में खूबसूरती ज्यादा दिखती है, और सलवार सूट हो या कोई भी ड्रेस हो, अगर सलीके से पहना गया रंग उम्र और समय के अनुसार तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। पर साड़ी की बात तो कुछ और निराली है, तो भाई साड़ी जीतती जा रही है, जीत तो साड़ी की हो रही
1: और
0: है।
1: एक सखी ने लिखा है, आज हरियाली अमावस्या है, आज भी महिलाएं खूबसूरत रंग बिरंगी हरी साड़ी चूड़ी में सज धज कर मंदिरों में बाजारों में दिख रही है। साड़ियां चूड़ियां और राखियों की खरीदारी चल रही है, मेहंदी लगवाने की भी भीड़ लगी हुई है। गर्मी है फिर भी सभी को अपनी बारी का इंतजार है।
0: वही हमारे एक श्रोता भाई ने लिखा है, जी ये डिपार्टमेंट तो केवल माताओं बहनों का है। भाई बात तो सही है, लेकिन खरीदनी तो जाने जाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आगे लिखते हैं कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे। आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
1: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं। पर देखा है ना, आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं,
0: हाँ
1: कुर्ते
0: बिल्कुल।
1: बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं। तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है। जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है,

0: गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: सोनाली, अब एक वक्त हो चला है अंतराल का,
2: तो लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम
1: है सखी सहेली।
0: और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई। इतना सुंदर मैसेज है, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूँ और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूँ। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूँ, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जी, ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की भी होती होगी। हम जो हमारे प्रिय हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी कोई पहनी हुई चीज सदा हमारे पास रहती, तो एक धरोहर के रूप में
0: हमारे साथ रहती
1: और याद उनकी ताजा बनी रहती है। तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया, तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
0: और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
1: जी,
0: कि फला फला कंपनी की जो साड़ियां हैं वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती है, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और खासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
1: सोनाली, आपका इशारा समझ गए हम, मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है।
0: और उसमें सिर्फ सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया, देख लिया कि कहाँ सेल लगा है।
1: हम महिला यही करती है ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती है जहाँ पे एग्जीबिशन कहाँ चल रही है, सेल कहाँ चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले
0: नहीं, यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सारा पेपर सारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अखबारों से हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है और बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा, कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी, अगर उसमें ऐसा होता, यानी कोई मेन होल में गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था, तो हमें बाहर निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल में झुक कर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी से जाना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहाँ बहुत दूर है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सब कुछ पता चलता रहता है, यहाँ तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियां भी हम प्राप्त कर पाते हैं। जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के जमाने में सबके लिए, उम्र कोई भी हो, बेहद जरूरी है।
0: वैसे दीपा, अखबार केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है बल्कि वर्तमान समय का सजीव दस्तावेज होता है। इसमें मौजूद हर तरह का समाचार हमें समाज, देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है, और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं वे केवल घटनाओं से परिचित नहीं होते बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है, कहीं विज्ञान की नई उड़ान है, कहीं खेल जगत की नई विजय गाथा है, कहीं संस्कृति की सुगंध है, तो कहीं समाज की चुनौतियों का आईना हमें नजर आता है।
1: ये इसी बात पर देखो एक संदेश आया है, ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूँ और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूँ। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी फ्रेश होता है।
0: ये बहुत अच्छी आदत है, ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए। जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है, तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिमाग की नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, तो क्रॉसवर्ड जरूर हमें बढ़ती उम्र के साथ करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि स्कूल में किताब पढ़ने का शौक हुआ स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें, कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उनको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया जो अब तक

0: बात है, कितनी अच्छी बात है। वही एक साथी कहते हैं कि अखबार पढ़ना सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था। मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो, इससे इंग्लिश अच्छी होती है। बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं, जो एक बेहतरीन दिनचर्या है, जो ना सिर्फ देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपदी लेख जो हम अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, पर लेकिन अखबार सत्य, संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
0: एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ। सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ और ज्ञान वर्धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती हूँ।
1: बिल्कुल, और ये संपादीय जो संपादकीय लेख जो है, इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पे लिखना है, तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
0: और आप क्या करना है?
1: हमें तो गीत सुनना है।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो भाई अखबारों से यारी करनी है और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन वो
1: मोबाइल से दूरी
0: स्क्रोलिंग से
1: करना है।
0: उतनी नहीं, अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है। जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल जाए तो पढ़ लेते हैं तो मज़ा नहीं आता है उस अखबार। मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था, दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे, बस बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है।
1: एक
0: और
1: साथी कहते हैं
0: जी
1: ये पढ़ना चाह रहे,
0: बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है, मेहनत से व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
1: एक कहते हैं कि कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
0: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता जगमगा को तकदीर का जगमाता जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं, मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता।
1: एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती है, हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो जरूरी करनी चाहिए, कभी कभी परिणाम देर से मिलता है पर मिलता जरूर है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: और
0: और
1: धन्यवाद कहते हैं।
0: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं।
1: कितने
0: आप
1: सुंदर सुंदर
0: कितने
1: मैसेज
0: सुंदर
1: लिखते हैं।
0: बिल्कुल कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी असमंजसता हमारे सामने आ जाती है। और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती, जैसे कि इस गाने में ये सुंदरता है।

0: दीपा,
1: जी
0: हमारे इतने सारे श्रोताओं ने, सखियों ने मेहनत पर भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है, मेहनत के बिना कोई भी सपना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसान तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है तभी धरती सोना उगलती है।
1: क्या बात?
0: विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता है तभी सफलता उसके कदम चूमती है। कलाकार बार बार अभ्यास करता है तभी उसकी कला में निखार आता है। यानी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। याद रखिए, किस्मत का रास्ता दिखा सकती है, अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह से एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि कभी कभी हम मन में कुछ बातें ठान रहते हैं और कि अमुक काम करेंगे, पर सिर्फ मन में ही सोचते ही रहते हैं और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
0: और एक साथी कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है, और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाड़ को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
0: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है,
1: बात तो बिल्कुल सही कही।
0: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना, उसमें 1 घंटा चाहिए। कि उसमें जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज के जिस चीज में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है,

0: सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है आधा कप, पानी या दूध ले सकते हैं आप एक ही से डेढ़ कप तक। सब्जियां लेनी है, प्याज टमाटर गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां बढ़ा सकते हैं। तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा हल्दी नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गरम करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भूनें, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भूनें। अब पानी या दूध डालकर उबले इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चलता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ, इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की, जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
1: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है, और इसी आटे से आप नमकीन पराठे और रोटी बना सकते हैं। ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए ना, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए, ओट्स का चीला बनाया जा सकता है। ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल दे, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के, और उसके चीले बना सकते हैं, गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और एक
1: एक
0: और संदेश देखिए, ये एक छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन, दोनों मिक्स कर लें। इसमें लौकी प्याज टमाटर हरी धनिया, आप चाहें तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं। घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और जब ये चीले बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है
1: नहीं,
0: ना।
1: बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और इसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है। कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया। अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है, खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। तो ये बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो ऐसी पौष्टिक चीजें जब घर में बनती है ना, और जब घर उस खुशबू से महकता है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक श्रोता ने, कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
1: और अब क्या करना है?
0: देखिए क्या करते हैं।

0: दीपा हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीजें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज, या मीठेपन के लिए उसमें शहद, गुड़ या मैपल सिरप डाल दिया जा सकता है, और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती
1: तो
0: है।
1: आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं दीपा।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, क्योंकि जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना देखी आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिना है। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
2: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
1: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीने अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिना ही नहीं। जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
2: करेक्ट,
1: हाँ वो चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
2: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया, कैसे आई?
1: रेडियो से रेडियो।
2: हाँ,
1: मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहां कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी

0: नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहाँ से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में. तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है. तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक. तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्ड किया करता था. उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था. तो इस बीच मुझे मन्ना डे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना डे साहब खुद आए थे. तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो.
1: बिल्कुल।
0: हाँ, मन्ना डे साहब से मिलना, मधुशाला के CD पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं. तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया. उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा. मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है, और
1: बिल्कुल, एक
0: हर
1: मई
0: एक
1: को
0: मई
1: होता
0: के
1: है।
0: 1 मई में उनको कॉल किया
1: क्या
0: करता
1: बात है, मैं भी
0: था. तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा. तो ये हुआ था. इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन में. तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था. मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जो फोन कटा मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था. और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है. मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है. तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे. फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया.
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना डे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा, जब हम मन्ना डे साहब के बारे में सोचते हैं, तो तू प्यार का सागर है,
1: सीमा
0: सीमा,
1: फिल्म का
0: शंकर
1: गाना।
0: जयकिशन,
1: हाँ बिल्कुल, जरूर।
0: शैलेंद्र
1: हाँ सुनते हैं ये गाना।
0: जी.

0: तो ये सब एडवेंचर चल रहे थे। इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बम्बई आ जाना चाहिए। बम्बई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुली फालतू,
1: बिल्कुल।
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था। वो मैं रेडियो में कर रहा था, मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री कर वर के कुछ एक
1: बना रहे
0: दस
1: थे।
0: बारह मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं। तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा। मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहाँ आया। यहाँ आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी। तो मैं यहाँ आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बम्बई में। अब विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया। वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो किया करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो। वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने।
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम। राजेश देवराज हेड राइटर होते थे, तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा। मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं। यहाँ मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे। बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा। कीकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, दो तीन चार बार मिले उसके बाद। अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए। तो वो सब करके मैं यहाँ से गया और मुझे लगा कि मुझे बम्बई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहाँ से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया। और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ, तो रेडियो में फिर बहुत सारी मजेदार चीजें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीजें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा, और मेरा पेट भर गया उस चीज से 4-5 महीने में। मैंने कहा अगर यही करना है तो
1: क्या
0: मजा नहीं
1: मतलब
0: आएगा।
1: है?
0: हाँ, ये वही वही सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था, और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था
1: हाँ,
0: वेंकटेश में, वो
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो वो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया है, तो सैंडविच खाते हैं चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी, उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया, उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं, लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहां पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी, हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ

0: था उस समय तक। तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज़्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक दो तीन एपिसोड दिए, उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज़ में खुद ही रिकॉर्ड किया, और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में। और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस, मैंने कहा ये प्रोमो हो गया। इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है तो मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज़ किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आसान थी, मगर ये था कि मज़ा था उस काम में, बहुत मज़ा था। और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे, और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए। और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया, वहाँ बातचीत चल रही थी। एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
0: ऐसी बोल दिया।
1: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
0: ओके
1: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
0: वाह वाह,
1: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे।

0: डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे, तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको? तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफ़ी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज़ बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास दो शोज़ हैं, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में वो शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से, 20 सेकंड।
1: वाह।

0: किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से, 20 सेकंड।
1: वाह वाह
0: मैं
1: वाह।
0: अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोचे चल रहा था कि 3 महीने तो जद्दोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें, तो मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था, तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया। कि तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विथ अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की ज़रूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
1: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे, प्रॉपर वही शो की बात हो रही है।
0: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के दो शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये दो मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था, और
1: राइट।
0: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूँ, मैं सब करना चाहता था, मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूँगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा, और नसीब से वो चीज़ मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के
1: राइट
0: फुटेज
1: राइट।
0: लेके। थोड़ा बोला तुमको पता है, तो मैंने कहा मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे दो तीन बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया। वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको।
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बच्चे थे इंडिया में, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं, तो हमने ऐसे काउंट डाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते जाते हैं उनको ग्राफिक्स में।
1: अच्छा
0: तो
1: रहा ये
0: हाँ
1: पंच।
0: हाँ हाँ तो
1: हाँ
0: ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था उनमें। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो सुमराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे, कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, सुमराई कला बोलते हैं इसको। तो
1: हाँ
0: मैंने कहा
1: बिल्कुल।
0: सुमराई कला कैसे सीखें, रैपिड एक सुमराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे
1: लर्निंग
0: एड।
1: कोर्स।
0: हाँ, तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताए कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे, तो
1: हाँ
0: एक फेक एड आएगा, उसके बाद असली एड शुरू
1: असली
0: होंगे।
1: ऐड आएगा।
0: हाँ, तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो वो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स,
1: लिखने
0: इन
1: थे।
0: आउट इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई। फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, VFX भी किया, मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगा हो। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी, मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं। मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना।

0: वो शो बनता रहा बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूँ और उस सेट पे ज्यादा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये शो बना। ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। हाँ,
1: ओहो
0: मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीज़ों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और
1: वो
0: कानूनी दांव
1: लूज
0: से
1: एंड छूट जाते
0: वो
1: हैं जो
0: लूज
1: बाद
0: एंड्स
1: में
0: ऐसे
1: बहुत
0: ऐसे
1: भारी पड़
0: छूटते
1: जाते
0: हैं
1: हैं।
0: जो बाद में अपना मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें,
1: बिल्कुल
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहें। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, तो दो शोज हमने किए। उसके बाद काफ़ी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और दो एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज़ हुई है इस वजह से,
1: ओ
0: क्योंकि
1: ओ
0: काम इतना था, चीज़ें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं,
1: बिल्कुल
0: वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंग का।
0: मेरी जंग का, मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंग में।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बोल बेबी बोल
1: वो सुनते हैं।
0: जी।
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स, टेकिंग द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव। सो देन, व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों, कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: टेकिला?
3: नो।
2: टैंगो?
3: नो।
2: चार्ल्सटन?
3: नो।
2: पोल्का?
3: नो।
2: नो?
3: नो।

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल रही थीं और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था, और कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है,
0: वाह
1: तो वो
0: वाह।
1: मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहाँ मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो,
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग

0: की है, और जो चीज़ मुझे वहाँ से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना
1: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
0: बहुत ज़्यादा। वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम
1: गजब।
0: लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। वो 6:01 पे कभी नहीं आए
1: बिल्कुल।
0: इतने महीनों में। दूसरी चीज़ है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं तो मुझे 10वां टेक तक मिला है।
1: वाह वाह।
0: उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, सिक्स टेक, सेकंड टेक, फर्स्ट टेक।
1: वाह वाह।
0: जब डबिंग खत्म हुई उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे।
1: गजब।
0: तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
1: वाह वाह वाह वाह। वरना
0: सब
1: हम
0: सब
1: अपने
0: सब
1: सुनने वालों
0: रोमन,
1: को
0: सब
1: बता
0: रोमन
1: देंगे
0: में
1: सब
0: पढ़ते
1: लोग
0: हैं,
1: रोमन
0: सब
1: में
0: रोमन में
1: मानते हैं
0: पढ़ते हैं।
1: जी।
0: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से यहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं हैं क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो
1: क्या
0: वो
1: बढ़िया
0: एक
1: बात
0: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था
1: है।
0: रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीज़ें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूं या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लीशे है, सब 1000 बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 1-on-1 पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो किया हमने, अस्ट्रा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पर हमें रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया, मतलब बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे, तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा तो लोगों के बीच में वो एक
1: बनी
0: उत्साह बना
1: रहेगी।
0: रहेगा माहिष्मति के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे, वो .11 बजे आए। उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट की थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और वो पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपने
1: वाह।
0: फोन पे मुझे अमर चित्रकथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो अमर चित्रकथा है, उसके 2 संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजामौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: जर्नी
1: हो
0: में
1: जाती
0: कहीं
1: है।
0: कहीं काम आती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स से छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी।

0: तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला, हमने वो शो किया। पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीज़ें हुई। एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया। मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज़ थी कि मैंने मेरे जो हीरोज़ हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजा मौली साहब के साथ काम कर लिया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया है। तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो।
1: बिल्कुल
0: शोले कर ली थी, तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब
1: मतलब
0: नहीं
1: नहीं
0: मिलता
1: था।
0: था। तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में दौड़ता रहूंगा। तो मैंने लाइव एक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया। मैं निर्देशक बनना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूंगा। इस बीच मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो स्टूडियो। वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक मिडिल क्लास ह्यूमर था। मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद हैं, तो ये उस स्पेस में था और समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था, तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज आ गए
1: ज्यादा
0: हैं,
1: हो रहा
0: बहुत सारी
1: है।
0: चीज़ें आ गई हैं, उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था। और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला, और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते मैं वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: इस सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें।
1: ठीक है। इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, और लिमिटेड शो है 5 एपिसोड का, वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा। मगर उसकी कहानी मेरे पास है, तो मुझे मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी अभी ख़त्म किए करके जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है। वन नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफ़ी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं 2 किताबें और करूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बन के रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो।
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: मुकद्दर का सिकंदर,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: टाइटल ट्रैक, कल्याण जी
1: बोलिए।
0: आनंद जी हिंदी वर।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।

0: आलोक, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है। ये एक साइकिल है, चक्र है, तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनानी शुरू की हैं। हम भी उनमें से एक हैं, हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है। तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल, तो वो कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज़ जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीजें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं

0: या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं,
1: बिल्कुल
0: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
1: बनते
0: चाचा
1: बनते
0: चौधरी
1: रह
0: पे
1: जाती
0: शोभा।
1: है, मतलब
0: हाँ,
1: कई बार
0: डोगा
1: अनाउंस
0: डोगा
1: होता है।
0: डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म,
1: हाँ।
0: एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है। हाँ, तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है। लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिन पे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी। मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
0: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है। मुझे लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है, जो इवॉल्व वो हो रहा है। बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का
1: दौर
0: जो
1: है,
0: दौर है।
1: बिल्कुल। तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
0: शुक्रिया यूनुस भाई, मैं जैसा कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है, मैं यहाँ
1: बिल्कुल।
0: आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है तो मेरे लिए घर वापसी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, और क्या कहूँ मैं,
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया, फिर मिलते हैं।
0: जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के मैं

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: जो पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे।
2: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं CF वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

0: के साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा रमकोला भेलकक्ष बड़वारी धुरिया अरचोका बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण

0: कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, दरहोरा, सिमई, खरसोता, परमेश्वरपुर, सतकोना, मेंड्रा, प्रेमनगर, कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, धमनी और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये खुखनिया बदौली, जामदोहर, रेवतपुर, जवाखाड़, धंधापुर, उधवा कटरा, नरसिंहपुर, पकरीडांड, जमुनिया, रामपुर, कनकपुर, चीनिया, शिवपुर, इंद्रावतीपुर, कामेश्वर नगर, सिलाजू, आनंदपुर, कोटराही, पेंडारी, तनवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये असकला, दोरना, जरहाडी, जोरी, बिल्मा, रघुपुर, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, गिरहुल डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंगडांड, कुंजारा, श्री टोली, ढोंगा आंबा, मयूर चूंदी, उपका पानी, जाम चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल की छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 102 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, आमापाली, पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कोरबा में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये पसरखेत, घोटमार, बताती के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा, तमनार और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 68 है। ये बंगूरसिया, धुमा बहाल, पूंजी पथरा, तराई माल, नागदरहा, पंडरी पानी, बटुरा कछार, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये तालदादर, अचानकपुर, नवा गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। महासमुंद वनमंडल के महासमुंद में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये केसरडी, नांदबारू, सुकुलबाय, खिरसाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए प्रस्तुत है फिल्म जमीन से। के और हेमा सरदेसाई की आवाज़ में समीर हैं, गीतकार संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

फिल्म ज़मीन का गीत अभी आपने सुना, के और हेमा सरदेसाई की आवाज़ में। कार्यक्रम चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म सोल्जर से हेमा सरदेसाई और कुमार शानू की आवाज़ों में। समीर हैं गीतकार, संगीतकार हैं अनु मलिक।

फिल्म मन का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और हेमा सरदेसाई की आवाजों में। समीर थे गीतकार, संगीतकार थे संजीव दर्शन। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म जिद से अरिजीत सावंत की आवाज में। शकील आजमी गीतकार हैं, संगीतकार हैं शबीर और तोशी।

फिल्म राज का गीत आपने सुना सारिका कपूर और उदित नारायण की आवाजों में। समीर थे गीतकार, संगीतकार थे नदीम श्रवण। कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए प्रस्तुत है फिल्म अजहर से, अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में। मनोज यादव हैं गीतकार, संगीतकार हैं प्रीतम।

अंतरा मित्रा और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में फिल्म अजहर का गीत अभी आपने सुना। इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 5:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कीजिए अभिवादन स्वीकार अपने दोस्त मनीष सिंह सलाम का। बिलासपुर की सुहानी शाम में और उसकी ताजगी भरी हवा में आप सभी का स्वागत है।

साथियों, उम्र तो बस कैलेंडर की एक तारीख है। युवा होना तो दिल में पलता एक विश्वास है। आंखों में सपने हो, कदमों में उड़ान हो और दिल में कुछ कर गुजरने की आस हो, तो समझिए आप युवा हैं। नमस्कार युवा साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, यानी उस ऊर्जा का उत्सव जो दुनिया को बदलने का साहस रखती है। युवा होना सिर्फ उम्र का नाम नहीं, युवा होना है सवाल पूछना, जवाब तलाशना, गिरकर फिर उठना और अपनी छोटी सी कोशिश से बड़ी सी उम्मीद जगाना। किसी के हाथ में किताब है, किसी के हाथ में हुनर, कोई नौकरी की तलाश में है, कोई अपने सपनों का रास्ता बना रहा है, कोई परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहा है, तो कोई समाज के लिए कुछ नया करने की सोच रहा है। लेकिन याद रखिए, आपकी कहानी किसी और से तुलना करने की नहीं, बल्कि आपकी अपनी कोशिशों से लिखी जाएगी। कभी लगे कि रास्ते कठिन हैं, तो खुद से कहना है, मैं हवा का रुख बदल कर रास्ता नहीं बदलूंगा, मैं वो युवा हूं जो अपने कदमों से रास्ता बनाएगा। तो दोस्तों, दुनिया को केवल सफल युवाओं की नहीं, एक संवेदनशील, जिम्मेदार और सपने देखने वाले युवाओं की भी जरूरत है। इसलिए आज खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए कि सीखना नहीं छोड़ेंगे, हार से आप डरेंगे नहीं और अपने सपनों को छोटा नहीं समझेंगे, और जहां संभव होगा किसी और के चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएंगे, क्योंकि कल किसने देखा है, मगर आज की मेहनत कल की तस्वीर जरूर बदल सकती है। तो उठिए युवा साथियों, अपने सपनों को आवाज दीजिए, अपने भीतर की रोशनी को पहचानिए और दुनिया से कहिए, हम सिर्फ भविष्य नहीं है, हम आज की उम्मीद भी हैं, आज की ताकत भी हैं और आने वाले कल की नई कहानी भी। अंतर्राष्ट्रीय दिवस युवा दिवस पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं फिर से, क्योंकि युवा रहना सिर्फ विचारों से नहीं होता, वह विश्वास से होता है और उम्मीदों के साथ भी। तो इसी के साथ सुनते हैं हम अपने कार्यक्रम का पहला गाना, जिसके बोल हैं एक जुनून, जिसे लिया गया है फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। गायक हैं विशाल, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय और गीतकार हैं जावेद अख्तर साहब।

तो साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्रम की ओर, जिसका बेताबी से आप सभी इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बताएंगे क्रम सवाल जवाब के पिछले पूछे हुए प्रश्नों के जवाब। तो साथियों आप भी अपने जवाब सभी मिला लीजिए। तो पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था वह था कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया, और इसका सही जवाब है कि भारतीय क्रिकेट टीम के अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। दूसरा प्रश्न था 18वां ब्रिक्स 2026 कहां आयोजित होने वाला है। इसका सही जवाब है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 को भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। तो आप सभी ने अगर जिसका सही जवाब दिया है तो आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है। और तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि सर्वेश कुशारे ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल में रजत पदक जीता। तो इसका सही उत्तर है सर्वेश कुशारे ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक जीता और देश का मान बढ़ाया। क्या आप सभी ने यही प्रश्न के उत्तर दिए हैं? तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है चौथा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है और इसे पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में किसने गाया था। अगर आपका जवाब है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। और इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। और आपसे पूछा गया आखिरी प्रश्न था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी 2026 के विधेयक लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। और अगर आप सभी ने उत्तर दिया है कि देश का पहला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 जुलाई में जो पारित हुआ उसे पारित करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं उन श्रोताओं के नाम जिसने इस सभी पांचों प्रश्न के उत्तर सही सही दिए हैं। इन सभी पांचों प्रश्न के सही सही

0: उत्तर देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं कुर्सी भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू। इसके साथ रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुण वर्मा, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी और विभूति साहू। इसके साथ दतरंगी भाटापारा से हमारे श्रोता हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी ने भी सही जवाब दिया। पूरी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा चंदन और प्रांजल चंदन। इसके साथ हमारे अगले साथी हैं सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन और माही सेन। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से गोरिल्ला पिंडरा रोड से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वायना सिंगरौल। और हमारे जो आखिरी श्रोता साथी जिन्होंने सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया है वह कब डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामेरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और बाबू अलकबीर। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, आप सभी ने इन सभी प्रश्नों के सही सही जवाब दिए। इसके साथ चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्रम की ओर, जिसे आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि आर्थिक जागरूकता के विषय पर बातचीत हमारे टैक्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट मोहित विधानी जी से। साथियों, दिल दिमाग और आपस की बातें तो हम अक्सर करते हैं, एक दूसरे को हम कैसे आगे बढ़ाएं इसकी चर्चा भी करते हैं। करियर, विज्ञान, उपलब्धियां, कला, खेल, प्रकृति और स्वास्थ्य जैसे विषयों पे हम सभी आपको रूबरू तो कराते ही रहते हैं और सीखते रहते हैं एक अच्छा जीवन जीने के कई महत्वपूर्ण गुण। और इस महत्वपूर्ण गुणों में से एक गुण जिसे कौशल, कला या सबकी सक्षमता का जिसे प्रमाण माना जाता है उस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पैसों की। और पैसे कमाना तो हम सभी सीख जाते हैं, लेकिन उसे मैनेज करना, उसे कैसे हम फ्लो आउट कर सकें और किस तरह उसे बांध के रखा जाए या फिर हमारी सेविंग्स किस तरह अच्छी हो, इसके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक खास साथी, आइए उनसे उनका परिचय जानते हैं।
1: नमस्ते, मैं मोहित धानी, एक सी ए फाइनल स्टूडेंट। एक सी ए फाइनल स्टूडेंट होने के साथ साथ मेरा ऑफिस भी है।
0: तो मोहित जी, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज आप क्या बताने वाले हैं हमारे युवा साथियों को?
1: बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। आज हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करेंगे वो फाइनेंशियल अवेयरनेस और उससे रिलेटेड कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे।
0: बिल्कुल मोहित, अक्सर हम जो जिस एज में है हमारे पास पैसे तो हम कमा ही लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी के पैसे अगर हम अपने सेविंग्स के नज़र से देखें तो उसे मैनेज करने में और या फिर हमारी जो आदतें हैं एक्सपेंडिचर की वो भी ऐसी हो जाती है कि हम उसे मैनेज करने में थोड़ी हमें हिचकिचाहट या दिक्कतें महसूस होती हैं। तो आप हमें यह बताएं कि कमाई शुरू करने से पहले कमाई के साथ ही युवाओं को पैसे के बारे में कौन सी बुनियादी बातें जरूरी सीखनी चाहिए?
1: जैसे कि मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूं, या अगर आप पहली कमाई है या आप अभी नए नए कमाना शुरू कर रहे हैं तो बहुत बेसिक चीज़ होती है बजटिंग। आप एक जनरल बजट बनाएं, एक नॉर्मल बजट बनाएं, कोई एकदम ज़्यादा आपको स्पेशलाइज बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको सिर्फ इतने देखने कि हमारे कितने खर्चे हो रहे हैं, किन प्रकार के खर्चे हो रहे हैं। उन खर्चों को आप दो या तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, जो कि एक होती है नीड्स जो आपकी ज़रूरत है, एक होती है वॉन्ट्स जो आपको चाहिए बट उतनी ज़रूरत नहीं है, और एक है लग्जरी। इन तीनों कैटेगरी में आप अपने खर्चों को बांटें और उस हिसाब से अपने पैसों को एलोकेट करें।
0: बिल्कुल सही कहा मोहित जी आपने कि हमें अपने किस तरह ज़रूरतों को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करनी है, वॉन्ट्स, नीड्स और लग्जरी। तो इस विषय में हमें ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि हम किस चीज़ का बजट कैसे तय करें। तो आप हमें कृपया यह बताएं कि पहली नौकरी या पहली कमाई मिलते ही युवा अपने बजट कैसे बनाएं, क्या कोई आसान नियम है जिसे वह फॉलो कर सकते हैं?
1: बजटिंग बहुत सिंपल है, अगर मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी नीड्स होती है, मतलब जिन चीज़ों को हमको ज़रूरत है ही है, जैसे राशन की, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे घर का, अगर हम किसी स्टाफ को रखें तो उसकी पेमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा।

0: तो आपकी नीड्स में आपकी 50% आपकी इनकम की जानी चाहिए। आप जो भी मंथली इनकम आप अर्न करते हैं उसका 50% आपकी नीड्स में जानी चाहिए। वॉन्ट्स हो गए, जो चीज़ आपको चाहिए, इच्छाएं हैं जो। इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक फ़ोन है, अच्छी कंडीशन में, ठीक चल रहा है, बट मेरे को जस्ट एक अपग्रेड करना है कि मेरे को और एक बेहतर फ़ोन चलानी है, तो ये हमारी वॉन्ट हो गई। तो वॉन्ट में आप अपने 15 से 20% दे सकते हैं अपनी मंथली इनकम का, और उसके बाद आती है लग्जरी। मेरे पास फ़ोन है वो वर्किंग कंडीशन में, लेकिन मुझे आईफोन चाहिए या कोई सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए, तो वो है मेरी लग्जरी। तो लग्जरी की तरफ मैं 5 या 10% सिर्फ अपने इनकम का दूँ। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले नहीं डिस्कस नहीं किए, वो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। तो इन सब चीज़ों के बाद आप 15 से 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी साइड करके रखें, जो कि बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा, यानी कि इस तरह अगर हम अपने आने वाले पैसों को कई जगह अगर डिवाइड कर दें, तो उस तरह हम अपने खर्चों को भी हम अपना डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरह हमें कौन से पैसे कहाँ लगाने हैं करके।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, तो यह तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई हमें मोहित जी। खर्च करने की आदत आज ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी और डिजिटल पेमेंट ने खर्च करना बहुत आसान बना दिया है, और हमारे जैसे युवा कई बार बिना सोचे समझे खर्च करने लग जाते हैं, तो इससे कैसे बचना चाहिए?
0: स्पेंडिंग हैबिट्स को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप डेडिकेटली अलग अलग अकाउंट्स अपने मेंटेन करें। जैसे आपका जो सैलरी अकाउंट है या आपकी जो भी इनकम अकाउंट है, तो उसमें से पहले कुछ पैसा ट्रांसफर कर लीजिए आप इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में, कि उस अकाउंट से सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट ही करें। कुछ पैसे आप इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में डाल सकते हैं कि अगर कल को कुछ इमरजेंसी आती है तो उस समय हम यूज़ कर सकें, और बाकी जो बचे अब आपके नीड्स वाले पैसे, उसको आप अपने अकाउंट में रखिए, जो कि आपका रनिंग अकाउंट है, जिसमें आप अपनी UPI पेमेंट्स और कार्ड वर्ड से पेमेंट करते हैं।
1: अच्छा, यानी इस तरह हम अपने पैसों को लॉक करके अगर रख दिया जाए तो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही हम उसे छू सकें, ऐसा?
0: जी बिल्कुल। जैसा कि एक हमारे फाइनेंशियल टर्म्स में एक मंत्र चलता है कि सेव फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर।
1: अच्छा तो यह मंत्र तो हमें पहले ही सीखना चाहिए मुझे लगता है।
0: जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ आज की जो युवा है वो हमसे ज्यादा, मतलब इनफैक्ट हमसे ज्यादा, और जो हमारी पीढ़ी है, मतलब जो हमारे एडल्ट्स हैं, उनसे ज्यादा अवेयर है इन चीजों को लेके। तो उनको डेफिनेटली ये चीज फॉलो करनी चाहिए। चीजें आप देख रहे हैं कि इतना इन्फ्लेशन आ रहा है, ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं, ऑलरेडी खर्चे भी हैं, इम्पल्सिव बाइंग, ये सारी चीजें हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से ये प्लान बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सही रहेगा।
1: जी, सही कहा आपने, क्योंकि छोटे छोटे खर्चों का हिसाब रखने की जरूरत हम जब नहीं रखते हैं तो इसके वजह से हमें कई आर्थिक नुकसान भी पहुंच जाते हैं, और सोशल मीडिया पर दिखाने वाली लाइफस्टाइल हमें और भी प्रभावित करती है कि हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बन जाते हैं। और जैसे कि कई बार हम देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में महंगे महंगे अगर कोई प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं तो भी हजरत ना पड़ने पर भी हम ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं। तो चलिए, आपसे तो हमने स्पेंडिंग हैबिट्स को किस तरह अपने को पकड़ के रखना चाहिए, फिर कैसे उसे कंट्रोल करना चाहिए, तो हमने जान लिया। अब बात आती है इंश्योरेंस की। तो मोहित जी, हमारे जैसे बहुत सारे युवा अक्सर ये सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, हमें इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? क्या इस सोच को आप कैसे देखते हैं, और युवाओं के लिए इंश्योरेंस को किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए?
0: मनीष जी, सबसे पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, आज की डेट में मेडिकल इंश्योरेंस और ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये दोनों बहुत ही जरूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस इसीलिए क्योंकि एक मेडिकल बिल आपके पूरे बजट, आपकी लाइफ टाइम सेविंग्स को हिला सकते हैं।
1: जी,
0: तो मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्यों, बहुत लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है, किसी भी तरीके के आपको मतलब चोट लगती है या ऐसी छोटी मोटी दुर्घटना घटती है, तो उस केस में आप अपना मेडिकल क्लेम यूज़ नहीं करके अपना एक्सीडेंटल क्लेम भी यूज़ कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: मेडिकल क्लेम जनरली आप बड़े, आपके कोई बड़े अगर मेडिकल बिल है तो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, और एक एक्सीडेंटल बिल का बहुत छोटा सा प्रीमियम बनता है, उसको भी लेना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस तो मैं ठीक है एक सेकेंडरी पर रखूँगा, टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें आप।
1: जी,
0: क्योंकि आपके बाद अगर आपके परिवार का, आप चाहते हैं कि आपका परिवार का ख्याल रख सके, तो टर्म इंश्योरेंस ही है।
1: अच्छा जी, तो बिल्कुल, यानी कि तीन प्रकार के इंश्योरेंस हो गए, एक हो गया मेडिकल इंश्योरेंस, एक हो गई टर्म इंश्योरेंस, और तीसरा हो गया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो हमारे जो युवा साथी हैं,

0: जरूरतें और अपने भविष्य को देखते हुए ये तीनों इंश्योरेंस प्लान में से किसी भी एक प्लान को ऑप्ट आउट कर सकते हैं और खुद भी इंश्योर और सिक्योर हो सकते हैं।
1: मनीष, एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि तीनों में से कोई भी ऑप्शनल नहीं है, तीनों जरूरी हैं आज की डेट में।
0: अच्छा, तो यानी कि हमें तीनों ही इंश्योरेंस लेना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छा
1: लेना चाहिए। और इनफैक्ट अगर शुरू में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को तीन मतलब ये इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा आ रही है, बर्डन बढ़ रहा है, तो आप शुरुआत में एटलीस्ट मैं बोलूंगा मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लें, है ना। उस चीज के लिए आप अवेयर रहें, अपनी नीड्स के लिए अवेयर रहें, अच्छे ब्रोकर से कंसल्ट करें, अपना प्लान समझे और उस अकॉर्डिंग अपना प्लान लें।
0: अच्छा ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि मैं सोच रहा था कि हमें एक ही इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और उतने हमारे कवर हो जाएंगे, लेकिन सही कहा, क्योंकि भविष्य का कोई भी भरोसा नहीं है और इसलिए अगर हम इंश्योर हो जाएंगे या फिर हम अपना बीमा करा लेंगे तो एक बेहतर भविष्य और सुरक्षित भविष्य की हम कामना भी कर सकते हैं। तो मोहित जी, आप हमें यह भी बताइए कि निवेश, हमने खर्चों के बारे में तो समझ लिया कि हमें कैसे स्पेंड करना है और किस तरह सुरक्षित भी रहना है, तो अगर हम अपने पैसे हम अगर ग्रो करना चाहें यानी कि इन्वेस्ट करना चाहें तो उसके लिए सही उम्र क्या है? क्या कम उम्र में छोटी रकम से शुरुआत करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? और आजकल युवाओं के बीच शेयर बाजार और दूसरे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी काफी आ रहे हैं, तो बिना जानकारी के निवेश करने में सबसे बड़ा खतरा क्या है? इस बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताएं कि हमें कहां और कैसे निवेश करना चाहिए।
1: इन्वेस्टमेंट शुरू करने की सही उम्र मैं बोलूंगा ऐसे कोई सही उम्र नहीं है। आप जितना जल्दी कर सकें जितना जल्दी, मैं बोलता हूँ कोई 18 साल का है, अगर आपका पैन कार्ड बन गया है, आपका बैंक अकाउंट है, आपको थोड़ी मोड़ी नॉलेज है, आजकल इंटरनेट से सब चीज़ें सब नॉलेज मिलना बहुत आसान है, सिर्फ एक क्लिक पे इंफॉर्मेशन है आपके, तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट करना उतना ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि लंबे समय के बाद आप देखेंगे, अगर मैं लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे आने वाले टाइम पे आपको उतना ज़्यादा रिटर्न देगा। तो अगर आप नए हैं निवेश में, इन्वेस्टमेंट में नए हैं, और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मेरे को किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है या मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, मेरे हमारे जितने क्लाइंट्स आते हैं जिनको लगता है कि हाँ हमको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और हमको रिटर्न भी डिसेंट चाहिए, तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड बिल्कुल जा सकते हैं और युवाओं के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
0: जी, अगर कोई युवा पहली बार निवेश करना चाहता है तो उससे पहले क्या सीखना चाहिए और किन किन लालचों या फिर प्रलोभन से बचना चाहिए? कई बार हम देखते हैं कि हैवी रिटर्न्स के चक्कर में भी हम गलत ट्रेडिंग या फिर गलत इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं और अपने पैसे गंवा बैठते हैं।
1: मेरी सब युवा साथियों को यही सलाह है कि अगर आप किसी को भी फॉलो करें, आप किसी के बारे किसी से भी आप इन्वेस्टमेंट टिप्स ले रहे हैं, तो इस बात का जरूर आप वेरिफिकेशन लें कि वो एक RBI के द्वारा सर्टिफाइड या SEBI के द्वारा सर्टिफाइड ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर है। कोई भी जो भी SEBI द्वारा सर्टिफाइड नहीं है उनसे आप एडवाइस नहीं लें। और लोग आपको स्क्रीनशॉट्स आज की डेट में एडिट करके दिखाना बहुत आसान है, और लोग आपको प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, फिर अपने कोर्सेज बेचते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, उसके बाद वो कोई जवाबदारी भी नहीं लेते। पैसा आपका है, आपकी मेहनत का पैसा है, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, लालच में इन्वेस्ट नहीं करें। जैसे एक बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता है वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स भी धीरे धीरे ग्रो करती हैं, कोई इन्वेस्टमेंट रातों रात डबल नहीं होती है,
0: जी
1: इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखेंगे।
0: तो समझा साथियों आप सभी ने कि हमें किस तरह अलर्ट रहना है और जब हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हों तो बिल्कुल सोच समझ और परख कर ही उसे पैसे को लगाना है और कुछ समय के बाद ही एक अच्छा रिटर्न की हम उससे गुंजाइश या फिर आशा अपने एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो मोहित जी, एक और कल्चर जो हमारे युवाओं के बीच बहुत ज़्यादा बढ़कर आ रहा है कि हम अपने मोबाइल से लेकर बाइक कार और दूसरे सामान भी हम EMI पर मिल जाते हैं, तो क्या EMI सुविधा है या युवाओं के लिए आर्थिक जाल भी बन सकती है?
1: EMI कल्चर ना, अगर मैं एक बात करूं तो कन्वीनियंस के लिए शुरू किया गया था कि भाई हाँ एक साथ इतना सारा खर्चा या एक साथ इतना सारा बर्डन उठाना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उन चीज़ों को EMI में ले सकते हैं। अब EMI के लिए मैं सबको यही सलाह दूंगा कि कोई चीज़ जो आपके ज़रूरत की है, जैसे घर का कोई सामान है, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आप वो चीज़ें EMI में ले सकते हैं, AC वगैरह है, बट मेक श्योर कि आपका EMI पे करने में उस पर डीले नहीं हो, मतलब EMI आपके मिस नहीं हो, क्योंकि उससे क्रेडिट स्कोर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसके अलावा जो आपने बाइक्स और कार्स की बात करी,

0: अपने लाइफस्टाइल अपग्रेड की बेसिकली जो बात करी, तो उसकी ईएमआई आपके सैलरी की 5 से 10% ही रहनी चाहिए। ये चीज का हमको बहुत बहुत ध्यान रखना है। अच्छा। जो भी हमारी मंथली इनकम है, ईएमआई उससे 5 से 10% के अंदर आए। जनरली क्या होता है, मैं जिसे आजकल हम देख रहे हैं कि 40-50,000 सैलरी रहती है एक इंसान की, और वो उतनी ही ईएमआई भी कैरी करके चलता है।
1: अच्छा। हाँ।
0: तो ये मैं कहूंगा कि बहुत एक गलत चीज है, है ना। ईएमआई ने नो डाउट हमको कन्वीनियंस दिया है, लेकिन उस कन्वीनियंस का हमको सही से इस्तेमाल करना है। क्योंकि आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक है और किसी के लिए नहीं है।
1: तो मोहित जी, इसी तरह हम अपने कार्यक्रम के समापन पर आ चुके हैं, और अंत में हम आपसे जानना चाहते हैं हमारे युवाओं के लिए फाइनेंशियल मंत्र क्या होना चाहिए जिसे हम अपना कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।
0: मैं 3 बातें कहूंगा मनीष। एक तो सबसे पहले जो हम लोग के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न, मतलब आज की बचत कल की कमाई होती है, तो बचत पे बहुत ध्यान दें। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट्स में ध्यान दें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके वो पैसे हैं जब आप सो रहे हैं तभी भी वो काम कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: है ना। और तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहे। आज की डेट में जैसे ही लाइफ स्टाइल्स हैं, आपको जो चीजें अफोर्ड करनी है, अरमान इच्छाएं रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमको और बड़ी बड़ी इच्छाएं रखनी चाहिए, लेकिन उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक प्लानिंग भी करनी चाहिए। तो एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहे, कम से कम आपके 2 या 3 सोर्स ऑफ इनकम रहे, उस चीजों का भी आप ध्यान रखें। मेरी तरफ से फाइनेंशियल मंत्र आज का यही है।
1: तो आपसे बातचीत करके हमें बहुत खुशी हुई, और हमारे बहुत सारे युवा भी आपसे और हमारी जो फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो आज थीम थी इसे सीखकर बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे और अपने भविष्य को और अच्छा संवारेंगे, और अपने पैसों को लेकर वो स्ट्रिक्ट होंगे और उसे किस तरह बांधा जाए और सेव करके अपने फ्यूचर को बनाया जा सके वो सीखेंगे। आपसे बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: आपकी रक्षा में पूरी।
2: तो साथियों, इसी के साथ दीजिए अपने साथी मनीष को इजाजत और हरेली तिहार की भी आप सभी मनला गाढ़ा गाढ़ा बधाई। जय जोहार। जरा नवाजी के लिए शुक्रिया।

कार्यक्रम युवा जगत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:05 हो रहे हैं। आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी अब आपसे साझा कर लेते हैं कार्यक्रम विवरण में। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने। आप सुनेंगे 6:20 और 7 बजे भी। 7:30 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा का, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और फसल सुरक्षा। और आप सुनेंगे क्रम आकाशवाणी गांव मां। ग्राम पंचायत घुटकू, विकास खंड तखतपुर, जिला बिलासपुर के किसानों के मध्य ध्वनांकन किया गया कार्यक्रम। कार्यक्रम का संपादन और रिकॉर्डिंग की है गोपाल कृष्ण पांडे ने। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी संसद समीक्षा। रात्रि 8:15 पर सुनना न भूलिएगा अपना पसंदीदा कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:15 पर हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। रात्रि 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्ड।

रिकॉर्डिंग का प्रसारण। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा का समापन किया जाएगा। कल 6:05 प्रातः आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर कार्यक्रम खेती की बात। सामूहिक सुझावों में कल का विषय होगा लोबिया चारा की खेती। वाचक होंगे नंद कुमार यादव। कहानी के पीछे के व्यक्ति पॉडकास्ट सीरीज का 7वां भाग आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा सुबह 9:10 पर। और 9:40 पर आप सुनेंगे विधि एवं न्याय मंत्रालय का प्रायोजित कार्यक्रम। श्री रामचरितमानस गान 6:35 पर आप सुनेंगे सुबह। और कार्यक्रम चिंतन 6:45 पर। कार्यक्रम में कल का विषय होगा आधुनिक सभ्यता गिरते नैतिक मूल्य। आलेख होगा डॉक्टर ब्रिजेंद्र वैद्य का। कार्यक्रम आज सुबह आप सुनेंगे कल 7:05 पर। और सदाबहार नगमे 7:30 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी छत्तीसगढ़ी लोक गीतों के कार्यक्रम माटी के स्वर का आनंद लेंगे आप 8:30 पर। और 9 बजे आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। फरमाइशी हिंदी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद लेंगे आप सुबह 10 बजे। और कार्यक्रम नए तराने 10:30 पर। 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दोपहर 12 बजे हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। दोपहर 2 बजे आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट। 4 बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। 5:05 पर चित्रपट संगीत। और 5:35 पर कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें सामूहिक चर्चा का विषय होगा स्वतंत्रता के सुर। और आप सुनेंगे क्रम महिला मंडली, प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। ईमेल करें गीत सुने आप सुनेंगे 6:20 और 7 बजे भी। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा। और 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। 7:30 पर कार्यक्रम किसानवाणी सुनेंगे आप। और श्रोताओं के पत्रों का जवाब लेकर हम आएंगे कार्यक्रम चिट्ठी मिली में कल रात्रि 8:15 पर। 8:30 पर शास्त्रीय संगीत सुनेंगे आप। और 9:15 पर हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के लोक और जनजातीय विरासत के विशेष प्रस्तुति दे जाही। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज बस्तर तिरंगा यात्रा के शुरुआत होगे और छत्तीसगढ़ के लोक परब हरेली आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के संग मनाए जाते। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के समृद्ध लोक और जनजातीय सांस्कृतिक विरासत ला 15 अगस्त के राष्ट्रपति भवन में आयोजित होवैया स्वतंत्रता दिवस स्वागत समारोह एट होम में विशेष स्थान मिली। भारत के स्वतंत्रता के 80वां वर्षगांठ के मौका में राखे गए समारोह में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के जीवंत लोक और पारंपरिक कला परंपरा के माध्यम ले संस्कृति, समुदाय और प्रकृति के बीच गहरा संबंध रेखांकित करे जाही। छत्तीसगढ़ को तिले, गेड़ी और गौर माड़िया नृत्य प्रमुख आकर्षण होही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के लगभग 35 कलाकार आने आने लोक नृत्य और पारंपरिक संगीत प्रस्तुति में हिस्सा लीही। समारोह के संगीत प्रस्तुति ला भारत के आने आने लोक परंपरा के एक ठिन सांस्कृतिक यात्रा के रूप में तैयार करे गए है। एक शुरुआत बस्तर के पारंपरिक अनुष्ठानिक परंपरा में आधारित मंगल धुन ले हुई।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह युवा मन ले आग्रह करीन हे कि ओमन अपन प्रिय मनखे के आत्मकथा पढ़ें और रील्स के संग्रह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाए ले बाँचे। ओमन विकसित भारत के मिशन ल आगू बढ़ाए बर समर्पित युवा मन के सरलग जरूरत ऊपर घलो बल देन। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ह आज नारायणपुर ले बस्तर तिरंगा यात्रा के शुरुआत करीन। ए यात्रा ल आने आने समाज प्रमुख मन हरा झंडा दिखा के रवाना करीन। ए मौका में श्री शर्मा हा कहिन कि ए यात्रा ओ जगह मन ले होके जाही जहां पहली नक्सली घटना हा लोगन मन ल प्रभावित करे रहीस। ओमन कहिन कि यात्रा के माध्यम ले देश और दुनिया ल ए संदेश दे जाही कि ए क्षेत्र में अब नक्सलवाद सिरागे है। उप मुख्यमंत्री है कहिन कि जनवरी 2024 ले लेके अब तक बस्तर के बहुतकन दुर्गम गवई मन में राष्ट्रीय पर्व में ध्वजारोहण करे गए है। इस स्वतंत्रता दिवस में बस्तर संभाग के 90 ले ज्यादा गांव मन में आजादी के बाद पहली गांव तिरंगा फहराए जाही। आज पहले दिन तिरंगा यात्रा नारायणपुर ले शुरू होके मुंजमेटा झारागांव धौड़ाई कन्हार गांव कड़ेनार बोदली सातधार बारसूर होवत दंतेवाड़ा पहुंचिस। उन्हें काली दुसरैया दिन यात्रा दंतेवाड़ा ले सुकमा और बीजापुर जिला के आने आने नक्सल प्रभावित क्षेत्र ले होके जाही। तीसरैया और आखिरी दिन 14 अगस्त के ए यात्रा बीजापुर ले आवापल्ली उसूर गलगम नंबी ताड़पाला होवत कर्रेगुट्टा पहाड़ी पहुंची जहां यात्रा खत्म होगी। आज विश्व हाथी दिवस है। ए मौका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहिन कि हाथी भारत के पारिस्थितिक विरासत के अभिन्न हिस्सा रहे है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री है कहिन कि दुनिया के 60% ले ज्यादा जंगली एशियाई हाथी भारत में पाए जाते। उमन कहिन कि देश में 33 ठीन एलिफेंट रिजर्व हवें जौन हाथी मन ल सुरक्षित आवास देते और ओखर दीर्घकालिक संरक्षण के प्रयास ल मजबूत करते। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ह बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार अंक बढ़ाए या अनुत्तीर्ण विद्यार्थी मन ल उत्तीर्ण कराए के नाव में अवैया फर्जी काल ले सावधान रहे के अपील करे है। मंडल है कहे है कि उत्तर पुस्तिका मन के मूल्यांकन जारी है और ऐसा मामला में धनराशि के मांग करैया लोगन मन के मंडल ले कोनो संबंध नहीं है। विद्यार्थी और अभिभावक ऐसे काल ऊपर भरोसा झन करें, कोनो तरह के लेन देन झन करें और फर्जी काल मिले मां तुरते नजदीकी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करावें। हज 2027 बर पहला किस्त जमा करे के आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग ह बताएं कि राज्य के चयनित आवेदक 1,52,300 रुपया प्रति हाजी के पहला किस्त 17 अगस्त तक जमा कर सकत हैं। ज्यादा जानकारी बर रायपुर के बैरन बाजार स्थित छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के फोन नंबर 0771426664 मा संपर्क करे जा सकत है। इही बीच हज यात्रा में जवैया हज यात्री मल्ला प्रशिक्षण दे बर हज प्रशिक्षक मल्ले ऑनलाइन आवेदन 23 अगस्त तक मंगाए गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो माचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ के लोक परब हरेली आज प्रदेश भर में पारंपरिक उछाह के संग मनाए जाते। सावन महीना के अमावस्या में मनाए जाने वाला हरेली पर्व में किसान अपन कुल देवता और खेती में बोरे जाने वाला औजार के पूजा करें। संग्रहालयिका और युवा मन गेड़ी चघे के आनंद लेन। नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में घलो हरेली तिहार के कार्यक्रम के आयोजन करेगीस। ए मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह भगवान शिव गौ माता और कृषि औजार के पूजा पाठ करके प्रदेश में अच्छा वर्षा भरपूर फसल किसान मन के समृद्धि और जम्मो परिवार के सुख खुशहाली के कामना करें। मुख्यमंत्री है प्रदेशवासी मन ल हरेली तिहार के बधाई दिन।
2: आप सबला पूरे छत्तीसगढ़ के हमार दाई दादा सियान जवान भाई बहनी सबला हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई बहुत बहुत शुभकामना।
0: ए मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह।

0: मुख्यमंत्री निवास परिसर में पारिजात के पौधा लगाई। मुख्यमंत्री है कार्यक्रम स्थल में लगाए गए कृषि और दूसर विभागीय स्टाइल के अवलोकन घलो करें। ओमन रायपुर के किसान इंद्र कुमार वर्मा ला हार्वेस्टर में मिलने वाला सब्सिडी के रूप में 16 लाख रुपया के चेक दिन। कार्यक्रम में लोक कलाकार मन मांदर ढोलक और पारंपरिक वाद्य यंत्र के थाप के बीच छत्तीसगढ़ी गीत और नृत्य के प्रस्तुति दिन। उन्हें ठेठरी खुरमी बरा समेत आने आने छत्तीसगढ़ी व्यंजन के स्टाल घलो लगाए गए रहीस। प्रदेश के आने आने जिला में घलो हरेली पर्व उछा के संग मनाए जाते। हरेली अमावस्या के मौका में पाठ यात्रा पूजा विधान के संग आज ले 75 दिन तक चलैया विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व शुरू हो गए है। ये रस्म के तहत बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर के आगू ग्राम बिलोरी के जंगल ले लाए गए साल रुख के शाखा के विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करेगी। ये मौका मां महापौर संजय पांडे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी, कलेक्टर आकाश छिकारा समेत बस्तर दशहरा समिति के सदस्य, पारंपरिक मांझी चालकी, मेंबर मेंबरिन, पुजारी पटेल, नाइक पाइक और सेवादार मौजूद रहें। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला में गाज के चपेट में आए ले 2 महिला मजदूर मन के मौत हो गए है। उन्हें 20 जन ले ज्यादा महिला झुलस गए हैं। जम्मू छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के रहवासी हरें। मिले जानकारी के अनुसार जशपुर जिला के तुमला थाना क्षेत्र के बरडी समेत तीर्थखार के गांव मन ले महिला मजदूर धान के रोपाई बर ओडिशा गए रहीन। जब एमन तलसरा थाना क्षेत्र के बालीशंकरा स्थित भाटीपाड़ा के खेत में धान के रोपाई करत रहीन, इसी दौरान अचानक मौसम बदल गए और गरज चमक के संग खेत में गाज गिर गए, जेखर चपेट में आए ले 2 महिला मन के मौत हो गए। उन्हें 20 ले ज्यादा महिला झुलस गए हैं, जेमाले कुछ के हालत गंभीर बने हुए है। जम्मू झलना उपचार बार सबडेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए है। बिलासपुर जिला के ग्राम रहंगी बिल्हामा 100 बिस्तर वाला कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC अस्पताल के स्थापना पर 5 एकड़ भूमि ला मंजूरी मिल गई है। यह 100 करोड़ रुपया ले ज्यादा के स्वास्थ्य परियोजना है। अस्पताल बने ले बिलासपुर और तीर्थखार के क्षेत्र ले ESIC ले जुड़े पंजीकृत श्रमिक और ओमन के परिवार ला बेहतर और अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल सकी। पहली ले जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ला प्रवर्तन निदेशालय ईडी है शराब घोटाला मां गिरफ्तार करके कड़ा सुरक्षा व्यवस्था के बीच रायपुर कोर्ट में पेश करी, जहां ले ओमल्ला 5 दिन के कस्टोडियल रिमांड में भेज दे गए है। अब ईडी अवैया 5 दिन तक उखरले शराब घोटाला और उखरले जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामला में पूछताछ कर ही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के लोक और जनजाति विरासत के विशेष प्रस्तुति दे जाही। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज बस्तर तिरंगा यात्रा के शुरुआत हो गए और छत्तीसगढ़ के लोक पर्व हरेली आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के संग मनाए जाते। इकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए प्रस्तुत है फिल्म आयशा से तोशी रैना की आवाज में। जावेद अख्तर गीतकार हैं, संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा है नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश ने। मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप। राजकोट से हमें ईमेल भेजा है रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता ने। बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेनु, रजनी, प्रियंका देवांगन। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबीहे, राधिका, अनिष्का, तन्मय और इनका संपूर्ण परिवार इस गीत की फरमाइश कर रहा है। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। पौड़ी भाटा कलतरा से

दिलीप चंदन, चूवा राम यदु, निखिल, वसुंधरा और प्रांजल चंदन देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से, संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन कविता कर्ण, शक्ति रिया जया और दर्शन गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा जसविंदर जस्सी सीता और गीता दिल्ली से, तुलसी मस्कीन वीना चैतन्य मेघा मस्कीन मुजफ्फरपुर बिहार से, आर्यम राज पीयूष कुमार रोहित राज तिवरतरा डबरीपारा जिला कोरबा से, महेंद्र प्रताप मरकाम जया जागेंद्र गजेंद्र जयंती ममता मनीषा मंजू मानसी सुरेंद्र मरकाम मोहन सिंह सहोदरी बाई मनमोहन सिंह गिरजा बाई चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी ने भी हमें ईमेल भेजा है। जगराओं से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या सुच्चा सिंह पाठक बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सीमू एकम दमन और अभिजोत पटियाला से मुकेश बत्ता और नीलम बत्ता रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित खुशी गोस्वामी पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे उषा अनुश्री धनुश्री बुरांडे जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित गर्व और हिमाक्ष का भी हमें ईमेल आया है। साथ में तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन मोहम्मद यूसुफुद्दीन चिरमिरी कुरासिला कालरी से इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन उषा और प्रतीक्षा चंदन महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज तलहत फरहत नुजहत साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूर नाज का भी हमें ईमेल आया है। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू ने भी हमें ईमेल किया है। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

फिल्म आयशा का गीत अभी आपने सुना तोशी रैना की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म त्रिदेव से मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज़ों में। आनंद बख्शी हैं गीतकार, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा है राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी ने। जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति जायसवाल, सहारनपुर से सैयद मसरून, शाइना हसन और नाजिया इब्राहिम ने, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी ने, भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर ने भी हमें ईमेल भेजा है। लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, लोहगढ़ ठाकुरा वारा से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, लोहारी डी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी ललिता, खुशान साहू और निशान साहू, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहमद मिफरा नवाज और चाहत, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पाटन, पराग पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, लुतरा खमरिया से अकरम अमीन और अर्श के साथ में हैं आतिका, डोंडी लोहरा बलोत से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और अल कबीर, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब और इरफान मोहम्मद, बाग बहरा भदरसी से पन्ना लाल सेन, खुशबू सेन, तारा और कौशल सेन, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना और वली अंसारी, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन, बरकाकाना से अफजाल, ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी सहनी और मोहम्मद अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोखड़े, नंदा और हनुमान बोखड़े, पुतकी कला कवर्धा से राधे श्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, फलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डींगिया, नमन अपार डींगिया, पूना जंक्शन मस्तानपुर से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत और चेतन भगत, मुंबई से आदिबा नाज, फातिमा नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका प्रशांत, प्रियम थांदी और वामिका और वाणी थांदी, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम

साबिर राही और महराज जहां, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू, पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी सोनाली सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा की फरमाइश पे आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आइए सुनते हैं साहिबा फिल्म से। अनुराधा बॉडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में आनंद बख्शी हैं गीतकार। संगीतकार हैं शिव हरी। और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा है तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा ने। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साहिद शाहिद ने भी हमें ईमेल किया है। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, निवान सौरभ और शाइना मैडी शर्मा ने। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून ने। गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव भानु, प्रिया माधुरी और किरण। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता रजक, मंजू भाटिया और मैंग भाटिया। चिरमिरी कुलासिरा कालरी से इंद्रभान सिंह, ऋषभ, राम सहोदर। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वालाया, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सरवत और सानवी देशमुख। जलंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और मक्कार जहां। रामघाट कैंट से मोहन महेंद्र मोदी कभी हमें ईमेल आया है। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा। मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू, गुड्डू जाजोरिया। कांकेर जिला भानबेड़ा मुगवाल से भारत राम पडोदी, जयंत हेमंत उमंग मोक्ष पडोदी। दिल्ली से सोनम सना और आदिबा। तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुजाता पोहरकार। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली धनंजय कटनकर। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी पर्ल और विलिस डिकोस्टा। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह कभी हमें ईमेल आया है। पटियाला पंजाब से सोम दत्त, कैरव ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु। भादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाणकर, टुक टुक गवहाणकर। प्रिंस एकांश सुमित और ध्वनि गवहाणकर। गंगई टिकरीपारा से जागेश्वर दिवंगन, कटरीबाई दीपक, जयश्री दिवंगन, ऋषभ और ऋचा दिवंगन। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह और लवप्रीत करमवीर कौर। दिल्ली से अजीज़ वकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

फिल्म साहिबा का गीत अभी आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसका शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही देर में हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण

0: आरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की लोक और जनजाति विरासत की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से बस्तर तिरंगा यात्रा की हुई शुरुआत। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पाट जात्रा पूजा विधान के साथ आज से बस्तर दशहरा शुरू। और ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जशपुर जिले की 2 महिला मजदूरों की मौत, 20 से अधिक महिलाएं घायल। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक और जनजाति सांस्कृतिक विरासत को 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस स्वागत समारोह एट होम में विशेष स्थान मिलेगा। भारत की स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जीवंत लोक तथा पारंपरिक कला परंपराओं के माध्यम से संस्कृति, समुदाय और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की ओर से गेड़ी और गौर मड़िया नृत्य प्रमुख आकर्षण होंगे। छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लगभग 35 कलाकार विभिन्न लोक नृत्यों और पारंपरिक संगीत प्रस्तुतियों में भाग लेंगे। समारोह की संगीत प्रस्तुति को भारत की विविध लोक परंपराओं की एक सांस्कृतिक यात्रा के रूप में तैयार किया गया है। इसकी शुरुआत बस्तर की पारंपरिक अनुष्ठानिक परंपराओं पर आधारित मंगल धुन से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
6: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
5: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने आज नारायणपुर से बस्तर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा को विभिन्न समाज प्रमुखों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि ये यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पहले नक्सली घटनाओं ने लोगों को प्रभावित किया था। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से देश और दुनिया को ये संदेश दिया जाएगा कि इन क्षेत्रों में अब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है।
7: बस्तर तिरंगा यात्रा आज नारायणपुर से प्रारंभ होकर के कल और

0: परसों ऐसे 3 दिनों की यात्रा है। ये यात्रा सभी ऐसे स्थानों से होते हुए जाएगी जहां नक्सलियों ने बड़े तांडव किए थे पहले, जहां पर लोग हमारे शहीद हुए थे, जहां पर आर्म फोर्सेस के लोग शहीद हुए थे, जहां पर आम नागरिक मारे गए थे, नृशंस हत्याएं नक्सलियों की थी, वहां लोगों से चर्चा करने वाले हैं। उन क्षेत्रों में अब नक्सलवाद पूर्ण समापन हो चुका है, इस बात का संदेश देश और दुनिया को देने वाले हैं।
1: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर संभाग के 90 से अधिक गांवों में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। आज पहले दिन तिरंगा यात्रा नारायणपुर से शुरू होकर मुंजमेटा, झारागांव, धौड़ाई, कन्हारगांव, कड़ेनार, बोदली, सातधार, बारसूर होते हुए दंतेवाड़ा पहुंची। वहीं कल दूसरे दिन ये यात्रा दंतेवाड़ा से सुकमा और बीजापुर जिले के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। तीसरे और अंतिम दिन 14 अगस्त को ये यात्रा बीजापुर से आवापल्ली, उसूर, गलगम, नंबी, ताड़पाला होते हुए कर्रेगुट्टा पहाड़ी पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर किसानों ने अपने कुलदेवता और खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा की। साथ ही बच्चों और युवाओं ने गेड़ी चढ़ने का आनंद लिया। नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भी हरेली तिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को हरेली तिहार की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व हमें अपनी धरती, पशुधन, कृषि उपकरणों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है।
2: आप सबला पूरे छत्तीसगढ़ के हमार दाई दादा, सियान जवान, भाई बहने सबला हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत शुभकामना।
1: कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने मांदर, ढोलक और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप के बीच छत्तीसगढ़ी गीत और नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। प्रदेश के अन्य जिलों में भी हरेली पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं हरियाली अमावस्या के अवसर पर आज देश में सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में आज नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के पास वृक्ष मित्र परिवार के साथ 31 राज्यों में 50,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। हरेली अमावस्या के मौके पर पाठ, जात्रा, पूजा विधान के साथ आज से 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व शुरू हो गया है। इस रस्म के तहत बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने ग्राम बिलोरी के जंगल से लाए साल वृक्ष की शाखा की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर महापौर संजय पांडे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी, कलेक्टर आकाश छिकारा सहित बस्तर दशहरा समिति के सदस्य, पारंपरिक मांझी, चालकी, मेंबर, मेंबरीन, पुजारी, पटेल, नाइक, पाइक और सेवादार मौजूद थे। आज विश्व हाथी दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के 60% से अधिक जंगली एशियाई हाथी भारत में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 33 एलिफेंट रिजर्व हैं जो हाथियों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराते हैं और उनके दीर्घकालिक संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करते हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 20 से अधिक महिलाएं झुलस गई हैं। ये सभी महिला मजदूर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की रहने वाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र के बरडीह सहित आसपास के गांव से महिला मजदूर धान की रोपाई के लिए ओडिशा गई थी। तलसरा थाना क्षेत्र के बालीशंकरा स्थित भाटीपाड़ा के पास धान की रोपाई के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। घायल महिलाओं को उपचार के लिए सबडेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हज 2027 के लिए पहली किश्त जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि राज्य के चयनित आवेदक पहली किश्त 17 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए रायपुर के बैरन बाजार स्थित छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी से संपर्क किया जा सकता है। इस बीच हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए हज प्रशिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन 23 अगस्त तक आमंत्रित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार, अंक बढ़ाने या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उत्तीर्ण कराने के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल से सावधान रहने की अपील की है। मंडल ने कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है और ऐसे मामलों में धनराशि की मांग करने वाले लोगों का मंडल से कोई संबंध नहीं है। विद्यार्थी और अभिभावक ऐसे कॉल पर विश्वास न करें, किसी प्रकार का लेन देन न करें और फर्जी कॉल मिलने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम से कल नई दिल्ली में हुई

मुलाकात के दौरान अधिकारियों को बलरामपुर और रामानुजगंज शहरों को बायपास मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय केटीयू और गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के बीच ग्रामीण पत्रकारिता शोध और जनसंचार को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किया जाएगा। बिलासपुर जिले के ग्राम रहेंगे बिल्हा में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना के लिए 5 एकड़ भूमि को मंजूरी मिल गई है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। पहले से जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले की चांपा पुलिस ने एक पोस्ट ऑफिस एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 150 से अधिक खाता धारकों से रिकरिंग डिपॉजिट खाते में रकम जमा कराने के नाम पर पैसे की वसूली की और राशि पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं की। शुरुआती जांच में 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और राजनांदगांव जिला पुलिस बल के जवान महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित होने जा रहे नेशनल ट्रायथलॉन गेम्स में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की लोक और जनजाति विरासत की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से बस्तर तिरंगा यात्रा की हुई शुरुआत। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ आज से बस्तर दशहरा शुरू और ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जशपुर जिले की 2 महिला मजदूरों की मौत, 20 से अधिक महिलाएं घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म इतिहास से अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं दिलीप सेन और समीर सेन, और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा है महाराष्ट्र से रुपेश सिंघई, महेश सिंघई, प्रज्ञेश प्रतीश सिंघई ने, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी मनवर, और इनके साथ में है प्रियांशी, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता लोखंडे, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंत राव भोजने और निवृत्ति आडोकार, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत क्रिस्टी पटवा, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का भी हमें ईमेल आया है, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी

भूपेश दीपेश वर्मा, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता प्रिंस एकांश गवहाणकर, पैठण से हमें ईमेल भेजा है सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल जिया जाधव ने, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित कुमार, हैप्पी राय, दतरंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गोण और शादाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया ने भी हमें ईमेल किया है, रसूडिया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी ने भी हमें ईमेल किया है। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

फिल्म इतिहास का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म शिकारी से कुमार शानू की आवाज़ में। समीर हैं गीतकार, संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा है यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा श्राव्या रामटेके ने, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू राजबत्ती काजल पूर्वी हेजल राजेश रेशमा साहू ने, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन और सलाम राइन ने, लच्छनपुर से रामजी साहू जीवन लाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू ने, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू जामुनी देवी प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू ने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा और पूजा परिहार ने, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, श्रीरामपुर से अशोक दले सविता अनिकेत रोहिणी और ऋषिकेश जीविका दले ने, ग्राम ठेका से दुखी राम यादव बुधराम यादव और कुमार यादव ने, वेद परसदा मस्तूरी से अर्जुन लाल निर्णेजक पुरुषोत्तम पटेल बिजेंद्र पटेल और शशि पटेल ने, कोसमंदा पलारी से गिरधारी लाल कनौजे नाथुराम वर्मा हरि वर्मा ने, बलौदाबाजार से हरीश कनौजे तिलक राम और अशोक कनौजे ने भी हमें ईमेल करके इस गीत की फरमाइश की है। आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।

फिल्म जब जब फूल खिलेगा गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी गीतकार थे, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा था कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन ने। बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत,

शब्द सिंह राहुल ने जलंधर से संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत, भरत कमल और शाहिनी ने हमें ईमेल भेजा है। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र, रौनक सेन, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु सोनाली नारंग, बरेली कैंट चनेहटी, उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन वर्मा, पल्लवी राजेश्वरी वर्मा, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लाव्या, आरव खुराना और एसपी पप्पी, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मनी रावत, नीरज रावत और शुभम सौरभ रावत ने, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, सोनम वली, आसमा वली, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मराज वाधवानी, बोड़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू ने, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद दुखनी, सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद का भी हमें ईमेल आया है। भिलाई 3 चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जिशान, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा ने भी हमें ईमेल भेजा था। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और ओम प्रकाश सुरलकर का भी हमें ईमेल आया था इसी गीत के लिए। इसके अलावा हमें ईमेल भेजने वाले श्रोता हैं राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दूधी, आप हैं हिस्सर से, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी, डब्बू बबलू, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान और अरजान अब्बासी के साथ में हैं अबान अब्बासी, कमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल और पूजा परिहार, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची प्रवीण पुजारी, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल, वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत और अर्पिता, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार, रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, बुड़गहन से अमोल मानकर, शोभा ताई, दीपाली और श्लोक कुमार, गांव हीरा वाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा की भी फरमाइश आई है अगले गीत के लिए। और लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म राजा भैया का गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। समीर हैं गीतकार, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

फिल्म राजा भैया का गीत अभी आपने सुना, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का ये अंक यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: जय जोहार संगवारी हो। आज तो हरेली तिहार बड़ा धूमधाम से उत्साह के साथ मनावत है हमारे संगवारी मन। तो संगवारी हो, ग्राम सभा कार्यक्रम के मयारू श्रोता संगवारी भाई बहनी मल्ल हरेली तिहार की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। राम सनी भी के झोंका और राम राम जय जोहार। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ ला धान की कटोरा कहे जाते और यहाँ की संस्कृति उत्सव तिहार मन जम्मो प्रकार ले खेती किसानी के ऊपर आधारित होते। हरेली तिहार हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे किसान भाई बहनी मन के पहली तिहार आए, जब किसान भाई बहनी मन अपन खेत में फसल की बुआई, धान की रोपाई, बियासी या लेंझा फुराई के काम ला पूरा कर लेथन, तब धरती मैया के चारों मुड़ा खेती खार खेत खलिहान मेड़ पार सब कति धरती मैया हर हरियर रंग की श्रृंगार करी रखे। तब हमारे किसान भाई बहनी मन खुशी के मारे गदगद होके प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करे बर गांव भर से जुड़ मिल के हरेली तिहार ला मनाथन। हरेली तिहार ग्रामीण जीवन की लोक परंपरा और खुशहाली के अनोखा तिहार आए। ये तिहार हर प्रकृति और मन के बीच में आपस में गहरा संबंध ला दर्शाते। तो आप सब ला हरेली तिहार के एक बार फिर से गाढ़ा गाढ़ा बधाई। अब आओ सुनथन ये संदेशाला।
1: प्रस्तुत हवा है

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ना कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
0: आपकी रक्षा में पूरी।
2: संगवारी हो, अब अपन बलि के आए हैं स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में। और ग्राम पंचायत घुटकू विकास खंड तखतपुर जिले बिलासपुर के कार्यक्रम में सुनत हन आवाओ। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और संपादन हवाए गोपाल कृष्ण पांडे हमर मंगू भैया और कार्यक्रम के प्रस्तुति और संयोजन हवाए डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन।
3: प्रस्तुत हवाए स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में। एक क्रम में हम पहुंचेन ग्राम पंचायत घुटकू विकास खंड तखतपुर जिला बिलासपुर। सबले पहले हमर भेंट हो गए जनपद सदस्य मन सो, आवा उनकर सो ये गोट बात कर ले जाए।
4: हमर बीच में जनपद सदस्य रवि कुमार सोनी जी मन हुए जो उनकी घुटकू में दो पद में काम करत हैं समाज सेवा के रूप में। एक तो जनपद सदस्य, दूसर ले डॉक्टरी घला करत हुए सेवा के भाव ले। तो सबले पहले तो डॉक्टर रवि कुमार सोनी जी अपन राम राम।
5: राम राम सब बोझल्ला।
4: ये जैसे आप सेवा जो डॉक्टरी के करते हो कई बच्चर हो गए करत बताओ आप।
5: मुला ये सेवा कार्य करत लगभग 15 साल हो गए।
4: अच्छा अच्छा
5: हाँ।
4: कह जाए तो अभी दो पंचवर्षीय लेके है, पिछले बार गला आप जनपद सदस्य रहे हो तो का अनुभव रहे आप मन?
5: देखो मैं शुरू से जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा के कार्य में रहा हूँ, वो समय जैसे मैं रहा हूँ तो गांव में जाऊँ गली घोर है जैसे हमर मोर क्षेत्र में भाड़ा में आते घुटकू आते तो वो रसदा में जैसे कुछ समस्या रहे सड़क के कीचड़ के नाली रहे तो मैं कहे सोशल मीडिया चलाता हूँ।
4: अच्छा।
5: तो उमा वो मुद्दा उठाऊ।
4: अच्छा अच्छा।
5: कि ये समस्या है क्षेत्र में, ये गांव है, ये नेता ला चाहिए कि उम्र का निर्माण करे विकास करे। तो वही सेवा भाव ला वही कार्य ला देख के वहाँ के यहाँ के जनता मन कहीस कि भैया इधर ही तहु इधर ही राजनीति में थोड़ा उतर।
4: अच्छा।
5: तो मैं आप मन समर्थन करिहा तो मैं कोशिश करूँ। तो जम्मो सबो जन भाई बहनी दीदी मन समर्थन करिस और बढ़िया जिताइस।
4: अच्छा अच्छा।
5: और उखर परिणाम रिसे कि उखर जो समस्या मूलभूत रिस वाला दूर करें।
4: अच्छा अच्छा।
5: और दूर करें और निस्वार्थ भाव से काम करें।
4: अच्छा अच्छा।
5: निशुल्क राशन कार्ड बनाना है, निशुल्क नाम जोड़ना है।
4: अच्छा।
5: सैकड़ों की संख्या में तो वो सब ला देख के पुनः एक बार फिर मौका मिली तो फिर उन सबो जन जिताई।
4: अच्छा अच्छा।
5: बढ़िया लगा थे कि
4: आप मन के सेवा के परिणाम कह जाए।
5: जी जी।
4: तो अभी का विकास दिखते आप मन कौन कौन से काम लग करवाए हो?
5: जैसे कि रही से कि मोर क्षेत्र के अंदर भाड़म रही से जो मुख्य मार्ग रही से वो दशकों से कीचड़ युक्त रही से घुटना घुटना भर पानी भरा रहे।
4: हाँ हाँ।
5: वो मुख्य उपलब्धि रही से ओखरे वही लले के मैं राजनीति में उतरे रहे उखर।
4: अच्छा अच्छा।
5: तो वो दूर हो गए, वहाँ बहुत बढ़िया 2 करोड़ के सड़क बन गए, सीसी रोड आरसीसी बहुत बढ़िया दोनों तरफ नाली बन गए।

0: दूसर रही से कि हर क्षेत्र में जैसे जनपद विकास निधि बहुत कम आते,
1: अच्छा
0: हमला ज्यादा अधिकार तो रहे नहीं,
1: हाँ,
0: साल में 8-10 लाख के काम आते, वो है सरपंच के खाता में आते। तो हम
1: अच्छा
0: केवल
1: अच्छा
0: स्वीकृति देतन
1: हाँ,
0: स्ट्रीट लाइट के सेवा कार्य रही से, तो हर गांव के हर गली मोहल्ला में स्ट्रीट लाइट बनवाएं। सत्ती पारा में वैसा नहीं, कीचड़ की समस्या रही से मुख्य मार्ग में,
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: वो का पूरा 9 लाख के राशि जिसे मिली, सो पूरा सीसी रोड बनाए, तो आज सत्ती पारा के भी उद्धार हो गए।
1: अच्छा
0: वैसा
1: अच्छा
0: नहीं, नवा पारा के समस्या रही से बीच नाली से पानी जावे, तो ओहू में लगभग 7.5 लाख के काम करें तो ओकरो उद्धार हो।
1: अच्छा अच्छा
0: पंडरी पार है, लोनिया पारा में स्कूल के बाउंड्री वाल हवे, और ऐसा है सिंगार बाड़े में स्कूल के बाउंड्री वाल
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: है ना, तो ऐसा है बोर खनन हवे, पाइपलाइन विस्तार हवे।

0: एक प्रकार ले कहे जाए तो बड़ा अच्छा जवाबदारी आप मन के पराइस और जवाबदारी के निर्वहन आप जिम्मेदारी के करत हो तो आगु के का सोच है आप मन के का विकास के गति ले बढ़ाना है
1: आगु के सोच मुख्य रूप से मोर रही थे शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा बहुत जो सरकारी शिक्षा के व्यवस्था है स्कूल के जो बालिका मन पढ़ते बालक मन पढ़ते भवन वन पर्याप्त नहीं रहे मैदान के व्यवस्था हमारे गांव में जगह नहीं बांज के इतना कब्जा हो गए तो मैं लगातार प्रशासन से मांग करे हूँ कि ये हमारे क्षेत्र के जो लइकन है दिल्ली में जाके खेल में उत्साह वर्धन प्रथम आवत है
0: अच्छा
1: है ना तो खेल मैदान हमारे गांव में नहीं है
0: अच्छा
1: बहुत बड़े इतका बड़े तखतपुर क्षेत्र के सबसे बड़े पंचायत हमारे एक मैदान की सुविधा नहीं है तो उखर मैं मांग सरकार तीर करे हूँ विधायक महोदय तीर करे हूँ अगर उखर प्रोत्साहन हमला दे दे तो बन जाए
0: अच्छा
1: और एक कॉलेज के मांग रही से विधायक जी भी घोषणा कर रही से ये बहुत बहुत बड़े मुद्दा है शिक्षा जो स्कूली क्षेत्र है और खेल के मुद्दा तो बोला चाहत हन की हो गांव गांव में स्वच्छता के जो प्रचार प्रसार हो बहुत बड़े जो स्वच्छता से संबंधित समस्या है तो गांव के नागरिक मतलब जागरूक करना चाहतन कि वो थोड़ा सा अपन जिम्मेदारी निभाए साथ ही पंचायत अपन जिम्मेदारी निभाते कि स्वच्छता के प्रति आगे आवे
0: कतक जनसंख्या हो या अपन के घुटकू के गांव
1: घुटकू के जनसंख्या तो लगभग 15,000 से ऊपर हवा
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: क्षेत्रफल अगर मैं कहूँ तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला ग्राम हमारे घुटकू है
0: अच्छा अच्छा
1: लेकिन जेन जिसे एकर संख्या है जैसे एकर क्षेत्रफल है वो ढंग से ना इकर जो हमला जो शासन से विकास के लिए राशि मिलते वो बहुत कम पड़ जाता
0: अच्छा अच्छा
1: तो मैं है अभी लिखित में मांगे भी रहे हूँ कि हमार घुटकू गांव नगर पंचायत के योग्य हवा है काहे कि 5-7 हजार में अन्य क्षेत्र में नगर पंचायत बन जाते तो हमार गांव के तो 15,000 जनसंख्या है और 7,500 से ज्यादा वोटर हवा
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: तो ओखरो सुविधा नगर पंचायत के मिल जाती तो कम से कम विकास के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ती हमारे गाँव
0: बहुत बढ़िया आप मन के डॉक्टरी वाले सेवा तो हम आप मन से पूछ नहीं पाए समय के अभाव है आप मन के जो सेवा भाव है आप करत रही हो और आप मन जो जानकारी दे कर बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद जय जोहार
0: भैया राम राम
2: राम राम भैया राम राम
0: का नाम है आप मन के
2: राजकुमार पटेल ग्राम घुटकू के रहियो में है
0: आप खेती किसानी करते हो
2: खेती किसानी करते हैं भैया
0: का का लगाते हो आप मन
2: मूली लगे रही से बरबट्टी लगे रही से कुछ माँ अब गोभी के तैयारी में लगे हैं
0: पानी के का साधन है
2: पानी के साधन हमारे पास ट्यूबवेल भी है
0: अच्छा
2: और कुआं पंप
0: तो बरबट्टी जैसे लगा था आप मन तो इला कैसे ढंग से लगा था
2: मांदा में करके हल्का मांदा खींच के
0: अच्छा अच्छा
2: हल्का मांदा खींच के ना बुलवा मार के लगा था
0: तो बरबट्टी में कतेक फायदा हो गया अपना कतेक एकड़ पाछू हेक्टर पाछू कतेक उतर जात हुई
2: तो बरबट्टी है 25 डिसमिल में लगे है तो लगभग हर पारी में कुंटल भर निकल जाते
0: अच्छा अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा हाँ। तो एक प्रकार ले कहे जाए तो फायदा होई से
2: होई से फायदा भैया होई से
0: अच्छा अच्छा
2: हाँ होई से
0: रमकेरिया कहे भिंडी लगाए के बात करे है
2: हाँ
0: तो इला कैसे ढंग लगा था
2: इला वही ढूरुच में थोड़ा मांदा खींच खींच के
0: अच्छा अच्छा
2: हाँ एक हाथ के मांदा खींच के ना दोनों किनारे में लगा था और लगा के वाला अब नाली नाली पलो था
0: अच्छा अच्छा
2: हाँ
0: तो रमकेरिया में कत का फायदा हो जाता है कतिक उत्पादन हो जाता
2: है अब उत्पादन के हिसाब से हर पारी में ना 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल निकल जाते है 1.5 किलो के बुआरा में
0: अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा जी अच्छा। मुरई कह रहा हाँ, बोला कैसे ढंग से लगा था
2: मुरई लोग मांदा में लगते थोड़ा से अच्छा। हल्का हल्का मांदा खींच के तो पिछले साल तो मूली खराब हो गई पूरा आधा एकड़ में लगा रहे तो
0: अच्छा
2: और इस साल के रिजल्ट है ना तो बढ़िया रही एक भी खराब नहीं हो है
0: अच्छा
2: और साथ साथ पिछले साल के बजाय इस साल रेट में भी बढ़िया मिली से
0: अच्छा अच्छा अच्छा
2: पिछले साल 14-15 पाइन तो खराब हो गए
0: अच्छा
2: इस साल 28-30-32
0: ऐसे
2: मतलब निकली से
0: तो ऐसे कैसे फर्क पड़ी से वो साल है साल में
2: पिछले साल हम दवाई के थोड़ा से जानकारी नहीं रही से तो डाले मगर कम जानकारी के हिसाब से वो खराब हो गए
0: अच्छा
2: और जानकारी मिली ना तो साल डाले तो एक भी मूली खराब नहीं हुआ
0: अच्छा
2: साइज ही बढ़िया इसे और पैदावार भी बढ़िया रही से
0: ऐसे
2: हाँ
0: पैदावार की बात करो था तो उत्पादन कतेक हो जात हुई
2: अब उत्पादन पंद्रह डिसमिल बो हाँ तो कम से कम 10 क्विंटल के आसपास आई से हाँ। मतलब जितना मैं दाना लगा है ना वहाँ के 5% खराब हो गए अच्छे होते तो थोड़ा फर्क पड़ जाते तो वही 5% मार खाई से 90-95% बढ़िया रही से
0: अभी गोभी घल बात कर रहा
2: हाँ।
0: गोभी आप लगा था
2: हाँ गोभी तो लगा
0: गोभी के का कैसे ढंग से लगा था आप कौन कौन से गोभी लगा था
2: अभी यदि कतिखा लगा था
0: अच्छा
2: कतिखा जैसे हमारे समाप्त हो ही उखर बाद में टोटल प्याज भरते
0: गोभी में कतेक पैदावार हो जाती

0: से पैदावार लगभग मैं 30 अगन डिस्मिल में बोता हूँ गोभी,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो मैं लगभग 7-8 क्विंटल 8-10 क्विंटल के आसपास आ जाते
1: अच्छा अच्छा
0: आ
1: अच्छा
0: जाते हाँ।
1: और जैसे आप बताया अभी
0: प्याज के,
1: प्याज गोंदली लगा
0: हाँ
1: था,
0: हाँ हाँ
1: तो गोंदली के कैसे ढंग ले खेती करता थे बताओ ना पहले।
0: प्याज गोभी जिसे समाप्त हो गए तो ला जोत फान के वाला डुहरू बना था, और डुहरू बना के पहले थरा डाले रहा था
1: अच्छा
0: गोभी जैसे शुरू हो गए कटे पर,
1: अच्छा
0: तो हमन थरा डाल देते हैं
1: ऐसे
0: तो गोभी कटत ले ठीक थरा तैयार हो गए तैयार रहते।
1: अच्छा
0: अब जैसे गोभी समाप्त हुई जोत फान के प्याज ला गोंदली ला उखाड़ के वाला डुहरू बना के लगा था, तो का हमन प्याज भाजी बेचन
1: अच्छा
0: हाँ
1: प्याज भाजी में गलत फायदा है
0: हाँ वो हमला कांदा से ज्यादा फायदा लगते हैं
1: ऐसे
0: हाँ हाँ
1: अच्छा
0: तो घर से कहा हमन जैसे गटी परबो
1: हाँ
0: कांदा परबो प्याज
1: हाँ
0: ला,
1: हाँ हाँ
0: तो 3 महीना समय खा देते,
1: समय खा
0: और
1: जाते
0: हमला भाजी ले बेचना है तो हमारे 1.5 महीना में पर्याप्त हो जाते
1: ऐसे
0: पर्याप्त हो जाते,
1: अच्छा अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: से ज्यादा रेट में मिल जाते हाँ
1: ऐसे
0: ज्यादा रेट में मिल जाते,
1: बढ़िया तो
0: एक
1: फिर
0: से हमन भाजी बेचतन और कांदा नहीं परवाना, और जैसे घर में खाए बार उपयोग लाना है ना तो दुकान ले का बोरी खरीद के ले लाता नौकर जगह में
1: अच्छा जब फायदा दिखा थे तो काय बिगड़ थे है ना। तो ये प्रकार ले अपन सब्जी के खेती करत हो,
0: करथन भैया हाँ।
1: तो कई बच्चर हो गए हो अपना सब्जी खेती करत।
0: अब मोर बाबा खेती करते थे पूर्वज के, ओकर बाद हमारे पिताजी करी, अब पिताजी हमारा सीखो के अब निकल गए हमन करथन
1: ऐसे
0: हाँ,
1: हाँ
0: हमारे मतलब 3-4 पीढ़ी हो गए पीढ़ी दर पीढ़ी चलत आवत है, हमारे
1: हाँ
0: टोटल सब्जी खेती हल्का फुल्का धान खेती है, अब खेती बढ़ा की से लेत गया हम
1: हाँ
0: था
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: धान थोड़ा बड़ी से,
1: ऐसे
0: और 4 भाई रहे तो ऐसे 2-3 एकड़ में सब्जी करते हैं,
1: हाँ
0: और सब अब बाटा भाई अलग अलग हो गए
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो अपन अपन हिसाब से सब चलते,
1: सही बात
0: बाकी
1: है।
0: सब भाई हमन ना सब्जी खेती ज्यादा करते हैं
1: अच्छा धान के कहे धान घला
0: हाँ,
1: लगाता
0: धान भी
1: तो
0: लगा 4 एकड़ खेती करा था तो
1: ऐसे
0: 3 एकड़ लग गए और
1: अच्छा
0: 1 एकड़ है देखा लिया परसों लगी
1: ऐसे।
0: हाँ
1: तो ये जैसे 4 एकड़ खेती भी करते हो अपन
0: हाँ
1: धान
0: हाँ
1: के,
0: हाँ
1: तो इसमें कौन कौन से धान लगाते हो ऐसे किस्म
0: अब
1: आने।
0: मां कुछ मां 2.5 एकड़ में पतला धान लगा है चिमटी,
1: अच्छा
0: और बाकी मां 3.5 एकड़ में जमुना पान लगे हैं
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ,
1: ये जमुना पान के कैसे रहते।
0: जमुना पान के रिजल्ट उत्पादन है
1: हाँ हाँ
0: उत्पादन हम इसे अपन जाना मोला तो इसे 15-20 साल हो गए खेती करत, मैं
1: अच्छा
0: पिताजी है साधु बन के निकल गए,
1: हाँ
0: अब जैसे छोड़ के निकले तब खेती बाड़ी हमारे ऊपर आ गए,
1: हाँ हाँ
0: तो मैं जब से बोआ था तब से लगभग लगभग 25-26-27
1: अच्छा
0: क्विंटल प्रति एकड़ लूथा
1: ऐसे
0: हाँ,
1: बढ़िया बढ़िया
0: और
1: चाल
0: रबी फसल में लगभग 28-30 पहुंच जाते, 28-29
1: अच्छा
0: क्विंटल पहुंच जाते
1: ऐसे।
0: हाँ जी,
1: तो दोनों फसल लेता
0: दोनों
1: हो
0: फसल
1: आप,
0: लेता जी
1: और जैसे कहे चिमटी घला लगा था
0: हाँ,
1: तो घर कैसे पैदावार है
0: ये चिमटी में वही 20-22 क्विंटल लगभग हवा हाँ
1: उतर जाते।
0: उतर जाते हाँ उतर जाते हैं
1: ठीक है बहुत बढ़िया अपन सब
0: हाँ जी
1: जानकारी
0: हाँ
1: लेन
0: हाँ
1: आप
0: जी,
1: मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद दिया धन्यवाद दिया
1: देखा था ना तो बहुत अगर कहाँ का विद्युत वाला लाइट वाला कहाँ का जीनियस धरे हो तो आप काम उतर करता हो।
2: अब मैं ही लाइटेज के काम करता भैया, सबसे पहले तो बस्ती के अंदर में मोर इलेक्ट्रिकल के दुकान है,
1: अच्छा।
2: अब एमा मैं यहाँ टीवी रिपेयरिंग करता हूँ, एलईडी बल्ब भी बनाता हूँ, एफएम रेडियो भी बनाता हूँ, जिन लाभ
1: बढ़िया
2: मन के हकाई ग्राम लाभ ओखर माध्यम से सुनता भी है
1: बहुत अच्छा
2: ना,
1: हाँ
2: और ओखर से हम लोग बहुत ज्ञान वाचक शब्द भी मिलते हैं
1: बढ़िया बढ़िया बढ़िया
2: हाँ,
1: बढ़िया हाँ
2: तो यही काम ला मैं करता हूँ, और दूसर चीज मैं हाँ अब बिच्चे ये दल सगरा मंदिर के लाइट ला बना के आया हूँ, महादेव के ला
1: हाँ
2: सावन महीना लग गए है, और
1: हाँ
2: कम से कम अब उजाला रहे, वो माले
1: हाँ
2: आदमी रहते कीर्तन भजन भी करते हैं फूल पान भी चढ़ाते हैं,
1: हाँ
2: ऐसे काम करके दे मैं आप मन तक पहुँचे हूँ भैया
1: स्वरोजगार लापनाए हो आप मन। और ये कहे जाए तो लाइट बनाए के काम तो कै बच्छर ले करा था थोड़ा बता।
2: मोला इला करत करत करीब 40 साल हो गए भैया, आज मोर
1: 40 साल
2: उम्र हवा 65 साल के है,
1: तो ये सब कैसे परिवर्तन आप ला दिखते।
2: अब ये परिवर्तन तो बहुत अच्छा है भैया, का है एक प्रकार से यह रोजगार भी है
1: हाँ
2: सेवा भी है
1: अच्छा
2: सत्संग भी है,
1: हाँ
2: और सब प्रकार से यह बहुत अच्छा चीज है,
1: अच्छा।
2: दूसरा चीज मैं एक तो चीज और बोलना चाहता हूँ,
1: हाँ
2: जैन तार जैसे के पानी गिरा थे
1: हाँ हाँ हाँ
2: कोकी बना के रखे है
1: हाँ
2: बिंद्रा कूदा थे वो
1: हाँ
2: तार गिर जाते रात के नहीं
1: हाँ
2: दिखे, ऐसे झूला थे वो वहां रिटर्न करंट आते
1: हाँ
2: ओखर से भी खतरा हो सकत है,
1: हाँ
2: तो ओला अपन अपन जैन भी कोकी लगाए हैं वो
1: हाँ
2: अपन सुरक्षा ओला करे के प्रयास करें,
1: अच्छा
2: सही दिशा में ओला लगाए प्रयास करें,
1: हाँ
2: ज्यादा करेंट ला मत छुए पानी माँ,
1: हाँ
2: अब अतके सब चीज ला मैं हाँ
1: हाँ
2: समझा था बार बार, अगर अगर मूर्ति कहीं

0: हाथ है था
1: हाँ।
0: तो बस कटे फटे मत रहे और अच्छा सो टेप भी मार दें
1: हाँ।
0: सावधानी से रहे कागर के सबके बाल बच्चा हमरेज बाल बच्चे घटना मत हो घटना से आदमी बचे
1: हाँ, खतरा ले बाँचे है ना
0: खतरा ले बाँचे
1: तो ये सब बात ला बता था सब ला
0: हाँ भैया
1: मतलब ये एक प्रकार से समाज के सुधारक के रूप में घला विद्युत तो सुधार कर राइट के काम ला तो करते थे अब ये सुधार के काम बात ला बता तो समाज ला आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। गुटकू ग्राम पंचायत में हम पहुँचे देखें शिक्षा के घला व्यवस्था हुआ है स्कूल घला चलत हुआ हम वहाँ भेंट करें प्रधान पाठक जो हमें उनकर सो सबले पहले आप मल राम राम
2: राम राम
1: आप नाम अपन बता दे हो
2: मैं अरुण कुमार प्रजापति
1: अच्छा
2: प्रभारी प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला घुटकू
1: कहाँ तक ये स्कूल हर हवा है
2: वर्तमान में तो ये स्कूल कक्षा पांचवी तक ही है
1: अच्छा
2: जी
1: कते कर लेकर यहाँ पढ़त हो ही
2: यहाँ की अभी नामांकन 66 है
1: अच्छा
2: और दो चार बच्चे अभी आ भी सकते हैं
1: अच्छा अच्छा अच्छा कै बच्चर से आप यहाँ पदस्थ हो
2: मैं पिछले 16 साल से यहाँ पदस्थ हूँ
1: बहुत बढ़िया
2: 2009 से ही यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है तब से मैं यही हूँ
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: जी
1: ये 16 बच्चर के जितका भी समय आपके यहाँ सेवा मिलिस कहे जाए तो आप लोग कहाँ लगते है कि शिक्षा यहाँ के कैसे ढंग से पढ़ाई लिखाई लेकर मन के होता है
2: यहाँ मैं 16 साल मैं बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाया हूँ या फिर यहाँ का जो माहौल देखा हूँ यहाँ का माहौल बहुत ही पोटेंशियल है बहुत ही अच्छा है बच्चे उत्सुक रहते हैं माँ बाप भी अपने बच्चों को भेजते हैं यहाँ की उपस्थिति औसत 90-95% के बीच ही रहता है हर हमेशा
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
2: और आज हमारे ही पढ़ाए बच्चे अच्छे अच्छे पद में पहुंच चुके हैं
1: अच्छा।
2: कोई पुलिस बन चुके हैं कोई आर्मी में है बहुत अच्छा लगता है देख के ये सब चीज जी और हम हमारी कोशिश यही रहता है कि बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दिया जाए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शासन ने लागू किया है उसके हिसाब से बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक क्वालिटी पूर्वक और सुलभ शिक्षा प्राप्त हो
1: अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। अभी तक देखे जाए तो सुविधा के दृष्टिकोण ले का सुविधा ये स्कूल में हवे बच्चा मन खातिर और आप मन के खातिर स्टाफ के खातिर
2: जी शासन के द्वारा संचालित योजना तो हर योजना यहाँ लागू है जैसे कि मुफ्त ड्रेस वितरण कापी किताब वितरण उसके साथ ही साथ जो मध्याह्न भोजन है पोषण आहार है वो भी यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित है इसके साथ साथ ही हम लोगों ने शासन के द्वारा ही और हमारे सहयोग से जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर पर भी कुछ न कुछ गतिविधि कराते ही रहते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि उनका जो मन है स्कूल आने में लगातार लगा रहे
1: मानसिक जो विकास है एक अलावा शारीरिक विकास खातिर घला कुछ न कुछ तो होना चाहिए एक बार का है
2: जी जी जी बिल्कुल पढ़ाई के एक अभिन्न हिस्सा खेल भी है और खेल के प्रति शासन ने भी ध्यान दिया है टाइम टेबल पर पूरा खेल के लिए पर्याप्त समय दिए हैं जिसमें हम बच्चों को खो खो कबड्डी क्रिकेट और उन मनपसंद के इंडोर गेम हो गया जैसे कैरम हो गया शतरंज हो गया सांप सीढ़ी हो गया और बच्चों के अनुकूल जो भी है रस्सी कूद हो गया नंबर वाला कूद हो गया अल्फाबेट वाला कूद हो गया और रोचक बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे यहाँ स्टाफ करते ही रहते हैं
1: अच्छा अच्छा सबसे बड़ी बात आते है आजकल जो मध्याह्न भोजन के तो एकर गतिविधि कैसे ढंग के पूरा रसोईया और कर्मचारी पूरा पूरा आपके स्टाफ कतेक हवे कतेक कर्मचारी यहाँ कार्यरत हवे आपके ये स्कूल में
2: जी वर्तमान में तो हम दो ही शिक्षक पदस्थ हैं
1: अच्छा
2: मैं अरुण प्रजापति और श्रीमती करुणा सोनी जी दोनों पदस्थ हैं उसके अलावा हमारे यहाँ दो रसोईया है और एक सफाई कर्मी है चूंकि हम जानते हैं कि मध्याह्न भोजन का जो योजना है शासन का मूलभूत योजना है और इस पर हम लोग की कड़ी नजर रहता है इसके साथ साथ जो हमारे शाला विकास समिति है
1: अच्छा
2: वो लोग भी बीच बीच में दौरा करते रहते हैं चेक करते रहते हैं खाना गुणवत्ता बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है और चूंकि ये कृषि मोहल्ला है
1: अच्छा
2: सब्जी बहुत होता है तो लगभग लगभग हफ्ते में हमारे यहाँ 4-5 दिन हरी सब्जी ही बनता है
1: बहुत बढ़िया मतलब ये कहे जाए तो क्षेत्र के हिसाब से सब्जी उत्पादन जैसा बढ़िया हो रहे ओला बच्चा मल्ला लड़का मल्ला गला बना के खवाए जा रहे हैं ये मध्याह्न भोजन में इला शामिल करे हो आपमन तो ये बहुत अच्छा बात है एकर अलावा आप और का सोचता हो का कमी रह गई है कुछ ऐसा बात हुई तेला आप बताओ आप
2: कमी तो शिक्षा में अब ऐसा है कि 5 क्लास है और 2 टीचर हैं तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो होती है तो

0: आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर संभव हो तो हमारे भी स्कूल में एक आध टीचर की पोस्टिंग हो जाए तो काफी बढ़िया सुदृढ़ हो जाएगी शिक्षा व्यवस्था हमारी, हमारे यहाँ की।
1: अच्छा
0: जी,
1: आपन सो गुड बात करें, आपन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी धन्यवाद
1: भैया। राम राम।
0: राम राम।
1: का नाम है अपन के?
0: वो नाम राम सिंह पटेल है।
1: अच्छा पटेल जी।
0: हाँ।
1: आप पशुपालक हो?
0: जी।
1: कैठक मवेशी जानवर है अपन पास?
0: मवेशी में गाय है मेरे पास 3।
1: तो ये 3 गाय में दूध हो जाते हैं अपन?
0: हाँ।
1: तो अभी के समय में कह जाए दूध कतेक हो जाते हो?
0: अब वो देखो देसी वैरायटी के तो दूध लगभग 1.5 लीटर के आसपास रही थे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: हाँ, मतलब एक टाइम 1.5 लीटर। हाँ।
1: तो क्या ये पशु नस्ल सुधार के जो योजना चला थे शासन के?
0: हाँ।
1: तो ऐसा प्रयास काबर नहीं करो कि आप नस्ल सुधार के काम कर लो?
0: नहीं, वो मतलब नस्ल सुधार के कार्य हो है, काबर जो देसी गाय रही से उमा क्रॉस करा करके पहले जो जानवर रही से वो थोड़ा गाय छोटे टाइप की है, अभी उसका जो बच्चा जो जन्मे मन बड़े बड़े है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और साहीवाल किस्म के?
1: अच्छा।
0: हाँ।
1: तो ये साहीवाल किस्म के पशु नस्ल सुधार आप मन के हुई से, तो पशु नस्ल सुधार करे ले आप मन के जो जानवर में मवेशी में बढ़वार हो है कह जाए तो?
0: हाँ, वो अभी तो फिलहाल बच्चा मन के जो ऊंचाई ऊपर से अच्छा है और हेल्थ भी बढ़िया है।
1: अच्छा।
0: तो जाहिर से बात है आगे चल के जो दूध वगैरह उत्पादन है थोड़ा ऊपर से बढ़िया रही है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: देसी गाय का अपेक्षा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। अब आगू का करना चाहता था अपन, कुछ ऐसे है कुछ पशुपालन प्रति कुछ ध्यान आगू बढ़ाना चाहता है?
0: अभी तो फिलहाल थोड़ा सा जगह भी छोटे है।
1: अच्छा।
0: और आसपास में चरागन भी के मतलब गौचारण भी की जगह कम है।
1: हाँ।
0: तो अभी वही लगभग 4-5 है बस, उतने चलत है।
1: हाँ।
0: और साथ साथ और मतलब इसे थोड़ा दूसरा भी जानवर है।
1: हाँ। कौन कौन से जानवर पाले
0: है? बकरी बकरा है साथ में।
1: अच्छा।
0: हाँ।
1: तो कैठक बकरी बकरा पाले हो?
0: बकरी 6 है, 2 बच्चे है और 4 बकरा है।
1: बहुत बढ़िया। पशुपालन में जो हुआ थे आजकल तो बकरी पालन, बकरी पालन में ज्यादा फायदा है, तो इला कब ले करा था?
0: लगभग ये भी 8-10 हो गए।
1: 8-10 में कतेक आप बढ़ोतरी दिखी से माँ?
0: अब यू माँ साहब ऐसे होते है की समय समय बीमारी वगैरह आते रही थी, इलाज पानी चलत रही थी, लेकिन हाँ गाय वगैरह जो है ना साथ साथ ही भी चल जाते थे, कुछ मतलब लाभ हो जाते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: हाँ।
1: हाँ, शुरुआत कैठक ले शुरू करे रहे बकरी छिरिया पालना?
0: शुरुआत 2 लाए रहे।
1: अच्छा।
0: हाँ, 2 चालू कर रहे।
1: हाँ, तो अतेक बच्चर में कतेक कन के बकरी छिरिया आप बेच डाले हो, फायदा ले हो?
0: अब हर साल लगभग 8-10 बिक जाते हैं।
1: अच्छा।
0: बच्चा मन फिर हो जाते, फिर मतलब घर बिक्री हो जाती, इसे करके भी लगभग 10 के आसपास है।
1: अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। तो बकरी में ज्यादा फायदा दिखते हैं आप लोग की बकरा मजी?
0: फिलहाल तो मतलब बकरा में दिखते हैं, काबर के बकरी मन की रेट यदि 5,000 है तो खर जस्ट वो डबल जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: 10,000। हाँ। तो फायदा यदि देखा जाए तो बकरी की अपेक्षा बकरा में ज्यादा है
1: बेचे में।
0: हाँ।
1: और ऐसे बढ़ोतरी करे माँ बकरी के ज्यादा हुई?
0: बकरी के ज्यादा है।
1: है ना भाई, काबर है बच्चा देते
0: दे
1: है ना भाई। तो ये प्रकार ले कहे जाए तो आप बकरी छेरिया ला पाल के आप ला कैसे लगा थे बताओ?
0: ठीक है, आर्थिक सहयोग हो जाते सब खेती के साथ साथ, मतलब कुछ पैसा वहाँ से भी आ जाते तो मतलब आर्थिक स्थिति ठीक है।
1: अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। खेती भी कहे, खेतियो करता आप मन?
0: हाँ, खेती थोड़ा सा है।
1: अच्छा, का का लगा था माँ?
0: अभी गर्मी और बरसात में धान वगैरह लग जाते, रवि और खरीफ दोनों में।
1: हाँ।
0: साथ साथ बाड़ी भी लग जाते।
1: अच्छा, बाड़ी में का का लगा था आप?
0: बाड़ी में जैसे भिंडी है, करेला है, गर्मी के दिन में है तो मूंगफली वगैरह है।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, ये सब चीज खेती होते है।
1: तो बहुत अच्छा, आप मन कहे जाए तो समन्वित कृषि करत हो, गाय पशुपालन अलग करत हो, बकरी छिरिया अलग पाले हो, खेती किसानी अलग करत हो। आपन से गुड बात करें, आपन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो संगवारी हो, ये तो हुई स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में। ये कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग और संपादन रही सवय गोपाल कृष्ण पांडे के और प्रस्तुति और संयोजन रही सवय डॉक्टर सुप्रिया भारदेन के। ई संग दो विदा, महोगो भैया के राम राम, जय जोहार।
3: संगवारी हो, अभी हम सुनत रहे स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में, ग्राम पंचायत गुटको विकास खंड तखतपुर जिला बिलासपुर। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और संपादन से हमर महंगुभिया गोपाल कृष्ण पांडे, कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन से डॉक्टर सुप्रिया भारती ने कर संगे संग आज के कार्यक्रम में विदा लेख बेरा होते पान भाई राम सनहिल देव विदा। राम राम, जय जोहार।

कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सोलता देव, डीएमके सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, डॉक्टर एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि ये कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राय, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, आईयूएमएल के हारिस बीरन, यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी और डीएमके सदस्य एल के सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद

कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार-बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थीं। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की।
समाजवादी

पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने FCRA विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि ये सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। DMK नेता TR बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। RSP के NK प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके के इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है। विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं। 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृह मंत्री इस पर जवाब दें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

संसद समीक्षा अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का लोकप्रिय कार्यक्रम रजनीगंधा। और मैं हूं आपका रेडियो साथी शांतनु कपूर। रजनीगंधा एक ऐसा फूल जिसकी खुशबू बहुत तेज नहीं होती, लेकिन देर तक साथ रहती है। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो हमारे बीच लंबे समय तक नहीं रहते, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी बनाई हुई चीज़ें, उनकी आवाज़, उनका काम, उनकी याद बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। कभी आपने सोचा है कि एक आदमी जो कभी एक छोटी सी दुकान पर बैठकर कारोबार करता था, वो एक दिन ऐसा नाम बन जाएगा जिसके बिना भारतीय संगीत उद्योग की कहानी अधूरी लगेगी। जिस दौर में संगीत सुनने के लिए एक कैसेट खरीदना पड़ता था, उसी दौर में कोई ऐसा आदमी भी होगा जो ये समझ लेगा कि भारत को सिर्फ गाने नहीं चाहिए, भारत को गाने सुनने के मौके चाहिए। और फिर एक दिन उसकी बनाई हुई कंपनी का नाम देश के संगीत संसार की सबसे बड़ी पहचानों में शामिल हो गया। उस आदमी का नाम था गुलशन कुमार। आज 12 अगस्त है, गुलशन कुमार की पुण्यतिथि। आज का रजनीगंधा उन्हीं के नाम। लेकिन आज हम उनकी कहानी, तारीखों और घटनाओं की सूची की तरह नहीं सुनेंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी सोच थी जिसने एक कारोबारी को संगीत की दुनिया का इतना बड़ा नाम बना दिया। इस कहानी में कुछ मोड़ ऐसे भी हैं जहां आपको यकीन होगा कि गुलशन कुमार संगीत की हर नब्ज को बखूबी समझते थे।

साल 1990 एक फिल्म आई आशिकी। ना कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार, ना कोई भारी बजट, लेकिन फिल्म के गीत जैसे पूरे देश की जुबान पर चढ़ गए। आशिकी गुलशन कुमार के फिल्मी सफ़र की उन बड़ी सफलताओं में से थी जिसने टी सीरीज़ को दुनिया की संगीत की दुनिया में बेहद मजबूत पहचान दिलाई। लेकिन कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। दिल्ली दरियागंज एक परिवार का कारोबार, फलों के रस की दुकान। 5 मई 1956 को दिल्ली में जन्मे गुलशन कुमार की व्यावसायिक यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। उस समय संगीत का मतलब था रिकॉर्ड्स, ग्रामोफोन और फिर आया कैसेट का ज़माना। कैसेट छोटा था, आसानी से ले जाया जा सकता था और हर आम आदमी इसे खरीद भी सकता था। इसी संभावना को गुलशन कुमार ने पहचाना और अपनी कैसेट इंडस्ट्री को खड़ा किया। लेकिन असली कमाल यहाँ हुआ। उन्होंने केवल फिल्मी गीतों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने देखा कि भारत की सुबह किससे होती है। आप बताइए, भारत की सुबह किससे होती है? भजन से। जी हाँ, फिर क्या था, गुलशन कुमार ने भजन कीर्तन और जगराते वाले अनेकों गीतों की झड़ी लगा दी। गुलशन कुमार ने समझ लिया था कि ये सिर्फ आस्था नहीं है, संगीत का बहुत बड़ा संसार है।

भक्ति संगीत के क्षेत्र में टी सीरीज की लोकप्रियता बढ़ती गई और यहीं से गुलशन कुमार की एक खास पहचान बनने लगी। वो संगीत को सिर्फ बड़े शहरों की चीज नहीं मानते थे, उनकी नज़र में उन श्रोताओं पर भी उनकी विशेष नज़र थी जो सुबह काम पर जाने से पहले भजन सुनते हैं, जो यात्रा के दौरान गीत सुनना चाहते हैं, जो श्रोता अपने घर बैठकर भी संगीत ज़रूर सुन सकता है। और शायद यही

भक्ति संगीत के क्षेत्र में टी सीरीज की लोकप्रियता बढ़ती गई और यहीं से गुलशन कुमार की एक खास पहचान बनने लगी। वो संगीत को सिर्फ बड़े शहरों की चीज़ नहीं मानते थे, उनकी नज़र में उन श्रोताओं पर भी उनकी विशेष नज़र थी जो सुबह काम पर जाने से पहले भजन सुनते हैं, जो यात्रा के दौरान गीत सुनना चाहते हैं, जो श्रोता अपने घर बैठकर भी संगीत ज़रूर सुन सकता है। और शायद यही गुलशन कुमार की सबसे बड़ी समझ थी, उन्होंने श्रोताओं को देखा, सिर्फ बाजार को नहीं। और जब कोई कलाकार या कारोबारी अपने श्रोता को समझ लेता है तो उसके बाद रास्ते खुलने लगते हैं। धीरे धीरे भक्ति संगीत से निकलकर फिल्म संगीत की दुनिया में उनका प्रभाव बढ़ा और फिर आया एक ऐसा दौर जब टी सीरीज के कैसेट लोगों के घरों में लगातार पहुंचने लगे और फिल्मों के बनने का और गानों की रिकॉर्डिंग का सिलसिला तेज़ी से बढ़ने लगा।

ये गीत सुनते हुए शायद आपको अंदाज़ा भी ना हो कि इसके पीछे की कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है। दिल है कि मानता नहीं, ये फिल्म 1991 में आई थी और इसका निर्माण गुलशन कुमार ने किया था। और यही वो समय था जब गुलशन कुमार का नाम केवल कैसेट कंपनी तक सीमित नहीं रह गया था, वे फिल्म निर्माण में भी उतर चुके थे। लेकिन उनका असली जुड़ाव अभी भी संगीत से ही था। एक ऐसा संगीत जिसे लोग सुनना चाहते थे, याद रखना चाहते थे और जिसे फिल्म खत्म होने के बाद भी अपने साथ लेकर घर जाना चाहते थे। यही वजह है कि गुलशन कुमार के सफ़र को केवल टी सीरीज़ की सफलता कह देना बहुत छोटा करके देखना होगा। गुलशन कुमार की कहानी में एक और दिलचस्प बात है। उन्हें नई आवाज़ों में संभावना दिखाई देती थी। इसी दौर में अनुराधा पौडवाल की आवाज़ टी सीरीज़ के साथ बेहद प्रमुख हुई और बाद के वर्षों में टी सीरीज़ ने कई नए कलाकारों को भी मंच दिया। यानी गुलशन कुमार की कहानी केवल उनकी अपनी सफलता की कहानी नहीं है, ये उन आवाज़ों की कहानी भी है जिन्हें लोगों तक पहुंचाने का रास्ता दिया गया है।

एक और गीत, एक और फिल्म और एक और याद। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां सफलता बहुत बड़ी हो चुकी थी। गुलशन कुमार का नाम संगीत उद्योग में स्थापित हो चुका था। टी सीरीज तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसी बीच उनके जीवन का आखिरी अध्याय भी धीरे धीरे सामने आ रहा था। लेकिन उस अध्याय को समझने के लिए किसी सनसनी की जरूरत नहीं, सिर्फ एक तारीख, 12 अगस्त 1997, मुंबई शहर। उनकी उम्र उस समय सिर्फ 41 वर्ष थी। संगीत की दुनिया ने अपना एक महत्वपूर्ण चेहरा खो दिया। एक जिंदगी बहुत अचानक खत्म हो गई। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कभी-कभी जिंदगी और संगीत में एक अजीब समानता होती है। संगीत खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी धुन कुछ देर तक हमारे भीतर चलती रहती है। गुलशन कुमार भी चले गए, लेकिन उनकी बनाई हुई धुनों की दुनिया चलती रही। टी सीरीज को आज उनका परिवार चला रहा है। समय बदला, कैसेट का दौर गया, सीडी आई, फिर डिजिटल संगीत आया। लेकिन उस पूरी यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी का नाम है गुलशन कुमार। शायद यही कारण है कि आज भी 90 के दशक का कोई गीत जब बजता है तो एक पूरी पीढ़ी अचानक अपने पुराने दिनों में लौट जाती है। किसी को कॉलेज याद आता है, किसी को पहला प्यार, किसी को अपना रेडियो, और किसी को वो दौर जब अपने पसंदीदा गीतों को सुनने के लिए इंतजार करना पड़ता था। भक्ति संगीत से लेकर फिल्म संगीत तक का सफर करने वाले गुलशन कुमार की जिंदगी केवल सफलता की कहानी नहीं है, ये सोचने की कहानी है। जो आदमी दूसरों से पहले ये समझ ले कि समय किस दिशा में जा रहा है, वही आगे निकलता है। इसलिए आज उनके जाने के लगभग 3 दशक बाद भी उनका नाम संगीत के साथ लिया जाता है। यही वो विरासत है। शरीर चला जाता है, नाम, काम और याद रह जाती है। गुलशन कुमार की जिंदगी हमें एक बात जरूर सिखाती है, सपना छोटा हो या बड़ा, अगर उसे सुनने की समझ हो, अगर उसे सुनने की समझ हो और उसे पूरा करने का साहस हो, तो एक छोटी सी शुरुआत भी बहुत दूर तक ले जा सकती है। इसी भावना के साथ गुलशन कुमार को विनम्र श्रद्धांजलि। मैं शांतनु कपूर आपसे विदा लेता हूँ। सुनते रहिए आकाशवाणी बिलासपुर, और आपको इस प्यारे से गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।

0: कार्यक्रम रजनीगंधा अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
3: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
2: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन

0: धन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
3: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
4: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को

0: मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2 मिनट और 18 सेकंड तक ढककर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत

0: ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांति मोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill to enhance funding and development of cooperative sector, also gives nod to legislation to rename state of Kerala as Keralam. Both houses refer Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Home Minister Amit Shah says he is ready for detailed discussion on NEET paper leak related issue, writes letter to Lok Sabha Speaker. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for greater private capital mobilization in BRICS economies for global growth. Heavy to extremely heavy rainfall likely over parts of Odisha and Gangetic West Bengal for next 2 days as low pressure forms over Bay of Bengal. And Indian fencing team clinches 5 medals, including 3 gold on 3rd day of Commonwealth Championship in Nigeria. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The corporation can also provide loans and grants directly to any cooperative society or entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Replying to a debate on the bill, Minister of State for Home Nityananda Rai said the Kerala Legislative Assembly had passed a resolution in 2024 requesting the centre to change the name of the state from Kerala to Keralam. He said the request in this regard was made because the name of the state in Malayalam is Keralam, while in the constitution it is written as Kerala. We have a report.
2: Both the houses of parliament once again witnessed disruption following opposition uproar on various issues. Due to the ruckus, the question hour in both the houses could not be taken up today. Lok Sabha could not take up the zero hour as well, while the Rajya Sabha took it up for a brief period, despite government's assurance that it is ready for a detailed discussion and reply.

कच्चे धागे इस फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी का लिखा गीत था, आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया।

रवि की तर्ज थी शकील बदायूनी का लिखा गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी चौदहवीं का चांद, गेटवे ऑफ इंडिया। इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गया।

राजेंद्र कृष्ण की का लिखा ये नगमा था, मदन मोहन का संगीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के गाए। फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम आपके लिए अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंग

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गई और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडीचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।

हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में

0: झुक जाए दोनों आंखें मारो तो झरपट जाए झरपट जाए दोनों आंखें मारो तो झरपट जाए झरपट जाए।
1: ए पंकज।
2: इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली।
3: माना माना

0: फिल्म जस्टिस चौधरी।
1: पाम पाम। पाम पाम। ए मम्मा मिया प्यार की गाड़ी तेज चलाओ, एक्सीलेटर और दबाओ।
2: सिंगली में मोड़ बहुत है, देखो दिल के तोड़ बहुत है, रास्ता मुरझाने वाला है, मेन रोड आने वाला है। स्टॉप
1: लव
2: मम्मा मिया
1: पाम पाम।
0: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही

मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

जब मिस्टर इंडिया की बात हो तो एक गाने की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सरोज खान की कोरियोग्राफी वाला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया का।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो।

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा गवाह।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर थे।

0: जिसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गई। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट स्पेशल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी मेरा, समटाइम्स यू विल फील यू आर लेस केविन, समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील यू आर लेस देन मेरा। ट्राई टू हेल्प ईच अदर टू फील इक्वल, इट विल बी नाइस।
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई।

श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थी।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोह, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजने वाले हैं संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: किन्हीं कारणों से संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण अभी नहीं किया जा रहा है। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: कलमबद्ध किया मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला।

नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, बच्चे की सरल और देश के प्रति अटूट प्रेम को दिखाता ये गीत हम सभी ने सुना है। मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, देश की संस्कृति और पहचान को दर्शाता ये प्यारा सा गीत। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं, देश के गौरव और संस्कृति की महानता को दर्शाता ये गीत। ये आह्वान करते हैं सभी गीत कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, इसकी माटी को नमन करते हैं। गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकली रचनाओं ने देश प्रेम को दर्शाया और कहा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो उतार ला जमीन पर।

इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। सचमुच शकील बदायूनी का लिखा ये गीत केवल एक गीत नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था। आंदोलन, उनकी कलम में हर वो रंग शामिल था जिसकी समाज को दरकार है। इन गीतों को सुनकर ही देश के जाबाज सैनिकों के खून में एक उबाल सा आ जाता था। शकील साहब द्वारा रचित ये गीत नए आशावाद को प्रस्तुत करने वाला जैसे देशभक्ति गीत ही बन गया था।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अपनी मिट्टी और अपने देश के प्रति अथाह मोहब्बत ही हमें देशभक्त बनाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती जैसे कालजयी गीत रचने वाले गीतकार गुलशन बावरा कितने गहरे देशभक्त होंगे, ये गीत सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ धरती के गौरवगान से जुड़े गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गीतकार इंदिवर की कलम से निकला ये गीत भारत की संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। प्रेम, सत्य और एकता की बात करता गीत, भारतीयों का अपनी जड़ों पर गर्व करता ये गीत, अपनी मातृभूमि से प्रेम करने का आग्रह करता गीत। इंदिवर साहब के गीतों की तासीर आज भी मोहब्बत बिखेरे हुए है, लेकिन जब उन गीतों से मिट्टी की खुशबू आने लगी तो जिंदगी और मौत का फर्क वो यूं समझा गई हमें। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम।

कलाकार साहिब लुधियानवी ने भी मातृभूमि को माँ की तरह प्यार किया। उनकी कलम ने भी देशभक्ति की भावना के बीज बोए। घनघोर अंधेरे के बीच भविष्य की चमकीली किरणें बिखेरते रहे उनके कालजयी गीत। साहिर ने दुनिया को बहुत कुछ कह दिया। वे लिखते हैं, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कहते हैं, सच्चा देशभक्त अंजाम की परवाह किए बिना सच बोलता है। वही साहिर गीतकार ने कहा, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क।

देश प्रेम और माटी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कोई इन रणबांकुरों से सीखे। अपनी मोहब्बत का इजहार एक शहीद ये कहकर करता है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। जंग के मोर्चे पर तैनात एक फौजी के जज्बातों को गीतकार कैफी आजमी ने बहुत खूबसूरती से कागज पे उकेरा। अगर ये गीतकार ये शायर केवल इश्कबाजी पर ही अटके रह जाते तो शायद उनकी कलम ये विद्रोह कभी ना कर पाती, ये गीत कभी ना उकेर पाती।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे एफएम बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देशभर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देशभर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य

0: end of this news bulletin.
1: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के बिलासपुर रायपुर दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल यानी गुरुवार 13 अगस्त 2026 प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।